0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती। RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: ऑडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती। You're listening to RM2, a Radio Mastiff.

0: rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: सुबह के 5:05 हो रहे हैं. दिल की गिरह तो हमने कब से खोल दिया है, बस आपके आने का इंतजार है. वैसे आपके मैसेजेस तो आने शुरू हो गए हैं. On 5499-1294-9999-99 स्वीकार करें नीतू का प्यार भरा नमस्कार प्रणाम. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आज है शुक्रवार और बस ये महीना भी, अगस्त का महीना भी बस ख़त्म होने ही वाला है. तो महीना भले ही ख़त्म हो जाए लेकिन हमारी और आपकी ये जो दोस्ती है, ये जो अपनापन, ये जो प्यार है, रिश्ता है, दिल का रिश्ता, वो कभी ख़त्म नहीं होता है इन गानों के ज़रिए. सो व्हाटएवर यू माइट बी, गुड मॉर्निंग एवरीवन वंस अगेन. नीतू आपके साथ 8 बजे तक. यस, इट्स योर राइज एंड शाइन. फिर मॉर्निंग को बीट बीट करके हम आगे बढ़ाएंगे विद द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक. बस आपका इंतजार है. जैसे कि हमने कहा, नंबर आपको बता दिया है 1199-99-99. ये नई सुबह आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो और जहाँ भी रहें खुश रहें और हमारे साथ जुड़े रहें. एंड अगर आप काम पर जा रहे हैं, बोकुगाश.

चाहे फासले कितने भी बढ़ जाएं, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाए। MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन।

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. 5:16 सो बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की ओर. अरे बाप रे बाप. 5499294 पर कैसी है प्यारी सी अनुषा. होरी राम परिवार प्रेम देघोष से पापा ससन के नाम माँ प्रेमिला भाई संजू भाभी रोशनी परी आपके नेफ्यूज हिमेश हिमकेश और सब परिवार के नाम ज्योति एज यूजुअल फ्रॉम शातु बेनागस एंड कैसे माधव परिवार के लिए. इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. यहाँ पर है कौन मिस्टर दीपक. ओके और सबको बधाइयाँ दे रहे हैं सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं. गुड मॉर्निंग बेनीता. आप है फ्रॉम फोजुसाक बेनीता और सबको बधाइयाँ सबको बेस्ट विशेज भेज रहे है भाई प्रमेश विनय राकेश बोनाकर से. एंड आप उनके लिए बस प्रार्थना कर रहे हैं जैसे भी रहे खुश रहे और स्वस्थ रहे. इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको. एंड आप है कौन. यहाँ पर आपने अपना नाम तो नहीं लिखा लेकिन आपने रिक्वेस्ट की सुबह सुबह. क्या बात है. प्रणाम जी रेडियो मस्ती रिश्मा फ्लैग से एंड सबको बधाइयाँ और आप भी सबको शुभकामनाएं दे रही हैं. जैशन परिवार हरदयाल हर जैशन हरदयाल एंड आपकी बहनें हैं प्रतिमा आरती रेशमा एंड टू रेडियो मस्ती टीम थैंक यू सो मच. कैसे हैं शीला जी लेस्पेरोस त्रिबुशे से. वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अब्दुल एंड सायरा मानु सबको बेस्ट विशेज भेज रही हैं. धन्यवाद आपको. हर हर महादेव. और आप है भाई सूरज शर्मा सजादा एंड पूरे परिवार फ्रॉम त्रियुली. शुभकामनाएं आपके नाम भी हैं भाई रवि संजीव किरण और रुबेन. और ये हैं किन की तरफ से. वेल आप है सविता और आपके पूरे परिवार के नाम. गुड मॉर्निंग एंड बेस्ट विशेज टू मेरे भाई राज रामजावन. और ये है आपकी तरफ से लीना फ्रॉम वोशनवा आपके पूरे परिवार के नाम.

0: खुशियां जो है ऐसे ही तो मिलती नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। देखो मेहनत करोगे तभी तो फल मिलेगा, सो अपनी खुशी आप खुद ढूंढिएगा, डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। 5:27, थोड़ी देर में आपका हॉरोस्कोप। काम पर जा रही है, निकल रही है घर से, बस एक बिग स्माइल के साथ निकलिएगा जरूर। हाँ, जो भी हो, जो बीत गया सो बीत गया, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स जैसे कहती हैं, लेकिन नया दिन है, नई शुरुआत है, नई सुबह है, और फ्राइडे का दिन ऊपर से क्या बात है। तो बस आप अपने अपनों को खुश कीजिएगा, अपने आप को खुश रखिएगा, और देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत है। आज तो एक सफर पर निकलने वाले हैं, कौन से सफर?
1: सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, एन एवरग्रीन आफ्टरनून। सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास। 2 घंटों का सुरीला सफर पॉइंट ऑफ पीमो के लेडी सुशील राम गुलाम रिक्रिएशनल सेंटर में, जहां 83 सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के साथ इस म्यूजिकल सफर को मजेदार और यादगार बनाएंगे। ऑन दिस फ्राइडे 28 अगस्त दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन, साथ ही टिकटॉक पर भी फॉलो कर पाएंगे। सो भूलिएगा मत, इस शुक्रवार 28 अगस्त को फ्रॉम नून टू 2 PM पोएटो पीमो के लेडी सुशील राम गुलाम रिक्रिएशनल सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास। जेठा तुलसीदास।
2: महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां?
3: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
4: Radio.

0: दिल तो मचल ही सजाता है। वैसे ही उतनी प्यारी सी आवाज सुबह सुबह, ये थी आवाज शारदा की। इनका दिल भी मचल गया था जब इन्होंने गाना गाया था, और आपका दिल भी मचल रहा है। अरे बाप रे बाप, नहीं तो इतने सारे मैसेजेस हैं। चलिए बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की ओर।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musti.
0: नमस्ते जी, सबको शुभकामनाएं। स्पेशली मेरे भैया को, भाई हैं संजीव, साइलेश, बगन, मनोज, खिरोदर, और काम पर हैं सबको बोकुराज भी, और आप हैं सुया बिहारी, अनीता बिमल, कुंगुमा से थैंक यू हम आपको कहेंगे जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और यहाँ पर मेरे भाई हैं सभी बहनों की तरफ से फ्रॉम संपत परिवार गोबियों से, और आपके नाम भी बिना जगह सब बेलवी मोगे से एक गाना प्लीज़ आप कहती हैं। वाई प्लीज़, इट्स आवर प्लेजर। हमारी खुशकिस्मती है कि आप ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, संजय, जीतन एंड सब परिवार। बस नेक्स्ट गाना चित्चोर फिल्म का गाना आपको अच्छा लगा अमृता फ्रॉम पोएतू साबल, बस एंजॉय करते रहे। एंड नेक्स्ट गाना आपके लिए प्रणाम माला जी, इंदिरा, अनिता, और आपके भाई हैं रोहित, मोहित, राजेश, सब है फ्रॉम मोताब्लॉश। आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं कविता, आपके पूरे परिवार के लिए। हैप्पी फ्राइडे आपको भी, एंड विश यू अ पायस डे अहेड। सरोज, राजन, मोनिका, उमेश, पूनम, उर्वशी, दृष्टि, आशीना, कैथोबोन से हैं, और बस आपके लिए हैं, और रेडियो मस्ती के सभी टीम के नाम। तो चलिए, इस गीत की काफ़ी फरमाइश आई है, तो ये गाना हमारी ओर से भी आप सबके लिए।

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: चलिए जी आज जो शुरुआत आपके साथ करते हैं.
2: एरीज मेष राशि.
1: आज पुराने कर्ज का बोझ कुछ हल्का होता नजर आ रहा है जिससे मन को राहत मिलेगी. अचानक शेयर मार्केट से लाभ मिलने पर दिन और भी बेहतर हो जाएगा. लेकिन हाँ प्लीज फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा. काम को लेकर भागदौड़ तो रहेगी और इसी वजह से ध्यान थोड़ा भटक भी सकता है, तो काम के साथ आराम भी बहुत जरूरी है.
2: टॉरस वृषभ राशि.
1: Alright, आज सफलता का जो सीधा मंत्र है, जरूरी कामों पर ध्यान बनाए रखें, फोकस. घूमने फिरने के दौरान मिली कोई छोटी सी जानकारी आगे चलकर आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है. अटका हुआ सरकारी काम आगे बढ़ने के संकेत है और घर को नया रूप देने का मन बनेगा तो लग जाइए. और संतान की ओर से मिली अच्छी खबर खुशी देगी और आपकी नेतृत्व क्षमता भी लोगों के सामने उभर कर आएगी.
2: जेमिनी मिथुन राशि.
1: आज कुछ नया शुरू करने का उत्साह आपको भीतर से ऊर्जावान मानी कि एनर्जेटिक रखेगा. बस रिश्तों को संवेदनशीलता बनाए रखना जरूरी है. खासकर जीवन साथी की भावनाओं को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें. बड़ों के साथ किसी कारोबारी योजना या डील पर महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है. आपकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव आएंगे और सुख सुविधाएं बढ़ेंगी.

0: होंगी। स्टूडेंट्स को परीक्षा परिणाम में राहत और सफलता मिल भी सकती है, बस मेहनत मत छोड़ना।
1: कैंसर कर्क राशि।
0: वेल, आज कोई ऐसी खबर मिल सकती है जिसका आपको काफी समय से इंतजार था। मन पर बना तनाव कम होगा और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए भी उम्मीद की किरण दिखाई दे सकती है। हालांकि जरूरत से ज्यादा मौज मस्ती आपको अपने जरूरी कामों से भटका सकते हैं। प्लीज विरोधियों से सावधान रहें और परिवार से जुड़ी निजी बातें दूसरों के साथ साझा करने से बिल्कुल आपको बचना होगा।
1: लियो सिंह राशि।
0: आज मेहनत का पूरा फल मिलने वाले हैं। खुश तो हो जाइए आप। सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ने का हौसला देगी। किसी दूर रहने वाले रिश्तेदार से मुलाकात या यात्रा की योजना बन सकती है। डिसीजन लेने की आपकी क्षमता मजबूत रहेगी, जिससे कोई उलझे काम आसानी से सुलझ भी जाएंगे। किसी सहयोगी की बात थोड़ी चुभ सकती है, लेकिन धैर्य भी, पेशेंट और अपनापन बनाए रखने तो आपके रिश्ते जो हैं और मजबूत भी हो सकते हैं।
1: वर्गो कन्या राशि।
0: संपत्ति से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है और लंबे समय से अटकी बिजनेस डील आगे बढ़ सकती है। धार्मिक कार्यों में और पूजा पाठ में मन लगेगा। घर में किसी शुभ आयोजन की तैयारी शुरू होने के संकेत हैं। पुराने कर्ज को खत्म करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। समाज में आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान दोनों बढ़ेंगे।
1: लिब्रा तुला राशि।
0: आज का दिन नए अवसरों के दरवाजे खोल सकता है। प्रभावशाली से लोगों से मुलाकात किसी नए रास्ते की शुरुआत कर सकती है। बैंक लोन से जुड़ा काम भी आसानी से आगे बढ़ सकता है। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने का आपके लिए जो है एकदम फायदेमंद रहेगा। बड़ों द्वारा, खासतौर से आपकी माता द्वारा दी गई जिम्मेदारी को समय पर पूरा करें और बच्चों के साथ बिताया समय मन को खास खुशी देगा।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
0: नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए आज नए अवसर सामने आ सकते हैं। आपके संपर्क और पहचान का दायरा बढ़ेगा और कार्यस्थल पर बॉस भी आपके काम की सराहना कर सकते हैं। स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा, लेकिन खान पान में संतुलन बनाए रखें। उसी प्रकार अपने प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में भी। वैसे किसी जरूरी जानकारी को साझा करने से पहले अच्छी तरह सोच लें। काम के कारण यात्रा का योग भी बन सकता है।
1: सजिटेरियस धनुराशि।
0: आज का दिन थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रह सकता है। बड़ों के साथ परिवार से जुड़े किसी मुद्दे पर महत्वपूर्ण बातचीत होगी और जीवन शैली में सुधार के मौके भी मिलेंगे। वैसे पुराने दोस्त से मुलाकात मन खुश करेगी, लेकिन पुरानी नाराजगी या विवाद को दोबारा छेड़ने से बचे। कारोबार में नई साझेदारी भविष्य के लिए लाभदायक साबित हो सकती है।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: आज राजनीति या सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के लिए कोई खास अवसर सामने आ सकता है। किसी बड़े या प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। जीवन साथी के साथ खरीदारी की योजना बनेगी, लेकिन बजट का ध्यान भी रखना है, हाँ ना? उधार लेना ये सब आपके लिए काफी मुश्किल होगा। वैसे वाहन चलाते समय जैसे स्थिति से आपको बचना होगा। प्लीज बी वेरी केयरफुल रास्ते पर। सफलता के मौके भरपूर हैं, हालांकि जो विरोधियां हैं उनकी गतिविधियों पर नजर रखना भी एकदम इम्पोर्टेंट है।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: आज आर्थिक मोर्चे पर मजबूती महसूस होगी। पुराने निवेश से अच्छा लाभ भी मिल सकता है। कारोबार में किए गए बदलाव आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। लव लाइफ यानी कि जीवन साथी की पदोन्नति या करियर में प्रगति के इससे आपके घर का माहौल में खुशियां भर जाएंगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी। घर में धार्मिक वातावरण रहेगा। रिश्तेदारों की आवाजाही से बनी रहेगी। फाइनली आज कोई नया वाहन खरीदने का विचार मन में आ सकता है, लेकिन कोई भी बड़ा फैसला सोच समझ कर लें। काम में पूरी मेहनत और निरंतरता रखेंगे तभी अपेक्षित सफलता मिलेगी। पढ़ाई में परेशानी हो तो गुरुजनों की सलाह को नजरअंदाज ना करें। संतान की संगति पर ध्यान देना जरूरी है। फिलहाल उधार लेने की योजना टालना बेहतर है। हाँ, और बड़ों की कोई बात मन में थोड़ी ठेस पहुंचा सकती है, इसलिए प्रतिक्रिया जो है देने लेने से पहले

0: शांत रहें, स्टे काम. आप सभी को शुभ दिन एंड बेस्ट ऑफ लक.
1: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

इसीलिए कहते हैं ना, तो आप मीठा बोलिए और मीठा ही आप सुनेंगे. मीठी आप अगर सोच रखेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में, आपके जीवन में हर कुछ अच्छा ही होगा. भले ही कांटे क्यों ना हो, लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हैं तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ते चले जाओगे. 5:56 बस 6 बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार.

0: सुनते संक्षिप्त समाचार आपसे आशिता नमस्कार।
1: नमस्कार नीतूषा, श्रोताओं को भी नमस्कार। शुक्रवार 28 अगस्त के पहले फ्लैश न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। राखी के धागे में बंधा है प्रेम, विश्वास और जीवन भर साथ निभाने का संकल्प। आज देश भर में भाई बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। बदलते दौर में ये पर्व सिर्फ भाई की कलाई पर राखी बांधने तक सीमित नहीं, बल्कि एक दूसरे के सम्मान, सपनों और अधिकारों की रक्षा का संदेश भी दे रहा है। मॉरिशस में रविवार 30 अगस्त रात 10 बजे तक ऊंची समुद्री लहरों और तेज हवाओं की चेतावनी जारी है। मौसम विभाग के अनुसार दिन के दौरान बादल घिराएंगे और रुक रुक कर बारिश होगी, खासकर टापू के दक्षिणी हिस्सों और सेंट्रल प्रांत वाले इलाकों में, और ऊंचे ज्वार उठने की चेतावनी जारी की गई है। दक्षिण पश्चिम की ओर से एक ठंड और जोरदार एंटीसाइक्लोन मास्कारनीस टापुओं के करीब आ रहा है। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और झोंके 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। पश्चिमी और दक्षिणी तटीय इलाकों में समुद्र का पानी निचले क्षेत्रों में घुसने व बाढ़ के उतरने की भी आशंका है। आपको हम याद दिला देते हैं कि आज शुक्रवार 28 अगस्त 2026 को आंशिक चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। ये खगोलीय घटना मॉरिशस से तथा रोड्रिग सैन ब्रांडो और अगालिगा से भी दिखाई देगा। आज सुबह 5:22 से शुरू होकर 11:04 तक चलेगी ये आंशिक चंद्रग्रहण मॉरिशस में दिखाई देगा। पुएंटिसनी में पब्लिक तट तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। 4 नए साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं और सार्वजनिक रास्तों को बाधित करने वाली संरचनाएं हटाने के लिए निवासियों को 7 दिन का नोटिस दिया गया है। मॉरिशस में 3 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद फ्रांस के राजदूत फ्रेडरिक बोंटेम अपने पद से विदा हो रहे हैं। उनके उत्तराधिकारी अलेक्सिस लुआई सितंबर के मध्य में मॉरिशस पहुंचेंगे और दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। मलागासी कारोबारी मामी गवातोमांग की जमानत याचिका पर कल बेल एंड रिमांड कोर्ट में सुनवाई जारी रही। बचाव पक्ष ने 307 दिनों से हिरासत में चल रही गवातोमांग की अंतरिम रिहाई के पक्ष में दलीलें दी, जबकि एफसीसी के कार्यवाहक मुख्य जांच अधिकारी ने फरार होने का जोखिम अधिक बताया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद 910 लोग अब भी लापता हैं और संपर्क से बाहर हैं, जबकि 258 शव बरामद किए जा चुके हैं। राहत और बचाव अभियान के बीच बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 389 होने की खबर है और नए सिरे से बाढ़ आने की आशंका भी बनी हुई है। इसके साथ ये पहला फ्लैश समाप्त हो चला। बढ़ते हैं अब हम मौसम संबंधी जानकारियों की ओर। मौसम का हाल मॉरिशस और रोड्रिग्स तथा सैन ब्रांडो के लिए आज शुक्रवार 28 अगस्त 2026 को सुबह 4 बजे से जोरदार हवाओं और ऊंचे ज्वार उठने की चेतावनी जारी की गई है, जो रविवार 10 अगस्त रात 10 बजे तक जारी रहेगी। दक्षिण पश्चिम की ओर से एक ठंड और जोरदार एंटीसाइक्लोन मास्कारनीस के टापुओं के करीब आ रहा है। हवा दक्षिण पूर्व से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और झोंके 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकती है। सुबह के समय आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा और दिन के दौरान धीरे धीरे बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी, विशेषकर दक्षिणी और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों पर कोहरा छाया रहेगा। दक्षिण की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सुबह के समय हवा बहेगी और धीरे धीरे जोर पकड़ती जाएगी। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच और

0: तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच। आपको हम याद दिला देते हैं कि तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट महसूस की जाएगी। न्यूनतम तापमान समुद्र प्लेटों पर 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच। जरूरी जानकारी, जनता को सख्त सलाह दी जाती है कि वे उड़कर आने वाले मलबे से बेहद सावधान रहें, ऊंची इमारतों और अन्य ऊंचे ढांचों पर जाने या वहां किसी भी तरह की गतिविधि से बचने की सलाह दी गई है। क्रॉसविंड यानी आड़ी दिशा से चलने वाली तेज हवाओं के दौरान सड़कों पर वाहन चलाते समय भी विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दक्षिण पश्चिम दिशा से आने वाली ऊर्जा से भरपूर ऊंची समुद्री लहरें मास्कारिन टापू समूह की ओर बढ़ रही हैं और समुद्र की स्थिति को प्रभावित कर रही है। प्रभावितियों से आगे समुद्र लगभग 3 मीटर ऊंची लहरों के साथ उग्र रहेगा। सुबह समुद्र की स्थिति और बिगड़कर बहुत उग्र हो सकती है, जबकि लहरों की ऊंचाई 4 से 6 मीटर तक पहुंचने की संभावना है। इन ऊंची लहरों के कारण खासकर ज्वार के समय समुद्र का स्तर बढ़ सकता है। आज आपको ये भी बता देते हैं कि मछुआरों, लेजर क्राफ्ट संचालकों और आम जनता को समुद्र में न जाने की कड़ी सलाह दी गई है। साथ ही ऊंचे ज्वार के दौरान इन तटीय इलाकों के समुद्र तटों पर जाने से भी बचने को कहा गया है। तो इसके साथ ये संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हम फिर से मिलेंगे पुनः ठीक 6:30 बजे।
1: RM2 Radio Masti.
2: Wake up with the sun and the sound of fun.
1: RM2
2: Radio Masti.

0: बस अभी के लिए तो अपने सपनों को उड़ान दीजिए क्योंकि सुबह हो गई है, वो भी 6:14 भाई। गुड मॉर्निंग वंस अगेन एंड प्यार भरा नमस्कार प्रणाम। फ्राइडे मॉर्निंग नीतू आपके साथ 8 बजे तक ऐसे ही साथ निभाते चलेंगे। बस लग गए हैं आप भी अपने काम पर सुबह को हाश, बच्चे लोग स्कूल कॉलेज के लिए निकल रहे हैं, आपको बेस्ट ऑफ लक। बस ब्रेकफास्ट मत भूलना, हाँ स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, हैव योर ब्रेकफास्ट। आप घर से निकलेंगे, आप फोकस कर पाएंगे और भूख भी गुरगुर पेट नहीं करेगा, तभी तो आप आराम से अपनी मंजिल को आगे बढ़ा पाएंगे। बहुत सारे मैसेजेस हैं।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musti.
0: ऑल राइट, यहाँ पर रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं सभी बहनों के नाम, खास आपके लिए बहन सुनीति नितालिया और ये है महानंद, सुनील, सत्यम, राजेश, अखिल, रामसरण परिवार। अगला गाना आपके लिए भी, और आज जो है भाई भाई जो खास तौर जो नहीं रहे ऊपर है, लेकिन उनका प्यार, उनकी यादें, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ। नमस्कार जी, नेक्स्ट गाना आपके नाम इंदिरा दुमान ऑफ जू बॉय, और आपके लिए है आपके भाई और आपके सभी परिवार के नाम। हैप्पी 12th बर्थडे टू प्रिंस रक्षित रामदेव ऑफ रोदरिग, प्रणव प्रथा, रविश, प्रिशाल, अवशाद यवांस की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ओहो, व्हाट्सएप पर इतने सारे मैसेजेस हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं इससे पहले कि वक्त निकल जाए। सो नेक्स्ट गाना आपके नाम, हैप्पी फ्राइडे एंड रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। सरोज, राजन, मोनिका, उमेश, पूनम, उर्वशी, दृष्टि, आशीना, कैथबोन से और

आपके परिवार के नाम मेरे पांच भाई विक्की ऋषि बाबू अक्षय नितेश आपको शुभकामनाएं आपकी तरफ से रीना बेलेरिविया सेश से इंदरा ओसेनी फ्रॉम पेटी वेजे और आप है आपकी बहनों के नाम भाई सत्यानंद विको राजीव स्वबीन अश्विन अविश रवि रोशन नितेश दावे शादी सूरज आकाश पवन युवेश कृष गर्व हो गया ना नमस्ते रेडियो मस्ती नेक्स्ट गाना मेरे पूरे परिवार विपन भंजन गंगू इलापा सहादेव श्याम और मंगरा बाला और आप है भारती आपके लिए खास तौर से माय डियर गुड मॉर्निंग और मेरे भाई राज राम जावन के लिए आपकी तरफ से लीना फ्रॉम गोश्नवा मैं हूँ लक्ष्मी आप है लक्ष्मी जय माता लक्ष्मी गुड लेंथ से हैं और भाई की गान के नाम फ्रॉम दीदी अंजू कविता सेजल और बस भाई केविन को बहुत मिस कर रही हैं जहां भी हैं उनका आशीर्वाद आपके साथ अनु आपके नाम माय डियर फ्रॉम वेल भाई है सोना साथ में श्यामा को भी एंड बस भाई बहन का ये जो प्यार रिश्ता है वो अटूट है अमर है कृष्ण रघुनाथ को भी शुभकामनाएं फ्रॉम सुरीनाम वाइफ माला बेटियां हैं जिया और रिया और सभी परिवार के लिए गुड मॉर्निंग रेखा नमस्कार आपको अंश बेटा है फ्रॉम पोंबोंजे एंड आपके नाम ओजस्वी लवीश शाशी सुहाती पुत्र दो हामलत से पापा किशन भाई लवीश एंड मामा रति पापा किशन बॉबी पापा है विराज रेशमा माधिपा चली मैसेजेस तो बहुत सारे हैं बस आप गाने की ओर बढ़ते चलेंगे और कुछ और मैसेजेस थोड़ी देर में

बस सावन की बात चल पड़ी है तो प्लीज बी वेरी केयरफुल, ठंड और भी बढ़ने वाली है, स्वेटर वगैरह अपने साथ रखिएगा। हाँ 6:27 6:30 आप सुन पाएंगे पूरा समाचार बुलेटिन। ऐसा है कि इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं भाइयों के नाम, सनी और रवि ज्योतन फ्रॉम फिया भिखारी नेहा एंड मीनाक्षी, नमस्ते जी हम हैं दीदी उषा संध्या अर्चना भारती आरती फ्रॉम गास रामदयाल अवोशनुआ, ओके अपनी बहनों को शुभकामनाएं दे रही हैं। आपके लिए अभिषेक आप तो नहीं रहे लेकिन आपका प्यार आज भी याद करती है आपकी बहन हेमा, साथ में भाई रवि विमल ऑफ काहोलीन और आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अगला गाना आपके नाम भी, वैसे गाने तो हम चलाएंगे बाद में अब क्योंकि आप सुन पाएंगे पूरा समाचार बुलेटिन। स्वीट पारुषी परी थी प्रिया निशिका कैथ्रो बोन से डेडिकेटिंग द बेस्ट विशेस आपके लिए भाभी मल राजेश विशाल अक्षय अरविंद अविनाश, साथ में है रितेक बिरू आदर्श और बस आप सभी को शुभकामनाएं फ्रॉम दीदी गीता ऑफ गुडलैंड्स और आपको बहुत मिस करती हैं। हाँ जी काफी लोग दूर हैं लेकिन दिल के बहुत ही करीब है ना। नेक्स्ट गाना आपके लिए स्वीटी ऑफ पॉजिटिव लक विशेस आपके भाई आकाश ऑफ ग्रैंड रिट्रीट एंड ये है स्वीटी भारती मुनु एंड प्रीति और सब परिवार के लिए। तो बस बेस्ट विशेस टू यू ऑल एंड हंसते रहे मुस्कुराते रहे, इस प्यार को आप बरकरार रखते रहे। एंड गाना आपके लिए भी है चंदा मेरे भैया ओके आपके नाम आरती फ्रॉम गुडलैंड्स आपके सब परिवार के लिए भी।

शुक्रवार 28 अगस्त 2026 के प्रातकालीन समाचारों में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। राखी के धागे में बंधा है प्रेम, विश्वास और जीवन भर साथ निभाने का संकल्प। आज देश भर में भाई बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। बदलते दौर में ये पर्व सिर्फ भाई की कलाई पर राखी बांधने तक सीमित नहीं, बल्कि एक दूसरे के सम्मान, सपनों और अधिकारों की रक्षा का संदेश भी दे रहा है। मॉरिशस में रविवार 30 अगस्त रात 10 बजे तक ऊंची समुद्री लहरों और तेज हवाओं की चेतावनी जारी है। मौसम विभाग के अनुसार दिन के दौरान बादल घिराएंगे और रुक रुक कर बारिश होगी, खासकर टापू के दक्षिणी हिस्सों और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों में। गौरतलब है कि एक ठंड और जोरदार एंटीसाइक्लोन नास्करिन टापुओं के करीब आ रहा है। आज आंशिक रूप से चंद्र ग्रहण दिखाई दे रहा है मॉरिशस में। ये आंशिक चंद्रग्रहण सुबह 5:22 से शुरू होकर 11:04 तक चलेगी। ये आंशिक चंद्रग्रहण मॉरिशस में दिखाई देगा। पंडिसनी में पब्लिक बीच तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। 4 नए साइन बोर्ड लगाए गए हैं। सार्वजनिक रास्तों को बाधित करने वाली संरचनाएं हटाने के लिए निवासियों को 7 दिन का भी नोटिस दिया गया है। मलागासी कारोबारी मामी गावातुमांग की जमानत याचिका पर कल बेल एंड रिमांड कोर्ट में सुनवाई जारी रही। बचाव पक्ष ने 307 दिनों से रिहासत में चल रही गावातुमांग की अंतरिम रिहाई के पक्ष में दलीलें दी, जबकि एफसीसी के कार्यवाहक मुख्य जांच अधिकारी ने फरार होने का जोखिम अधिक बताया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद 910 लोग अब भी लापता, संपर्क से बाहर हैं, जबकि 258 शव बरामद किए जा चुके हैं। राहत और बचाव अभियान के बीच बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 389 होने की खबर है और नए सिरे से बाढ़ आने की शंका भी बनी हुई है। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। मॉरिशस में रविवार 10 अगस्त रात 10 बजे तक ऊंची समुद्री लहरों और तेज़ हवाओं की चेतावनी जारी की गई है और ऊंचे ज्वार उठने की चेतावनी जारी है। मौसम विभाग के अनुसार ठंडी हवा से जुड़े बादल आज दिन के दौरान स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। इसके बाद दक्षिण पश्चिम दिशा से मास्करिन समूह की ओर बढ़ रहा एक जोरदार उच्च दबाव मॉरिशस समय ठंडा और तेज हवाओं वाला मौसम पैदा कर सकता है। हवा दक्षिण पूर्व से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और झोंके 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। अगले 24 घंटों के दौरान आसमान साफ रहेगा। इसके बाद धीरे धीरे बादल घिराएंगे और रुक रुक कर बारिश होगी। बारिश मुख्य रूप से देश के दक्षिणी हिस्से और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों में होने की संभावना है। आज शुक्रवार 28 अगस्त 2026 को आंशिक चंद्रग्रहण दिखाई देगा। ये खगोलीय घटना मॉरिशस से तथा रोड्रिग्स, सैन ब्रांदो और अगालेगा से भी दिखाई देगा और सुबह 5:22 से शुरू होकर 11:04 तक चलेगी। आपको एक बार फिर याद दिला देती हैं कि ये आंशिक चंद्रग्रहण मॉरिशस में दिखाई देगा। कलाई पर सजा एक धागा और उससे जुड़ी अनगिनत भावनाएं, कहीं भाई की लंबी उम्र की कामना तो कहीं बहन की सुरक्षा और सम्मान का विश्वास। रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन के रिश्ते का पर्व नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास, जिम्मेदारी और पारिवारिक मूल्यों का उत्सव है। आज देश भर में रक्षाबंधन मनाया जा रहा है, उसका रौनक छाया हुआ है। बाजारों में रंग बिरंगी राखियों की चमक

मिठाइयों की खुशबू और घर घर में उत्सव का माहौल। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर स्नेह और विश्वास का धागा मजबूत कर रही हैं, तो भाई भी उनकी खुशियों, सम्मान और सुरक्षा का संकल्प ले रहे हैं।

0: संबंध शब्दों से नहीं एक छोटे से धागे से अपनी पूरी कहानी कह देते हैं। रक्षाबंधन भाई बहन के ऐसे ही अनमोल संबंध का पर्व है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें बचपन की शरारतें भी हैं, छोटी छोटी नोकझोंक भी और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के साथ खड़े रहने का विश्वास भी।
1: बचपन की वो खत्ते मिठी तकरार अब समझदारी में बदल गई। दौर वही है रेशम के, बस बात जरा परिपक्व हो गई। दो भरे ही रहते हो काम की दौर में, पर फिक्र आज भी वही पुरानी है।
0: राखी की ये डोर भले ही बहुत कोमल हो, लेकिन इससे जुड़ी भावनाएं बहुत गहरी हैं। बहन जब भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो उसके सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है। भाई भी हर मोड़ पर उसका साथ निभाने का संकल्प लेता है। आज ये पर्व केवल रक्षा का वचन नहीं बल्कि आपसी स्नेह, सम्मान और विश्वास का प्रतीक भी है।
1: राखी का यह धागा सिर्फ रस्म नहीं, हर मुश्किल में साथ खड़े रहने की निशानी है। रक्षाबंधन की ढेर सारे शुभकामनाएं।
0: रक्षाबंधन की भावना से कई प्राचीन कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। श्री कृष्ण और द्रौपदी की लोकप्रिय कथा में श्री कृष्ण की उंगली से रक्त बहने पर द्रौपदी ने अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। इस प्रसंग को दोनों के बीच गहरे स्नेह और रक्षा के भाव से जोड़ा जाता है। यही भावना हमें याद दिलाती है कि किसी रिश्ते की ताकत केवल एक धागे में नहीं बल्कि उसे निभाने में होती है।
2: रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर हम सभी भाइयों और बहनों को यही कहना चाहूंगी कि न सिर्फ राखी के दिन हमें भाई बहन का प्यार दिखाना चाहिए, अपितु साल भर एक बहन और एक भाई एक दूसरे से प्यार करना चाहिए और एक दूसरे की मदद व रक्षा करनी चाहिए।
0: और भाई बहन का रिश्ता केवल खून से ही नहीं बनता। जीवन में कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो जन्म से हमारे भाई या बहन नहीं होते, लेकिन उनका अपनापन, उनकी चिंता और हर समय साथ खड़े रहने का भाव उन्हें परिवार का हिस्सा बना देता है। राखी ऐसे खूबसूरत संबंधों को भी स्नेह की डोर में बांध सकती है।
3: हर भाई का कर्तव्य होता है कि वो अपनी बहन की रक्षा करे, चाहे बायोलॉजिकल बहन हो या मुंह बोली बहन।
0: आज घरों की रौनक भी कुछ अलग है। पूजा की थाली, रोली, अक्षत, दीपक और रंग बिरंगी राखियाँ, मिठाइयों की मिठास और चेहरों पर मुस्कान। आज जो भाई बहन एक दूसरे से दूर भी हैं, उनके लिए दूरी भी इस रिश्ते को कम नहीं करती, क्योंकि कुछ संबंध दूर रहकर भी हमेशा दिल के करीब रहते हैं।
3: एक भाई को अपनी बहन के दर्द की पहचान करनी चाहिए और उस दर्द को मिटाने का समाधान भी ढूंढना चाहिए।
0: समय गुजरता है, बचपन पीछे छूट जाता है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन भाई बहन के साथ बिताए हुए छोटे छोटे पल हमेशा यादों में रहते हैं।
3: रक्षा का अर्थ ये नहीं है सिर्फ हाल पूछना, बल्कि बिना कहे एक भाई को अपनी बहन की कठिनाई और परेशानी भांपना चाहिए और उसे दूर करने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए।
0: रक्षाबंधन हमें इन्हीं रिश्तों को फिर से महसूस करने का अवसर देता है। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। राखी की ये डोर जीवन में प्रेम, विश्वास और अपनापन हमेशा बनाए रखे।
4: पंडिसनी में समुद्र तट तक आम लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों ने कदम तेज कर दिए हैं। नए साइन बोर्ड लगाए गए हैं और एक सार्वजनिक रास्ते को साफ कर दिया गया है। वहीं सार्वजनिक रास्तों को बाधित करने वाली संरचनाओं को हटाने के लिए कुछ स्थानीय निवासियों को नोटिस जारी किए गए हैं। आवास और भूमि मंत्रालय या तटीय क्षेत्र तक पहुँच और समुद्र तटों के इस्तेमाल को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए नए नियम भी तैयार कर रहा है। आस्था गोविंदामन का ये विवरण।
0: पंडिसनी में लोगों के लिए समुद्र तट तक पहुंच आसान बनाने के लिए सरकार ने नए कदम उठाए हैं। आज दो सार्वजनिक रास्तों की पहचान के लिए चार नए संकेत लगाए गए हैं। इनमें से एक रास्ते को स्पेशल मोबाइल फोर्स ने साफ किया है और अब इसकी देखभाल घोंपो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल करेगा। इसके अलावा कुछ निवासियों को नोटिस दिए गए हैं, उनसे 7 दिनों के भीतर उन

0: दुकानों और रुकावटों को हटाने को कहा गया है जो सार्वजनिक रास्तों को रोक रही है। अगले सप्ताह अधिकारियों की टीम फिर इलाके का दौरा करेगी। आवास और भूमि मंत्रालय ने समुद्र तट तक सार्वजनिक पहुंच को लेकर नए नियम भी तैयार किए हैं। इनके तहत समुद्र तट पर रास्तों, वाहनों की आवाजाही, शोर, साफ सफाई और व्यापारिक गतिविधियों को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जाएगा। मंत्रालय ने साफ किया है कि नियमों से निजी संपत्ति या पहले से दिए गए अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लोगों से इन नए नियमों पर अपनी राय लिखित रूप से मंत्रालय को भेजने को भी कहा गया है। पेंडिस्नी में संदेश साफ है, सार्वजनिक रास्ते खुले हैं और समुद्र तट तक सभी की पहुंच बनी रहे।
1: फेसबुक पर विपक्ष के नेता चेतन बाबूलाल की तस्वीर का इस्तेमाल कर कथित ऑनलाइन ठगी की कोशिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। उनके नाम से जारी एक बयान के अनुसार फेसबुक पर एक फर्जी स्पॉन्सर विज्ञापन के जरिए 13,500 रुपए के बदले प्रशासनिक दस्तावेजों से जुड़ी सेवाएं देने का दावा किया जा रहा है। चेतन बाबूलाल ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने इस विज्ञापन को कभी अधिकृत नहीं किया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे इस विज्ञापन में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें, अपने निजी दस्तावेज किसी के साथ साझा न करें और किसी भी तरह का भुगतान न करें। इस मामले में साइबर क्राइम यूनिट और ICTA के समक्ष शिकायत दर्ज कराई जानी है। मालागासी कारोबारी मामी गवातुमांग की जमानत याचिका पर कल 27 अगस्त को बेल एंड रिमांड कोर्ट में सुनवाई जारी रही। इस दौरान फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की कार्यवाहक मुख्य जांच अधिकारी परमहंस आलियो से बचाव पक्ष ने जिरह की। मामी गवातुमांग का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील कुशल लुबिन ने उनकी अंतरिम रिहाई के समर्थन में कई दलीलें पेश की। गवातुमांग पिछले 307 दिनों से अंतरिम हिरासत में हैं। वहीं FCC के कार्यवाहक मुख्य जांच अधिकारी ने अदालत के समक्ष कहा कि गवातुमांग के फरार होने का जोखिम काफी अधिक है। काविन तपिसौ की रिपोर्ट पर एक बार फिर आस्था गोविंद चितावन का विवरण।
0: मामी गवातुमांगा की रिहाई का विरोध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने तीन कारण दिए हैं। उनके देश से भागने, सबूतों में बदलाव करने और गवाहों को प्रभावित करने का खतरा। लेकिन उनके वकील कुशाल लुबिन के अनुसार ये कारण ठोस नहीं है। मामले से जुड़े दस्तावेज पहले ही FCC के पास सुरक्षित हैं। साथ में मामी गवातुमांगा जांच में सहयोग कर रही है और FCC तथा DPP कार्यालय को 2 एफिडेविट्स भी दे चुके हैं। पूछताछ के दौरान FCC के परमहंस आलियो ने कहा कि मामी गवातुमांगा के भागने का खतरा अधिक है क्योंकि उनके पास 3 नावें हैं जिनमें मादागास्कर में दर्ज एक यॉट भी शामिल है। उनके अनुसार इन तीनों नावों का मादागास्कर में पता नहीं लगाया जा सका है। हालांकि मादागास्कर के बंदरगाह अधिकारियों से 2 दिन पहले मिले इस दस्तावेज पर बचाव पक्ष ने सवाल उठाए हैं, खासकर मादागास्कर की मौजूदा राजनीतिक स्थिति को देखते हुए। FCC के अनुसार नई टेक्निक की मदद से मामी गवातुमांगा के करीबी दाविद जों क्रिस्टियन टोमास के मोबाइल फोन पर की गई पुरानी सर्च की भी जानकारी हासिल हो गई है। इनमें मॉरिशस से रूनियन और मॉरिशस से फ्रांस तक समुद्री यात्रा में लगने वाले समय से जुड़ी जानकारियां हासिल है। मालागासी और आइवोरियन दोहरी नागरिकता रखने वाले व्यक्ति के लिए वीजा हासिल करने की प्रक्रिया के बारे में भी सर्च किए जाने की बात कही गई है। बचाव पक्ष की ओर से 4 गवाहों को बुलाया जाएगा। इनमें मामी गवातुमांगा की बेटी लोवा, फ्रेंच वकील एक्टो बेनोजिनी और मॉरिशस में एक मैनेजमेंट कंपनी के निदेशक फकिया मामूद भी शामिल है। FCC के मुख्य जांच अधिकारी से पूछताछ 9 सितंबर को जारी रहेगी और इसके लिए पूरा दिन रखा गया है।
1: मैजिस्ट्रेट शाहीन इंशिरा दोयाओ ने बचाव पक्ष के पक्ष में फैसला सुनाया है। बचाव पक्ष ने सतो हाजी अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ उचित संदेह के अस्तित्व को चुनौती दी थी। सतो हाजी अब्दुल्ला, जो एमर्शस के पूर्व प्रशासक रह चुके हैं और पूर्व ग्रैंड थर्नटन एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड के CEO भी थे, पर एमर्शस द्वारा किए गए 3.6 मिलियन रुपए के भुगतान से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग का अस्थाई आरोप लगाया गया था। ये अस्थाई आरोप कल 27 अगस्त को पोर्ट लुइस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में खारिज कर दिया गया। इस पर लुविना सूफी की रिपोर्ट पर एक बार फिर पेश है ये विवरण।
0: अपने फैसले में मैजिस्ट्रेट शाहीन इंशिरा दोहियाऊ ने कहा कि ये रकम सतर हाजी अब्दुल्ला के निजी खाते में नहीं बल्कि ग्रैंड फोनटन एडवाइजरी सर्विसेज के खाते में जमा हुई थी। अदालत ने एमर्शस की ओर से कॉन्ट्रैक्ट देने की प्रक्रिया में FCC द्वारा

0: बताई गई गड़बड़ियों पर भी गौर किया। एफसीसी के अनुसार इस कॉन्ट्रैक्ट को एमोशस के बोर्ड की मंजूरी नहीं मिली थी और जरूरी प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया था। एमोशस बाद में 2020 में आर्थिक मुश्किलों के कारण विशेष प्रशासन के तहत चली गई थी, लेकिन अदालत के अनुसार ये बातें सतर हाजी अब्दुल्ला को कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले से जोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी। मजिस्ट्रेट ने हालांकि साफ किया कि अस्थायी आरोप हटाए जाने का मतलब ये नहीं है कि सतर हाजी अब्दुल्ला को निर्दोष घोषित कर दिया गया है। सतर हाजी अब्दुल्ला की ओर से वकील रफ गुलबुल, वकील रईस गुलबुल और सीनियर अटॉर्नी जयकर गजाधर पेश हुए।
1: मॉरिशस में 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद फ्रांस के राजदूत फ्रेडरिक मुतेम अब अपना पद छोड़ रहे हैं। उन्होंने कल गुरुवार को ट्रेजरी बिल्डिंग में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से विदाई मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मॉरिशस और फ्रांस के बीच मजबूत संबंधों तथा दोनों देशों के बीच सहयोग को और बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। फ्रेडरिक मुतेम मौसई में इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च फॉर डेवलपमेंट में डिप्टी डायरेक्टर जनरल के पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। उनके उत्तराधिकारी का नाम भी तय चुका है। फ्रांस के G7 प्रेसिडेंसी के उप महासचिव अलेक्सिस लुई के सितंबर के मध्य में मॉरिशस पहुंचने की उम्मीद है। अलेक्सिस लुई ने कहा कि मॉरिशस में फ्रांस का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए एक विशेष सम्मान होगा। उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद सहयोग को आगे बढ़ाने की इच्छा भी व्यक्त की है। उनको सुनते हैं।
2: Après 3 très belles années passées à Maurice, où j'ai eu le privilège et le très grand plaisir d'être ambassadeur de la République française ici, et à la veille de mon départ, je quitte l'île samedi, dans 2 jours, je souhaitais passer, remercier le Premier ministre pour la confiance dont il m'a honoré et lui dire tout le plaisir que j'avais eu à travailler ici.
3: Et qu'est-ce que vous retenez de ce passage à Maurice ?
2: Il y a eu de très beaux moments. Naturellement, la visite du Président de la République, première visite depuis plus de 30 ans. Et puis, tout récemment, nous venons d'achever le déménagement de notre ambassade, qui est maintenant située à Telfair, dans ses nouveaux locaux. Ce sont là 2 dates, 2 événements qui marquent dans la vie d'un ambassadeur.
1: आज सुबह मॉरिशस रोड्रिग्स सेंट ब्रांडों और अगालेगा में चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार ये सुबह 5:22 पर शुरू हुई और 11:04 तक रहेगी। ये ऐसा चंद्र ग्रहण है जिसमें पृथ्वी की हल्की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इस दौरान चंद्रमा पूरी तरह या आंशिक रूप से ढकता नहीं, बल्कि उसकी चमक कुछ कम दिखाई दे सकती है। यही वजह है कि सामान्य चंद्र ग्रहण की तुलना में ये घटना बहुत हल्की होती है और बिना किसी खास उपकरण के इसे पहचानना मुश्किल है। ऐसी स्थिति तब बनती है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक विशेष स्थिति में आते हैं और पृथ्वी सूर्य की रोशनी के एक हिस्से को चंद्रमा तक पहुंचने से रोकती है। आसमान साफ होने पर भी आम लोगों के लिए इस हल्के बदलाव को पहचानना आसान नहीं होता। मॉरिशस में खगोल विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए इसे देखने का बेहतर समय सूर्योदय से पहले था। यह खगोलीय घटना आज सुबह 11:04 पर समाप्त होगी। इस पर प्रस्तुत है ये विशेष रिपोर्ट।
0: आज सुबह मॉरिशस रोड्रिग्स सेंट ब्रांडों और अगालेगा में चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार ये सुबह 5:22 पर शुरू हुई और 11:04 तक रहेगी। ये ऐसा चंद्र ग्रहण है जिसमें पृथ्वी की हल्की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इस दौरान चंद्रमा पूरी तरह या आंशिक रूप से ढकता नहीं, बल्कि उसकी चमक कुछ कम दिखाई दे सकती है। यही वजह है कि सामान्य चंद्र ग्रहण की तुलना में ये घटना बहुत हल्की होती है और बिना किसी खास उपकरण के इसे पहचानना मुश्किल है। ऐसी स्थिति तब बनती है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक विशेष स्थिति में आते हैं और पृथ्वी सूर्य की रोशनी के एक हिस्से को चंद्रमा तक पहुंचने से रोकती है। आसमान साफ होने पर भी आम लोगों के लिए इस हल्के बदलाव को पहचानना आसान नहीं होता। मॉरिशस में खगोल विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए इसे देखने का बेहतर समय सूर्योदय से पहले था। ये खगोलीय घटना आज सुबह 11:04 पर समाप्त होगी।
1: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल की नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के अनुसार बाढ़ के बाद 910 लोग लापता हैं और उनसे अब तक संपर्क नहीं हो पाया है। लापता लोगों में 517 विदेशी नागरिक, नेपाल सेना के 44 जवान और नेपाल पुलिस के 28 अधिकारी शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक अब तक 258 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 351 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। हालांकि नेपाल पुलिस की ओर से जारी

अलग अलग आंकड़ों के अनुसार बार में मरने वालों की संख्या 289 तक पहुंच चुकी है। राहत और बचाव अभियान के आगे बढ़ने के साथ दोनों संस्थाएं अपने अपने आंकड़े जारी कर रही हैं। इस बीच बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। कई क्षेत्रों में हर तरफ कीचड़ और मलबा जमा है, जबकि नई बाढ़ आने की आशंका के चलते लोगों और राहत दलों के लिए खतरा बना हुआ है। मौसम का हाल आम हालत मॉरिशस और रोड्रिग्स तथा सैम गोंदों के लिए आज शुक्रवार 28 अगस्त 2026 को सुबह 4 बजे से जोरदार हवाओं और ऊंचे ज्वार उठने की चेतावनी जारी की गई है, जो रविवार 30 अगस्त 2026 तक रात 10 बजे तक जारी रहेगी। दक्षिण पश्चिम की ओर से एक ठंड और जोरदार एंटीसाइक्लोन मास्कारोइंस टापुओं के करीब आ रहा है। हवा दक्षिण पूर्व से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और झोंके 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकती है। सुबह के समय पूर्वानुमान है मौसम सुहाना रहेगा और दिन के दौरान धीरे धीरे बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी। विशेषकर दक्षिणी और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों पर कोहरा छाया रहेगा। हवा दक्षिण की ओर से सुबह के समय 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और धीरे धीरे हवा जोर पकड़ती जाएगी और झोंके 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहली इलाकों पर अधिकतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज से तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट महसूस होगी। जरूरी जानकारी, जनता को सख्त सलाह दी जाती है कि वे उड़कर आने वाले मलबे से बेहद सावधान रहें, ऊंची इमारतों और अन्य ऊंचे ढांचों पर जाने या वहां किसी भी तरह की गतिविधि से बचने की सलाह दी गई है। क्रॉसविंड यानी आड़ी दिशा से चलने वाली तेज हवाओं के दौरान सड़कों पर वाहन चलाते समय भी विशेष सावधानी बरतें। दक्षिण पश्चिम दिशा से आने वाली ऊर्जा से भरपूर ऊंची समुद्री लहरें मास्कारोइंस टापू समूह की ओर बढ़ रही है और समुद्र की स्थिति को प्रभावित कर रही है। प्रवाल भीतियों से आगे समुद्र लगभग 3 मीटर ऊंची लहरों के साथ उग्र रहेगा। सुबह समुद्र की स्थिति और बिगड़ कर बहुत उग्र हो सकती है, जबकि लहरों की ऊंचाई 4 से 6 मीटर तक पहुंचने की संभावना है। इन ऊंची लहरों के कारण खासकर ज्वार के समय समुद्र का पानी तट से बाहर फैलने की आशंका है। पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों के निचले इलाकों में तटीय जलभराव की स्थिति पैदा हो सकती है। मछुआरों, लेजर क्राफ्ट संचालकों और आम जनता को समुद्र में न जाने की कड़ी सलाह दी जाती है। साथ ही ऊंचे ज्वार के दौरान इन तटीय इलाकों के समुद्र तटों पर जाने से भी बचने को कहा गया है। आज सूर्योदय सुबह 6:22 पर और सूर्यास्त शाम 6 बजे।

इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चली कंसल पर हमारे सहयोगी कादर हैं जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं और साथ में पूरे समाचार डेस्कों को धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए बढ़ती हम शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। रेलवे रोड रिबिया दिजोंगी में रेलवे रोड रिबिया दिजोंगी में 71 साल के 71 ईयर्स ओल्ड के श्री कृष्णालाल लुफाओ जिन्हें दीवानंद बोंजे के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 2 बजे उनके घर रिबिया दिजोंगी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तायक की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। कमीशन टिटिया 2 PM। रोशकुस्ते रोड प्लेंदी पपाई में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के श्री धनीलाल ओरिसरन जिन्हें सत्यानंद के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनकी पत्नी श्रीमती सुरेखा ओरिसरन के घर पेंदी पपाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुडे एट 2 PM। रॉयल रोड पिचराफे में 53 साल के 53 ईयर्स ओल्ड के श्री श्याम सोहो जिन्हें जोके के नाम से लोग ज्यादा जानते थे और जो बस ड्राइवर थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3:30 बजे उनकी माँ गीता सोहर के घर पिचराफे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कपमाल की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुडे एट 3:30 PM। 63 साल के 63 ईयर्स ओल्ड के श्री सुदेश कुमार रिजन सिंह जिन्हें अनूप के

0: नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 1 बजे उनकी पत्नी आशा रिजन सिंह के घर ला शापेल रोड मौदुस्थालिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मौदुस्थालिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुडे एट 1 PM। बासन रोड कैटरबोन में, बासन रोड कैटरबोन में 54 साल की 54 years old की श्रीमती केसवंती नेगम, श्रीमती केसवंती नेगम पैदाशाम सुभा जिन्हें गीता के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3 बजे उनकी बेटी ईशा बिसेसर के घर कैटरबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाएगी। कमीशन टुडे 3 PM। काली रोड फोंजसाक में, काली रोड फोंजसाक में 50 साल की 50 years old की श्रीमती सुमेदा शिवहरक, श्रीमती सुमेदा शिवहरक पैदाशाम जवाहिया और जिन्हें कविता के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे उनके पति श्री विनोद शिवहरक के घर फोंजसाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्रियोले की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। कमीशन टुडे 10 AM। मिडिल रोड प्लेंदी पापाई में, मिडिल रोड प्लेंदी पापाई में 73 साल के 73 years old के श्री रमेश सनुत, श्री रमेश सनुत की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे उनके घर प्लेंदी पापाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए PFO प्लेंदी पापाई की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। कमीशन टुडे 10 AM। गांधी रोड NS फ्लोगो में, गांधी रोड NS फ्लोगो में 53 साल के 53 years old के श्री विजय बाबूराम बंधु, श्री विजय बाबूराम बंधु जिन्हें मंगोल के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3 बजे उनकी पत्नी श्रीमती मालिनी बंधु के घर NS फ्लोगो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। कमीशन 3 PM। एवेन्यू ड्रिप बेलरोज में, एवेन्यू ड्रिप बेलरोज में 67 साल के 67 years old के श्री देवदत्त सिंह बिहारी, श्री देवदत्त सिंह बिहारी जिन्हें मामू के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे उनकी पत्नी श्रीमती सुनीता बिहारी के घर बेलरोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोदेगांव की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुडे 10 AM। पियलावाल सेंक्वा में 63 साल की 63 years old की श्रीमती सरिता बियादव सिंह, श्रीमती सरिता बियादव सिंह पैदाशाम असगौ जिन्हें सुनीता के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 12 बजे उनकी बेटी विश्वानी बियादव सिंह के घर सेंक्वा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भूले वाले दीपक की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8 noon। पियतिलेन रुत कास्टेल कॉन्फुक्रो में 71 साल की 71 years old की श्रीमती कृष्णावती बुधू पैदाशाम दुखिया जिन्हें बसंती के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी आज 12:15 पर उनके घर कास्टेल कॉन्फुक्रो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आलिब्रियों की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुडे 8:15 PM। रिवरसाइड फिनिक्स में 71 साल के 71 years old के जनाब महमूद निज़ाम मंगो इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा कल रात 7 बजे इनकी बेगम रोजीदा मंगर के मकान फिनिक्स से उठाकर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान ले जाया गया। फ्यूनरल लास्ट नाइट एट 7 PM। रॉय रोड लाफ्लोरा में 64 साल के 64 years old के श्री मनोहर कुदी जिन्हें मदन के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल शाम 3 बजे उठाई गई। फ्यूनरल क्रीमेशन यस्टरडे एट 3 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Welcome to RM2
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5,
1: East, West,
2: 96.4,
1: Center,
2: 99.4.
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Time check, 7 baje hai.
4: Morning beat.
5: Oh God, one more remix.
4: A good beat for your morning show.
1: RM2, Radio Musti, in the mix.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: 6:07 हुए हैं, दिन तो एकदम सुहाना है लेकिन बाद में मौसम खराब

होने वाला है, यानी कि ठंड और भी पड़ने वाली है। हमने तो ऑलरेडी अपने स्वेटर जो है पहन लिए हैं। भाई आप ही घर से निकलने वाले हो, बच्चे लोग प्लीज बी वेरी केयरफुल, आप स्वेटर पालतू ये सब जैसे कहते हैं आप पहन लो, क्योंकि ठंड बढ़ने वाली है। 3 degrees कम, ओहो, लेकिन बड़ा मजा आता है। आज है फ्राइडे 20th of August। वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, नीतू आपके साथ। सो प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम एंड ऑल द बेस्ट विशेस टू यू ऑल माय डियर लिसनर्स। रियली होप आपकी मॉर्निंग की शुरुआत अच्छी से हो गई हो, विद द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक, कुछ 90s, कुछ एवरग्रीन सॉन्ग्स के साथ। अभी मूड थोड़ा सा बदलते हैं, लेकिन हाँ बेस्ट म्यूजिक तो है ही, लेकिन आपका साथ देने के लिए, आपको अकंपनी करने के लिए आपकी मंजिल की ओर 5499-1294 पर बहुत सारे गेम्स है, यानी कि कादोज एंड गिफ्ट्स आप तक पहुंचाने के लिए साथ निभाते रहिएगा। 8 बजे तक तो मैं हूँ, फिर निर्मणी आ जाएंगी, देन उसके बाद भी और मस्ती और म्यूजिकल बीट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे।

0: चाहे फासले कितने भी बढ़ जाएं, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाए। MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन।
1: मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना।
2: HS Vision

0: A good beat for your morning show.
1: एक बार फिर बेस्ट विशेस सभी भाई बहनों के लिए और आंखों से दूर भले ही लेकिन नंदे दिल के बहुत ही करीब है तो ये जो रिश्ता है आप सब के लिए शुभ हो एकदम मंगलमय हो साल बजकर 17 मिनट टाइम फॉर अशोकों को एंड यू जस्ट हैव टू प्ले टू विद यानी कि जस्ट हैव टू प्ले विद एमबीसी रेडियो और आपकी जीत हो सकती है और एक वाउचर वर्थ 500 रुपीज आपके नाम आ सकता है बस करना क्या है जी हाँ ये है विनर्स की तरफ से ऑफर किया जा रहा है विनर्स की तरफ से एज यूजुअल एक प्रश्न आपसे पूछेंगे एक सवाल सही जवाब 5499 1294 मैसेजेस के जरिए व्हाट्सएप के जरिए ऑन 5999 2999 प्लीज आपकी जीत हो गई कल परसों या फिर कुछ दिन पहले एक महीने पहले बाकी लोगों को मौका दीजिए ठीक है एंड हाँ जब आप भेज रहे हो नाम पता पूरा नाम जैसे आपके आईडी कार्ड में है पता और सही जवाब सो आज का सवाल क्या है टेल मी अंटिल 6 सितंबर तक व्हाट इज द नॉर्मल प्राइस एंड द प्रमोशनल प्राइस ऑफ पेप्सी ब्लैक एंड 7-Up Zero Sugar 1.5 liters. बताए हमें कि 6 सितंबर तक व्हाट इज द नॉर्मल प्राइस एंड द प्रमोशनल प्राइस ऑफ पेप्सी ब्लैक एंड 7-Up Zero Sugar 1.5 liters. सही जवाब पता है फटाफट 5499 1294 पर

0: सुबह सुबह जब जागने का मन ना हो ना तो ऐसे गाने सुन लिया करो, एकदम से फुर्र से उठ जाएंगे.
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: Alright, पूछा था साहब आपसे एक सवाल कि until 6th of September, what is the normal price and the promotional price of Pepsi Black and 7-Up Zero Sugar 1.5 liters? जवाब तो फटाफट आपने दिए, लेकिन सही जवाब कईयों ने दिए हैं, लेकिन आपने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच. आप निराश मत होइए, हताश मत होइए, और भी गेम्स हैं, और भी गिफ्ट्स हैं, आप भाग ले सकते हो. तो सही जवाब है नॉर्मल प्राइस 67 रुपीज एंड प्रोमो प्राइस 55 रुपीज 95 सेंट्स. यहाँ पर सही जवाब दे गई हैं और बाजी जीत गई बिंदिया कालू ऑफ मामजलजान. आप रहती हैं गुडलैंड्स. Yes, bravo, congratulations, Bindya Kalu. और बस आपने खेला, आपने जीता और आपको मिल रहा है विनर्स की तरफ से 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर. एंड ऑफकोर्स ये जो वाउचर है आप तक पहुंचाएगा बाय पोस्ट, सो आप आराम से बैठ जाइएगा. एंड ऑफकोर्स वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस टू यू. आप जीतना चाहते हैं तो आप ही हमारे साथ जुड़े रहे.
3: नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार पर
4: पुराने गाने सिर्फ सुर और अल्फाज नहीं होते.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: ऐसी ही एक कुड़ी है उनसे बात करना चाह रही है लेकिन उनसे बात हो नहीं पा रही है
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: कभी कभी होता है ना कि आप किसी को सरप्राइज करना चाहते हैं गुड सरप्राइज हाँ आई मीन लेकिन आप खुद सरप्राइज हो जाते हैं हम कॉल कर रहे हैं आपको कॉल कर रहे हो क्योंकि इट्स बर्थडे टाइम ना योशिता हे माय डियर आप हो फ्रॉम अमिचे और आपकी मामा प्रीत पापा फ्रॉम थ्रियोले आपको विश करना चाह रहे हैं हैप्पी बर्थडे हम कब से आपको फ़ोन लगा रहे हैं लेकिन आप फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं क्या बात है शायद आप बिज़ी हैं क्योंकि आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं यू मान बी बिज़ी आप रास्ते पर होंगे कोई बात नहीं लेकिन सरप्राइज तो नहीं कर पाए लेकिन हाँ डेफिनेटली आपको विश कर सकते हैं इट्स योर बर्थडे टुडे एंड वी आर डिलाइटेड टू सेलिब्रेट योर स्पेशल डे विद लव एंड लॉफ्टर एंड एज पार्ट ऑफ योर बर्थडे ट्रीट यू आर इनवाइटेड टू कलेक्ट अ वाउचर फ्रॉम लुलु हाइपर सो लुलु हाइपर की तरफ से आपको आपके बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक वाउचर मिल रहा है कोई बात नहीं आपसे बात नहीं हो पाई एंड मम्मा पापा शायद हताश हो गए होंगे कोई बात नहीं लेकिन आपका नाम जरूर आ गया है एंड हमारी ओर से पूरी टीम की ओर से

भी तो मिलना चाहते हैं हमारे दूसरे विनर से. चलिए एक और सवाल हो जाए. दिस टाइम दिस गेम इज पावर्ड बाय ticketbox.mu. यस, यू जस्ट हैव टू क्लोज योर आईज एंड लेट द म्यूजिक टेक यू ऑन अ लॉन्ग ड्राइव ऑन अ जर्नी फिल्ड विद मेलोडीज जहां पर मेमोरीज भी होंगे एंड टाइमलेस वॉइस ऑफ शान. तो आपके लिए हम बस यही कहना चाहेंगे एंड मोर डिटेल्स हम आपको देंगे. एंड नाउ रेडियो मस्टी इज गिविंग यू द चांस टू एक्सपीरियंस दिस मैजिक लाइव. सो यू जस्ट हैव टू प्ले विद RM to Radio Musti and stand a chance to win a platinum ticket to assist the spectacular Shan live concert. One voice, one stage, one unforgettable night at SVICC on 5th, yani ki 5 September ko 2026. Of course, as from 8 PM, proudly organized by ticketbox.mu. Sawal pooch liya jaye, fatafat 5499-1294 par aap hume bataye, in which year was ticketbox.mu founded? Ji haan, aap hume bataye, in which year was ticketbox.mu founded? And of course, yahan par hum aapke saath jude hue hain. Thank you so much. Bataye hame 5499-1294 par 2018, 2019, 2020. Sekat nuf nuf duz nuf kat par.

तन्हा दिल तन्हा सफर वेल टाइम टू टाइम इज फ्लाइंग और भी गेम्स है बहुत सारी और बातें करने वाले हैं आपसे पूछा था सवाल कि इन विच योर बॉस टिकट बॉक्स डॉट एम यू फाउंडेड सही जवाब 2018 यहां पर सही जवाब देकर बाजी जीत गई हेमा मानिका ऑफ कैथबोन सो कंग्रेचुलेशंस आपकी जीत हुई है एंड ऑफ कोर्स आपको ये भी कहना चाहेंगे कि शान इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट बिलवड प्लेबैक सिंगर्स नोन फॉर हिज स्मूथ सोलफुल एंड वर्सेटाइल वॉइस and he rose to prominence in the late 90s and became a familiar voice in Bollywood through romantic aur unke melodic and feel good songs aur over the years Shan has delivered numerous memorable hits across Hindi cinema and Indian pop music earning a strong fan following across generations his warm vocal style effortless stage presence and ability to connect emotionally with audience that jaise kehte hain na ki unke bare mein bas unki aawaz सबको पागल बना देते हैं सो यू कैन एंजॉय द कैरिस्मेटिक एनर्जी सोलफुल वॉइस टाइमलेस मेलोडीज ऑफ शान लाइव ऑन SBICC स्टेज ऑन 5th September and 2026 as from 8 PM. So congratulations to our lucky winner and this game was powered by ticketbox.mu.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कभी वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।
3: लाफवार बिलबिल काजी रिटर्न कट विनर।
4: बिलबिल काजी दे रिटर्न कट विनर्स।
5: Du mercredi 26 août au lundi 31 août, l'ensemble de valises trollées de 3 pièces à 2499 roupies 95 et uniquement le vendredi 28 août, l'huile de soja Alpa de 1 litre à 66 roupies 95. Découvrez notre brochure sur notre page Facebook et sur winners.mu.
6: On est tous winners!
2: RM2
1: Radio Musty.
7: You're listening to RM2 Radio Musty.
8: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
7: Sports News
1: Radio Musty in the mix.
9: चलिए फटाफट सुनते हैं अरविंद से और जानते हैं आज के स्पोर्ट्स अपडेट्स। गुड मॉर्निंग।
10: गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स। लेट्स चेक आउट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। यूरोपियन चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज में ही महारथियों का टकराव होगा। कल मुन्ना

में ड्रॉ निकाले गए। चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन के रास्ते में होंगे मैनचेस्टर सिटी, एस्टन विला और बार्सिलोना। प्रीमियर लीग चैंपियन आर्सेनल का होम मैच होगा रियल मैड्रिड के खिलाफ और बायर्न म्यूनिख के यहां भी जाना होगा। उसके ग्रुप में बोरुशिया डॉर्टमुंड है जिसके खिलाफ होम मैच है, फिर वो खेलेगा एवे मैच रियल बेटिस के खिलाफ, लिल के खिलाफ होम मैच, नापोली एवे, साबा होम और स्लाविया प्राग एवे। लिवरपूल के साथ हैं एटलेटिको मैड्रिड, होम मैच है लिवरपूल के लिए, इंटर मिलान एवे, पोर्टो होम, क्लब ब्रुज एवे, विलारियल होम, फेनेरबाचे एवे, लॉन्स होम और एलएएसके एवे। दो साल बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड की वापसी हो रही है चैंपियंस लीग में। बायर्न म्यूनिख के यहां जाना है मैनचेस्टर यूनाइटेड को, फिर बायर्न म्यूनिख के खिलाफ होम मैच है ओल्ड ट्रैफर्ड में, एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ एवे मैच है, एएस रोमा होम, स्पोर्टिंग एवे, आरबी लाइप्ज़िग होम, विलारियल एवे, साबा होम, कोमो एवे। मैनचेस्टर सिटी पेरिस सेंट जर्मेन के खिलाफ खेलेगा अपने होम मैदान में, फिर बार्सिलोना के यहां जाना है एवे, स्पोर्टिंग होम, पोर्टो एवे, नापोली होम, लाइप्ज़िग एवे, एके एथेंस होम और लॉन्स एवे। एस्टन विला पेरिस सेंट जर्मेन का स्वागत करेगा, फिर बार्सिलोना के मैदान में जाएगा। बोरुशिया डॉर्टमुंड के खिलाफ मैच है, ये होम मैच होगा, फिर क्लब ब्रुज एवे, फेनेरबाचे होम, गलातासराय एवे, वाइकिंग होम और स्लाविया प्राग एवे। टोटल 36 टीमें हैं, 36 टीम, हर एक टीम 8 मैच खेलेगी, यानी 4 होम मैच, 4 एवे मैच। टॉप 12 नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई होंगी और 13 से 24 तक प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई, बाकी आउट। यूईएफए यूरोपा लीग के ग्रुप स्टेज की टीमें भी तैयार हैं, कल काफी मैच खेले गए, इनमें अरारत आर्मेनिया ने क्रायोवा को 1-0 से हराया, अरारत क्वालिफाई, इबेरिया 1 यागेलोनिया 2, 6-1 से यागेलोनिया की टीम क्वालिफाई होती है, बेसिक्टास क्वालिफाई हुई भले ही उसकी हार हुई, लिलस्ट्रोम 2 इग्नासिया 1, लिलस्ट्रोम टीम क्वालिफाई, Omonia Nicosia 4, Sint Truiden 2, Omonia Nicosia team qualify 4-3 से, Red Bull Salzburg की जीत हुई 3-0 से Jalbi team के खिलाफ, Red Bull Salzburg qualify, फिर Vitoria Plzen ने 5-1 से Red Star Belgrade को हराया, on aggregate 5-4 से Vitoria Plzen की team qualify, first leg में उसकी हार हुई थी 3-0 से, AGF 1, Benfica 3, Benfica qualify, CSK Sofia 0, OFI 2, OFI team qualify, Thun 2, Poznan 2, Poznan ki team qualify, Anderlecht qualify hui kal usne 3-0 se Kairat ko haraya, Ferencváros 4, Trabzonspor 0, Ferencváros ki team qualify ho gayi. UEFA Conference League se Rangers ki team out ho gayi, Jablonec team ne use 1-0 se haraya, on aggregate 1-1 raha, penalty par Jablonec team qualify. Cups 20, Freiburg, Monaco, Brann, FC Copenhagen ये क्वालिफाई हुए जीतकर, Panathinaikos को एक्स्ट्रा टाइम में जाना पड़ा क्वालिफाई होने के लिए, फिर Paphos, Hajduk Split, Riga, Ajax, Atalanta, Nordjyllen, Borac Luka जीतकर क्वालिफाई हुए, Brighton ने 4-0 से Tromso को हराकर अपना टिकट बुक किया, फिर Midtjylland, Gent, Lincoln, Red Imps विन यानी जीतकर क्वालिफाई, पार्टीजान की जीत हुई पर रेताफे क्वालिफाई हो गया। स्पेन के ला लीगा में बार्सिलोना की जीत 2-0 से एथलेटिक क्लब के खिलाफ, राफिना और लोपेस का 1-1 गोल, सेल्टा विगो उसकी हार हुई ओसासुना के खिलाफ 2-1 से। काराबाओ लीग कप के थर्ड राउंड के लिए क्वालिफाई हुए चेल्सी और फुलहाम, चेल्सी ने 2-0 से ल्यूटन टाउन को हराया, डानी वेलबेक का डेब्यू गोल और ओडोफिन का 1 ऑन गोल, फुलहाम 3 विंबलडन 0। आज से प्रीमियर लीग का दूसरा सप्ताह, दूसरा वीकेंड शुरू, क्रिस्टल पैलेस का महल खतरे में है क्योंकि आ रहा है मैनचेस्टर सिटी, ये आज का मैच है। लीग चैंपियनशिप में रेक्साम का मुकाबला बर्मिंगहम से, जर्मनी के बुंडेसलीगा में बायर्न म्यूनिख की एंट्री स्टुटगार्ट के खिलाफ, फिर इटली के सेरी आ में मैच है एसी मिलान और वेनेजिया के बीच, फ्रांस के लीग अन में लिल वर्सेस पेरिस सेंट जर्मेन। प्रीमियर लीग के इस सप्ताहांत, इस वीकेंड के फुल फिक्स्चर्स बता देते हैं। आज क्रिस्टल पैलेस मैनचेस्टर सिटी, कल अर्ली किक ऑफ लिवरपूल अपने

0: एनफील्ड रोड में होगा नॉटिंघम फॉरेस्ट के खिलाफ 3:30 किक ऑफ। फिर उसके बाद बोर्नमुथ एवर्टन, कोवेंट्री सिटी हल सिटी। कल का लेट मैच होगा टोटनहम हॉटस्पर न्यूकासल यूनाइटेड। संडे फिक्स्चर चेल्सी वर्सेस ब्राइटन, लीड्स यूनाइटेड ब्रेंटफोर्ड का स्वागत करेगा, संडरलैंड फुलहम, मैनचेस्टर यूनाइटेड इप्सविच टाउन का स्वागत करेगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड को जागना होगा 7:30 ये मैच है। मंडे नाइट मैच एस्टन विला वर्सेस आर्सेनल, 9 टीमें 3 अंक कमा चुकी हैं, 2 टीमों के पास है 1 अंक, 9 टीमों को खाता खोलना है, इनमें मैनचेस्टर यूनाइटेड भी है। ट्रांसफर न्यूज, ब्रैडली बाकोला ने अभी तक साइन नहीं किया है, डील इन प्रिंसिपल डॉन, 120 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर फाइनल टच बाकी है। बाकोला ने टूजू पाला पर ट्रांसफर पलाब कह रहे हैं बाकोला आ रहा है। चेल्सी की शॉपिंग जारी, एस्टन विला का गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज केवल 7.5 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर आ रहा है। पहले मैच में रॉबर्ट सांचेज के खराब परफॉर्मेंस के बाद चेल्सी को इमरजेंसी वर्ल्ड क्लास अनुभवी गोलकीपर मार्टिनेज को लाना पड़ा। विला ने मार्टिनेज को बेचा क्योंकि जापान का नंबर वन गोलकीपर सुजुकी आ गया है रफ्तार देने के लिए 30 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर। एस्टन विला ने बायर्न म्यूनिख से लियोन गोरेत्सा को भी साइन किया, ये फ्री ट्रांसफर रहा। टोटनहम हॉटस्पर ने इस बार मैनचेस्टर सिटी से स्ट्राइकर ओमा मामूश को साइन किया, लोन डील पर है पर बाद में स्पर्स को उसे खरीदना होगा 60 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर। इस सीजन टोटनहम हॉटस्पर नए खिलाड़ियों पर टोटल 312 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग खर्च किया है, 312 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग ट्रांसफर डील। अभी दो ट्रांसफर सस्पेंस में हैं। चेल्सी का एंजो फर्नांडेज, जिसे सिटी साइन करने के लिए तैयार है पर दाम कम दे रहा है, और एटलेटिको मैड्रिड का जूलियन अल्वारेज, जो बार्सिलोना में जाना चाहता है पर डील अभी तक पूरी नहीं हुई, आर्सेनल भी इंतजार कर रहा है। क्रिकेट, श्रीलंका ने बहादुरी दिखाते हुए मैच ड्रॉ किया भारतीय टीम के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच। सुनल दिनुषा 133 नॉट आउट रहा, भारतीय गेंदबाज उसे निकाल नहीं पाए, चट्टानी पारी रही और श्रीलंका के लिए एपिक ड्रॉ। दिनुषा इस सीरीज में 3 सेंचुरी बना पाया है, वही मैन ऑफ द मैच रहा और मैन ऑफ द सीरीज देवदत्त पदिकल। भारतीय टीम ने सीरीज जीत ली 1-0 से, पर वर्ल्ड टेस्ट सीरीज रैंकिंग के लिए ये एक ड्रॉ घातक साबित हो सकता है, अतिरिक्त अंक मिल सकते थे, केवल टॉप 2 फाइनल में जाती है टीम इंडिया, अभी 6 पोजीशन पर है। नजर डालते हैं रीजनल लेवल पर, क्षेत्रीय स्तर पर। इस रविवार को, इस संडे को रोशनो टूर्नामेंट में सतानिक रोशतेय का मुकाबला ओलंपिक ब्रामस्तान से होगा। फिर मोसेलमा सेंट आंद्रे में सैटरडे रोवर्स फुटबॉल क्लब की ओर से गाला मैच वेतरन कैडेट्स के खिलाफ, ये भी इसी रविवार को, इसी संडे को मोसेलमा सेंट आंद्रे के मैदान में। सेंट जूलियन डोटमा में जिल्फाई स्पोर्ट्स क्लब की 60th एनिवर्सरी के लिए सैटरडे शनिवार यानी कल जिल्फाई स्पोर्ट्स क्लब मल्टी जिम और पेटांक बुलोड्रोम की ओपनिंग और अवार्ड सेरेमोनी लगेगी 4 बजे जिल्फा स्पोर्ट्स क्लब में। सो दैट्स इट, द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। हैव अ वंडरफुल वीकेंड अहेड और आप सभी भाई बहनों को राखी रक्षाबंधन की मंगल कामनाएं। हैव अ ग्रेट राखी, टेक केयर, बाय बाय, बॉन वीकेंड, एंजॉय योर वीकेंड, विल कैच यू वेरी सून,
1: थैंक यू।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको, द फ्लो एक्सपर्ट।
3: Quality Déco finit ouvert ce nouveau showroom à Flac juste à côté MCB. Pour célébrer sa grande ouverture, la méga promo au plein de produits, morbe à partir de 25 roupies, granit à partir de 2000 roupies, lavabo, roche pour mur, robinetterie, sanitaire, toilette, baignoire et beaucoup les autres encore. Pas rater sa méga promo, viens découvrir un nouveau showroom de Quality Déco, Boulet Blanc à côté MCB, Flac, numéro téléphone 413 87 55 ou 413 10 53.
4: RM2
5: Radio Musty.
4: Feel the Musty.

बिल्कुल जाने नहीं देंगे. क्या बात है, फटाफट जवाब ही आ गया. हाँ जी, what is the, क्या पूछा आपसे. Originally Beaujolais जो है which country से है, Turkey, Italy or France, and सही जवाब है Turkey. सही जवाब देने वाले हमारे lucky winner आप है यश पुलचान of Union Park. So congratulations, आपको मिलता है a voucher worth 500 rupees.

एक और जो आपके नाम यस द विनर जो है हमारे आपको मिल सकता है वन एंट्री टिकट फॉर द कॉन्सर्ट जो 4 सितंबर 2026 को होने वाला है ऑफर्ड बाय इमेजिया इमेजिया ब्रिंग्स टू मॉरिशस मुख्तार शाह द वॉइस ऑफ मुकेश फॉर टू शोज ऑन फ्राइडे 4th एंड संडे 6 सितंबर एट कोडा आर्ट्स सेंटर तो आप हमें बताएं कि जो मुकेश साहब है जी हाँ कल हमने उनकी बरसी मनाई थी किस साल में उनका देहांत हुआ था 5499 1294 पर बताएं मुकेश जी का देहांत किस साल में हुआ था

0: मुकेश जी का, मुकेश जो ग्रेट सिंगर है उनका देहांत हुआ था 27th of August 1976. सही जवाब देने वाले आप है कौन? दुशन हलकुरिया ऑफ मोधालबिया, कांग्रेचुलेशंस आपको मिल रहा है. सो यू विल लिसन द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स ऑफ मुकेश एंड लाइक मैं पल दो पल का शायर हूँ, दोस्त दोस्त ना रहा वगैरह वगैरह. सो कांग्रेचुलेशंस एंड इन द वॉइस ऑफ मुख्तार शाह वंस अगेन आपको बधाइयाँ हो. तो यहाँ पर हम भी थोड़ी देर में आपसे विदा होंगे एंड आपने बड़ी प्यार से हमारा साथ निभाया. थैंक यू सो मच.
1: Une envie de McDonald's là tout de suite, mais pas envie de bouger. Pas gagné tracas. Fais appel à McDelivery. Ton burger préféré, tes frites bien chaudes et ta boisson fraîche livrée directement chez toi grâce à Deliveroo et Order Manzé. À midi, le soir, n'importe quand l'estomac l'a grogné, n'est commandé, nous amené. Et en ce moment, profite de la livraison gratuite. Plus d'infos sur notre site web. McDelivery, pas bouger, nous vini.
2: McDonald's, ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
3: Sean, live in Mauritius. Saturday, 5th of September at SBICC Pai. Join us for the biggest Sean concert ever produced in Mauritius with his complete crew of 28 artists. Get your tickets now at ticketbox.mu or call on 214-6464. Another great event brought to you by Gravity Zero. Ticketbox.mu, your one-stop shop for the best events, hotels and flights in Mauritius.
4: Tech Mag, powered by
5: 365. Bien plus encore.
6: What if your smartphone camera could physically move out of the phone and follow you around? That idea is already becoming a reality. Introducing the robot phone, featuring a camera mounted on a small motorized gimbal that can extend from the device. The camera can rotate and automatically follow a subject as they move, somewhat like the stabilizers already used by many video creators. The manufacturer has also partnered with a professional cinema camera.

0: camera company on imaging features for the device. The interesting part isn't simply adding more megapixels. After years in which smartphones have increasingly started to look alike, manufacturers are once again experimenting with the physical design of the camera itself. The next major change in smartphone photography might therefore be mechanical as well as digital.
1: TechMag was powered by
2: 365. Bien plus encore.
3: RM2
4: Radio Musty.
3: RM2 Radio Musty.
2: The time is brought to you by
5: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
3: Radio Musty.
6: North, South,
3: 103.5.
6: East, West,
3: 96.4.
6: Center,
3: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
3: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
7: रक्षाबंधन की शुभ कामना. मॉरिशस में दिमास 30 अगस्त की रात 10 बजे ले ऊंचा जुआर उठे के और तेज हवा के बही के चेतावनी जारी बाटे. मौसम विभाग दिने से बोला गल बाटे कि दिन के बखत बादल घिर आई और रह रह के पानी बरसते रही. खास करके टापू के दक्षिण होला हिस्सा असंड प्रांत वाला हिस्सा में और ऊंचा जुआर उठे के चेतावनी जारी कर गल बाटे. दक्षिण पश्चिम मदिनी से एगो ठंडा जोरदार एंटी साइक्लोन मास्कारिंस के टापू के भीरी आते बाते. हवा दक्षिण पूरब दिने से फजीर के बेरा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बही और दिन में 45 किलोमीटर प्रति घंटा ले पहुँचे सकी और कबो कबो झोंका 90 किलोमीटर प्रति घंटा ले पहुँचे सकी. पश्चिम और दक्षिण होला तटीय इलाका में समुद्र के पानी निचला क्षेत्र में घुस जाए और बाढ़ के उतरे की भी आशंका बाटे. आज शुक्र 28 अगस्त 2026 के एगो आंशिक चंद्र ग्रहण लगता. ई एगो खगोलीय घटना मॉरिशस से आर रोड्रिग्स सैमोदो आर अगालेगा से भी लौकी. फजीर 5:22 से शुरू भइल ई चंद्र ग्रहण दिन के 11:04 ले चली. ई आंशिक चंद्र ग्रहण मॉरिशस में भी लौकी. पदिसनी के पब्लिक बीच सार्वजनिक समुद्र तट ले पहुँच के सुनिश्चित करे खातिर सरकार कार्रवाई तेज कर ले बाटे. 4 नवा साइन बोर्ड लगावल गल बाटे और सार्वजनिक रास्ता यानी कि जो पब्लिक के जो सीमा रहेला ओकरा बाधित करे होला जन संरचना बाटे उ सब के हटाए खातिर हुआ के निवासी लोग के 7 के बखत देवल गल बाटे. एगो नोटिस भेजल गल बाटे. विपक्ष के नेता चेतन बाबूलाल की एगो तस्वीर के इस्तेमाल करत एगो कथित फर्जी विज्ञापन के माध्यम से आदमी के ठगे के कोशिश के एगो मामला सामने आल बाटे. फर्जी विज्ञापन में 13,500 रुपया के बदले प्रशासनिक दस्तावेज से जुड़ल सेवा दे के दावा करल गल बाटे. जबकि चेतन बाबूलाल आदमी से ई लिंक पर क्लिक नहीं करे के आर कोई के कोनो पैसा नहीं दे के आर एक संगे निजी दस्तावेज नहीं साझा करे के अपील कर ली हवन. मॉरिशस में 3 के कार्यकाल पूरा करला के बाद फ्रांस के राजदूत फ्रेडरिक बोंटेम अपन पद से विदा लेवत हवन. उनकर उत्तराधिकारी अलेक्सिस लॉई 7 महीना के मध्य में मॉरिशस पहुंचियन और दोनों देश के बीच सहयोग के आर मजबूत करे की दिशा में काम करियन. मालागासी कारोबारी मामी गवातुमांग के जमानत याचिका पर काल बेल एंड रिमांड कोर्ट में सुनवाई जारी रहल. बचाव पक्ष 307 से रिहासत में चलत गवातुमांग के अंतरिम रिहाई के पक्ष में दलील देलन. जबकि FCC के कार्यवाहक मुख्य जांच अधिकारी फरार हो के जोखिम के जस्ती बतैलन. आर उधर मिथुन चुलन के पत्नी विनेला चुलन के काल लुमोन में उलो के घर पर आतसू के गुच्छ छापामारी के बाद गिरफ्तार कर गल बाटे. पुलिस घर से DVO दूरबीन और गोली बरामद कर ली बाटे. ई कार्रवाई रेनियन और मॉरिशस के बीच 157 किलो गांजा के कथित तस्करी के साजिश के जांच के एगो हिस्सा है. और मैजिस्ट्रेट

0: शाहीन इंशिरा दोरियाउ बचाव पक्ष के पक्ष में फैसला सुनाई ली हवन। बचाव पक्ष सत हाजी अब्दुल्ला के गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ उचित संदेह के अस्तित्व के चुनौती देले रलन। सत हाजी अब्दुल्ला जो एमोशस के पूर्व प्रशासक रहल रलन और पूर्व ग्रांड थॉन्टन एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ भी रलन पर एमोशस देने से 3.6 मिलियन रुपया के भुगतान से जुड़ल कथित मनी लॉन्ड्रिंग के अस्थाई आरोप लगावल गल रहल। ये अस्थाई आरोप काल 27 अगस्त के पोर्टलिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में खारिज कर देवल गल बाटी। दूसरा देश के समाचार में नेपाल के नेशनल डिजास्टर रिस्क एंड रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी बोले बाते कि 12 के बाद 910 जना अभी ले लापता हुआ जाओ लोग के कोनो संपर्क नहीं बाटे। लापता आदमी में 517 गो विदेशी नागरिक, नेपाल सेना के 44 गो जवान और नेपाल पुलिस के 28 गो अधिकारी शामिल रहल। अधिकारी के मुताबिक अभी ले 258 शव बरामद कर गल बाटे जबकि 351 आदमी के सुरक्षित बचावल गल बाटे। हालांकि नेपाल पुलिस देने से जारी अलग अलग आंकड़ा के अनुसार बार में मरे होला आदमी के संख्या 469 ले पहुंच गल बाटे। राहत और बचाव अभियान के आगे बढ़ाई के संगे दोनों संस्था अपन अपन आंकड़ा जारी कर ली हवन जा। ई बीच बार प्रभावित इलाका में स्थिति बहुत गंभीर बनल बाटे। कई गो क्षेत्र में हर जगह कीचड़ आर मलबा जमा हो गल बाटे जबकि नवा बार के आय की आशंका भी आदमी में चलता। राहत दल खातिर ई एगो खतरा बनल बाटे। तो यही संगे ई भोजपुरी में समाचार समाप्त भयले। ध्यान से साथ देला ओका खातिर धन्यवाद। अभी
1: your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. A good beat for your morning show. Morning Beat, RM2. Radio.

0: एंड यस आप कनेक्टेड हो चुके हो आरम जो वीडियो मस्ती के साथ 8:14 होने को है। चलिए अभी के लिए जानते हैं मौसम का हाल।
1: It's the weather broadcast with winners.
2: On est tous winners.
3: मौसम का हाल आम हालत मोशेस तथा रोड्रिग्स और सैमोंडो के लिए आज शुक्रवार 28 अगस्त 2026 को सुबह 4 बजे से जोरदार हवाओं और ऊंचे ज्वार उठने की चेतावनी जारी की गई है जो रविवार 30 अगस्त 2026 रात 10 बजे तक जारी रहेगी। दक्षिण पश्चिम की ओर से एक ठंड और जोरदार एंटीसाइक्लोन मस्करिंग स्टापों के करीब आ रहा है। हवा दक्षिण पूर्व से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और झोंके 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकती है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान सुबह के समय मौसम सुहाना रहेगा। दिन के दौरान धीरे धीरे बादल घिराएंगे और रहकर बारिश होगी। विशेषकर दक्षिणी और सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों पर कोहरा छाया रहेगा। हवा सुबह के समय दक्षिण की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और धीरे धीरे जोर पकड़ती जाएगी और झोंके 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। तापमान अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच और शाही इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच। आपको हम याद दिला देते हैं कि आज से तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट महसूस होगी। चंद जरूरी सलाह। जनता को सख्त सलाह दी जाती है कि वे उड़कर आने वाले मलबे से बेहद सावधान रहें। ऊंची इमारतों और ऊंचे ढांचों पर जाने या वहां किसी भी तरह की गतिविधि से बचने की सलाह दी गई है। क्रॉसविंड यानी आड़ी दिशा से चलने वाली तेज हवाओं के दौरान सड़कों पर वाहन चलाते समय भी विशेष सावधानी बरतें। दक्षिण पश्चिम दिशा से आने वाली ऊर्जा से भरपूर ऊंची समुद्री लहरें मस्करिंग टापू समूह की ओर बढ़ रही हैं और समुद्र की स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। प्रवाल भीतियों से आगे समुद्र लगभग 3 मीटर ऊंची लहरों के साथ उग्र रहेगा। सुबह समुद्र की स्थिति और बिगड़कर बहुत उग्र हो सकती है जबकि लहरों की ऊंचाई 4 से 6 मीटर तक पहुंचने की संभावना है। इन ऊंची लहरों के कारण खासकर ज्वार के समय समुद्र का पानी तट से बाहर फैलने की आशंका है। पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों के निचले इलाकों में तटीय जलभराव की स्थिति पैदा हो सकती है। मछुआरों लेजर क्राफ्ट संचालकों और आम जनता को समुद्र में न जाने की कड़ी सलाह दी जाती है। साथ ही ऊंचे ज्वार के दौरान इन तटीय इलाकों के समुद्र तटों पर जाने से भी बचने को कहा गया है। आज सूर्योदय सुबह 6:22 पर और सूर्यास्त शाम 6 बजे।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
4: La foire Bilbil Kaji retourne cote winners.
5: Bilbil Kaji de retour cote winners. Du mercredi 26 août au lundi 31 août, l'ensemble de valises trollées de 3 pièces à 2499,95 roupies et uniquement le vendredi 28 août, l'huile de soja Alpa de 1 litre à 66,95 roupies. Découvrez notre brochure sur notre page Facebook et sur winners.mu.

0: Good Beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: ना होना कभी तू जुदा, कते ही नहीं होंगे जुदा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू योर मॉर्निंग बीट। इट्स नमनी जो आज फिर से आपका साथ दे रही है। और आज का दिन वैसे थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेशल है। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल दोज सेलिब्रेटिंग टुडे। वैसे कल कई लोगों ने रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर लिया है, लेकिन भाई बहन का प्यार किसी एक दिन का मोहताज थोड़ी है। कल मनाया हो या आज, प्यार और मिठास कभी लेट नहीं होता। अरे क्यूट सी लाइन है, याद रखिए, भाई बहन का रिश्ता अजीब सा होता है। लड़ते भी हैं, चिढ़ते भी हैं, लेकिन जब दुनिया सामने हो तो एक दूसरे के लिए सबसे पहले खड़े भी होते हैं। तो आज अपने सिबलिंग को एक हग, एक स्वीट मैसेज और हाँ थोड़ी सी मस्ती जरूर करना साथ में। एंड ऑल्सो आप कनेक्टेड है ना आरएमजी रेडियो मस्ती के साथ, क्योंकि आपके लिए लॉट्स ऑफ टिप्स होंगे, गाने होंगे और स्कोर भी होगा। स्टे ट्यून्ड।

0: चाहे फासले कितने भी बढ़ जाए, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाए। MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन।
1: मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना।
2: RM2 Radio Musti.
3: E, KFC so ultimate smoky singala.
4: Eh, pagay pon sa.
5: Ah bon? Pagay pon?
4: Non, pagay pon sa man.
3: To gay défilé que so leche, so tomate, so fromage, et que so ban la so smoky mayo, la au milieu en bas, mais déjà où ça? Pagay pon.
4: Eh ben, Lin promo Ultimate Smoky Zinga l'inale.
6: Dare the Ultimate Smoky Zinga avec tout ce que vous aimez à 345 roupies. Attention, ça fera des jaloux. KFC.
7: National Women Entrepreneur Council puis organise une expo vente pour promouvoir ban entreprise locale. Les 28, 29 et 30 août, l'eau la place taxi flac depuis 9h matin jusqu'à 5h30 tantôt. Ban femme entrepreneur pour vendre ce produit local et que nous invitons vin découvrir le savoir-faire mauricien. L'entrée est gratis. Check détail l'eau passe Facebook NWEC Mauritius.
2: RM2
8: Radio Musti.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: ना जाने क्या बताए हवाएं, वैसे हवाएं तो आजकल काफी कुछ बता रही है और हमारे यहाँ जोरदार हवाओं की चेतावनी भी जारी हो गई है। रविवार 30 अगस्त तक जारी रहेगी, लेकिन नो वरीज जी, आप यहीं पर RM2 Radio Musti के साथ कनेक्टेड रहना, क्योंकि आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। आप बस जुड़े रहना हमारे साथ और हवा चाहे जितनी भी तेज चले, इस फ्राइडे को हम मिलके बनाएंगे एकदम मस्त। तो नेक्स्ट गाना करते हैं, जो भी ड्राइव कर रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, स्टे सेफ, ड्राइव सेफ।
0: A good beat for your morning show. Come on. Morning Beat, RM2
1: Radio Musti.

0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
4: आपको पता है दोस्त, जिंदगी में रिश्तों की सबसे बड़ी करेंसी पैसा नहीं, विश्वास होता है। एक बार ट्रस्ट टूट जाए तो हजार सच भी कभी कभी कम पड़ जाते हैं। तो इस फ्राइडे को एक सिंपल सी बात याद रखिए, सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन सच्चाई से जीना दिल को जरूर हल्का रखता है। हैव अ ब्यूटीफुल फ्राइडे और आज का दिन पॉजिटिव वाइब्स, जेन्युइन स्माइल्स और अच्छी एनर्जी के नाम करते हैं।
0: Le sport c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
5: RM2
6: Radio Musti.

0: News.
1: Radio Musti in the mix.
2: अब के लिए चलिए डाइव करते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में लेटेस्ट अपडेट्स सुनते हैं अरविंद से. गुड मॉर्निंग.
3: गुड मॉर्निंग आपको. गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स. लेट्स चेक आउट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. काराबाओ लीग कप में कल रात प्रीमियर लीग की टीमों ने कोई गलती नहीं की. टोटनहम हॉटस्पर की शानदार जीत 5-1 से चार्ल्टन एथलेटिक के खिलाफ. नया खिलाड़ी सावी. गुड मॉर्निंग आपको. गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स. लेट्स चेक आउट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. यूरोपियन चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज में ही महारथियों का टकराव होगा. कल मोनाको में ड्रॉ निकाले गए चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन के रास्ते में होंगे मैनचेस्टर सिटी, एस्टन विला और बार्सिलोना. प्रीमियर लीग चैंपियन आर्सेनल का होम मैच होगा रियल मैड्रिड के खिलाफ और बायर्न म्यूनिख के यहां भी जाना होगा. उसके ग्रुप में बोरुशिया डॉर्टमुंड है जिसके खिलाफ होम मैच है. फिर वो खेलेगा एवे मैच रियल बेटिस के खिलाफ. लिल के खिलाफ होम मैच. नापोली एवे. साबा होम और स्लाविया प्राग एवे. लिवरपूल के साथ हैं एटलेटिको मैड्रिड. होम मैच है लिवरपूल के लिए. इंटर मिलान एवे. पोर्टो होम. क्लब ब्रुज एवे. विलारियल होम. फेनेरबाचे एवे. लॉन्स होम और LASK एवे. दो साल बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड की वापसी हो रही है चैंपियंस लीग में. बायर्न म्यूनिख के यहां जाना है मैनचेस्टर यूनाइटेड को. फिर बायर्न म्यूनिख के खिलाफ होम मैच है ओल्ड ट्रैफर्ड में. एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ एवे मैच है. AS रोमा होम. स्पोर्टिंग एवे. RB लेप्ज़िग होम. विलारियल एवे. साबा होम. कोमो एवे. मैनचेस्टर सिटी पेरिस सेंट जर्मेन के खिलाफ खेलेगा अपने होम मैदान में. फिर बार्सिलोना के यहां जाना है एवे. स्पोर्टिंग होम. पोर्टो एवे. नापोली होम. लेप्ज़िग एवे. AK एथेंस होम और लॉन्स एवे. एस्टन विला पेरिस सेंट जर्मेन का स्वागत करेगा. फिर बार्सिलोना के मैदान में जाएगा. बोरुशिया डॉर्टमुंड के खिलाफ मैच है ये होम मैच होगा. फिर क्लब ब्रुज एवे. फेनेरबाचे होम. गलातासराय एवे. वाइकिंग होम और स्लाविया प्राग एवे. टोटल 36 टीमें हैं. 36 टीम. हर एक टीम 8 मैच खेलेगी यानी 4 होम मैच 4 एवे मैच. टॉप 12 नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई होंगी और 13 से 24 तक प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई. बाकी आउट. UEFA यूरोपा लीग के ग्रुप स्टेज की टीमें भी तैयार हैं. कल काफी मैच खेले गए. इनमें अरारत आर्मेनिया ने क्रायोवा को 1-0 से हराया. अरारत क्वालिफाई. इबेरिया 1 यागेलोनिया 2. 6-1 से यागेलोनिया की टीम क्वालिफाई होती है. बेसिक्टास क्वालिफाई हुई भले ही उसकी हार हुई. लिलस्ट्रोम 2 इग्नासिया 1. लिलस्ट्रोम टीम क्वालिफाई. ओमोनिया निकोजिया 4 सिंट क्रूडन 2. ओमोनिया निकोजिया टीम क्वालिफाई 4-3 से. रेडबुल साल्सबर्ग की जीत हुई 3-0 से जाल्बी टीम के खिलाफ. रेडबुल साल्सबर्ग क्वालिफाई. फिर विक्टोरिया प्लाजन ने 5-1 से रेड स्टार बेलग्राद को हराया.

on aggregate 5-4 से विक्टोरिया प्लाजेन की टीम क्वालिफाई फर्स्ट लेग में उसकी हार हुई थी 3-0 से AGF 1 बेनफिका 3 बेनफिका क्वालिफाई CSKA सोफिया 0 OFI 2 OFI टीम क्वालिफाई टून 2 पोजनन 2 पोजनन की टीम क्वालिफाई अंडेले क्वालिफाई हुई कल उसने 3-0 से कायरात को हराया फेरेनवारोस 4 ट्रैबजोंस्पोर 0 फेरेनवारोस की टीम क्वालिफाई हो गई UEFA कॉन्फ्रेंस लीग से रेंजर्स की टीम आउट हो गई याब्लोनेक टीम ने उसे 1-0 से हराया ऑन एग्रीगेट 1-1 रहा पेनाल्टी पर याब्लोनेक टीम क्वालिफाई कप्स 20 फ्रीबर्ग मोनाको ब्रन एफसी कोपेनहेगन ये क्वालिफाई हुए जीतकर पनाथिनाइकोस को एक्स्ट्रा टाइम में जाना पड़ा क्वालिफाई होने के लिए फिर पाफोस हाजडुक स्प्लिट रीगा आयाक्स अटलांटा नोजेलन बोराक लुका जीत कर क्वालिफाई हुए ब्राइटन ने 4-0 से ट्रोम्जो को हराकर अपना टिकट बुक किया फिर मिजिलान गेंट लिंकन रेड इम्स विन यानी जीत कर क्वालिफाई पार्टिजान की जीत हुई पर गेटाफे क्वालिफाई हो गया स्पेन के ला लीगा में बार्सिलोना की जीत 2-0 से एथलेटिक क्लब के खिलाफ राफिना और लोपेस का 1-1 गोल सेल्टा विगो उसकी हार हुई ओसासुना के खिलाफ 2-1 से कराबाओ लीग कप के थर्ड राउंड के लिए क्वालिफाई हुए चेल्सी और फुलहाम चेल्सी ने 2-0 से ल्यूटन टाउन को हराया डानी वेलबेक का डेब्यू गोल और ओडोफिन का एक ऑन गोल फुलहाम 3 विंबलडन 0 आज से प्रीमियर लीग का दूसरा सप्ताह दूसरा वीकेंड शुरू क्रिस्टल पैलेस का महल खतरे में है क्योंकि आ रहा है मैनचेस्टर सिटी ये आज का मैच है लीग चैंपियनशिप में रेक्साम का मुकाबला बर्मिंगहम से जर्मनी के बुंडेसलीगा में बायर्न म्यूनिख की एंट्री स्टुटगार्ट के खिलाफ फिर इटली के सेरी आ में मैच है एसी मिलान और वेनेजिया के बीच फ्रांस के लीग अन में लिल वर्सेस पारी सैन जर्मेन प्रीमियर लीग के इस सप्ताहांत इस वीकेंड के फुल फिक्स्चर्स बता देते हैं आज क्रिस्टल पैलेस मैनचेस्टर सिटी कल अर्ली किक ऑफ लिवरपूल अपने अनफील्ड रोड में होगा नॉटिंघम फॉरेस्ट के खिलाफ 3:30 किक ऑफ फिर उसके बाद बोर्नमुथ एवर्टन कोवेंट्री सिटी हल सिटी कल का लेट मैच होगा टोटनहम हॉटस्पर न्यूकासल यूनाइटेड संडे फिक्स्चर चेल्सी वर्सेस ब्राइटन लीड्स यूनाइटेड ब्रेडफोर्ड का स्वागत करेगा सन्डरलैंड फुलहाम मैनचेस्टर यूनाइटेड इप्सविच टाउन का स्वागत करेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड को जागना होगा 7:30 ये मैच है मंडे नाइट मैच एस्टन विला वर्सेस आर्सेनल 9 टीमें 3 अंक कमा चुकी हैं 2 टीमों के पास है 1 अंक 9 टीमों को खाता खोलना है इनमें मैनचेस्टर यूनाइटेड भी है फ्रांस न्यूज ब्रैडली बाकोला ने अभी तक साइन नहीं किया है डील इन प्रिंसिपल डॉन 120 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर फाइनल टच बाकी है बाकोला ने टूजू पाला पर ट्रांसफर पलाब कह रहे हैं बाकोला आ रहा है चेल्सी की शॉपिंग जारी एस्टन विला का गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज केवल 7.5 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर आ रहा है पहले मैच में रॉबर्ट सांचेज के खराब परफॉर्मेंस के बाद चेल्सी को इमरजेंसी वर्ल्ड क्लास अनुभवी गोलकीपर मार्टिनेज को लाना पड़ा विला ने मार्टिनेज को बेचा क्योंकि जापान का नंबर वन गोलकीपर सुजुकी आ गया है रफ्तार देने के लिए 30 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर एस्टन विला ने बायर्न म्यूनिख से लियोन गोरेट्सा को भी साइन किया ये फ्री ट्रांसफर रहा टोटनहम हॉटस्पर ने इस बार मैनचेस्टर सिटी से स्ट्राइकर ओमा मामूश को साइन किया लोन डील पर है पर बाद में स्पर्स को उसे खरीदना होगा 60 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर इस सीजन टोटनहम हॉटस्पर नए खिलाड़ियों पर टोटल 312 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग खर्च किया है 312 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग ट्रांसफर डील अभी 2 ट्रांसफर सस्पेंस में हैं चेल्सी का एंजो फर्नांडेज जिसे सिटी साइन करने के लिए तैयार है पर दाम कम दे रहा है और एथलेटिको मैड्रिड का जूलियन अल्वारेज जो बार्सिलोना में जाना चाहता है पर डील अभी तक पूरी नहीं हुई आर्सेनल भी इंतजार कर रहा है क्रिकेट श्रीलंका ने बहादुरी दिखाते हुए मैच ड्रॉ किया
भारतीय टीम के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच सुनील दिनुषा 133 नॉट आउट रहा। भारतीय गेंदबाज उसे निकाल नहीं पाए, चट्टानी पारी रही और श्रीलंका के लिए एपिक ड्रॉ। दिनुषा इस सीरीज में 3 सेंचुरी बना पाया है, वही मैन ऑफ द मैच रहा और मैन ऑफ द सीरीज देवदत्त पदिकल। भारतीय टीम ने सीरीज

0: जीत ली 1-0 से, पर वर्ल्ड टेस्ट सीरीज रैंकिंग के लिए ये एक ड्रॉ घातक साबित हो सकता है। अतिरिक्त अंक मिल सकते थे, केवल टॉप टू फाइनल में जाती है टीम इंडिया, अभी सिक्स पोजीशन पर है। नजर डालते हैं रीजनल लेवल पर, क्षेत्र स्तर पर। इस रविवार को, इस संडे को रोशनो टूर्नामेंट में सतानिक रोशतेया का मुकाबला ओलंपिक ब्रामस्तान से होगा। फिर मोसेलमा सेंट आंद्रे में सैटरडे रोवर्स फुटबॉल क्लब की ओर से गाला मैच वेटरन कैडेट्स के खिलाफ, ये भी इसी रविवार को, इसी संडे को मोसेलमा सेंट आंद्रे के मैदान में। सेंट जूलियन डोटमा में जिल्फाई स्पोर्ट्स क्लब की 60th एनिवर्सरी के लिए सैटरडे शनिवार यानी कल जिल्फाई स्पोर्ट्स क्लब मल्टी जिम और पेटांक बुलोड्रोम की ओपनिंग और अवार्ड सेरेमोनी लगेगी 4 बजे जिल्फा स्पोर्ट्स क्लब में। सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। हैव अ वंडरफुल वीकेंड अहेड और आप सभी भाई बहनों को राखी रक्षाबंधन की मंगल कामनाएं। हैव a great Rocky. Take care. Bye-bye. Bon weekend. Enjoy your weekend. We'll catch you very soon.
1: Thank you, Vin ji, for the latest updates. So, dosto, milte hain next hour mein Sanshipt Samachar ke baad.
2: Welcome to RM2.
3: Radio Masti.
2: North.
3: South.
4: 103.5.
2: East.
4: West.
3: 96.4.
4: Center.
3: 99.4.
2: RM2, Radio Musti.
3: Radio Musti.
2: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
1: Good morning, subah ke 9 baje hai.

0: देश के समाचारों के साथ स्टूडियो में आ गई हैं शीता रघु। चलिए उनसे मिलते हैं, सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। नमस्कार शीता।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले हम आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देना चाहेंगे। कलाई पर सजा एक धागा और उससे जुड़ी अनगिनत भावनाएं, कहीं भाई की लंबी उम्र की कामना तो कहीं बहन की सुरक्षा और सम्मान का विश्वास। रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन के रिश्ते का पर्व नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास, जिम्मेदारी और पारंपरिक मूल्यों का उत्सव है। आज देश भर में रक्षाबंधन की रौनक है। बाजारों में रंग बिरंगी राखियों की चमक, मिठाइयों की खुशबू और घर घर में उत्सव का माहौल छाया हुआ है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर स्नेह और विश्वास का धागा मजबूत कर रही है, तो भाई भी उनकी खुशियों, सम्मान और सुरक्षा का संकल्प ले रहे हैं। लेकिन बदलते समय के साथ रक्षाबंधन का अर्थ भी व्यापक हुआ है। आज सुरक्षा का मतलब केवल सुरक्षा देना नहीं बल्कि एक दूसरे के सपनों, अधिकारों और सम्मान और आत्मनिर्भरता की रक्षा भी करना है। अन्य खबरों में मिथुन चुलन की पत्नी विनेला चुलन को कल गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी लिमोन में रारोड स्थित उनके घर पर रोजबेल अत्सु की ओर से की गई तलाशी के बाद हुई। पुलिस ने घर से एक डीवीआर और दूरबीन, इसके साथ गोलियां भी बरामद की। ये कार्रवाई रेनियन और मॉरिशस के बीच 157 किलो गांजे की कथित तस्करी से जुड़े एक कथित साजिश मामले की जांच के तहत की गई है। इस मामले में विनेला चुलन के पति मिथुन चुलन की पुलिस तलाश जारी है। फेसबुक पर विपक्ष के नेता चेतन बाबूलाल की तस्वीर का इस्तेमाल कर कथित ऑनलाइन ठगी की कोशिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। उनके नाम से जारी एक बयान के अनुसार फेसबुक पर एक फर्जी स्पॉन्सर्ड विज्ञापन के जरिए 13,500 रुपए के बदले प्रशासनिक दस्तावेजों से जुड़ी सेवाएं देने का दावा किया जा रहा है। चेतन बाबूलाल ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने इस विज्ञापन को कभी अधिकृत नहीं किया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे इस विज्ञापन में दिए गए लिंक पर क्लिक ना करें, अपने निजी दस्तावेज किसी के साथ साझा ना करें और

0: किसी भी तरह का भुगतान भी ना करें। मैजिस्ट्रेट शाहीन इंशिरा दुरियाऊ ने बचा पक्ष के पक्ष में फैसला सुनाया है। बचा पक्ष ने सतो हाजी अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ उचित संदेह के अस्तित्व को चुनौती दी है। सतो हाजी अब्दुल्ला जो एमरिशस के पूर्व प्रशासक रह चुके हैं, पूर्व ग्रांथर्नटन एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ भी थे, पर एमरिशस द्वारा किए गए 3.6 मिलियन रुपए के भुगतान से जुड़ी कथित मनी लॉन्ड्रिंग का अस्थाई आरोप लगाया गया है। और उधर मालागासी कारोबारी मामी गावातुमांग की जमानत याचिका पर कल 27 अगस्त को बेल एंड रिमांड कोर्ट में सुनवाई जारी रही। इस दौरान फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की कार्यवाहक मुख्य जांच अधिकारी परमाहंस आलियो से बचा पक्ष ने जिरह की। मामी गावातुमांग का प्रतिनिधित्व कर रही वकील कुशल लुबिन ने उनकी अंतरिम रिहाई के समर्थन में कई दलीलें पेश की। गावातुमांग पिछले 307 दिनों से अंतरिम हिरासत में हैं। वहीं एफसीसी के कार्यवाहक मुख्य जांच अधिकारी ने अदालत के समक्ष कहा कि गावातुमांग के फरार होने का जोखिम काफी अधिक है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल के नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के अनुसार बाढ़ के बाद 910 लोग लापता हैं और उनसे अब तक संपर्क नहीं हो पाया। लापता लोगों में 517 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सेना के 44 जवान और पुलिस नेपाल पुलिस के 28 अधिकारी भी शामिल हैं। हालांकि नेपाल पुलिस की ओर से जारी अलग अलग आंकड़ों के अनुसार बाढ़ में मरने वालों की संख्या 469 तक पहुंच चुकी है। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: वैसे मन गा रहा है, झूम भी रहा है, क्योंकि इट्स अ फ्राइडे, यानी कि फन डे। वीकेंड का जज्बा पहले से ही फील हो रही है ना, त्योहार जो है फील कैसा नहीं होगा। हैप्पी रक्षाबंधन वंस अगेन टू ऑल द दोज जो मना रहे हैं, जिन्होंने कल भी मनाया। फेस्टिव वाइब्स ऑन गोइंग है। आप यही पर रहना कि नेक्स्ट आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ, क्योंकि इतना मनी 12 बजे तक आपकी ही मस्ती मॉर्निंग शो में अनिसा और में होने वाला है योर होरोस्कोप, टिप्स और बहुत सारे अच्छे गाने। स्टे ट्यून्ड यही पर, एंड आपके डेडिकेशंस आल्सो हम पढ़ने वाले हैं 5499-1294 पर।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: नौबर करबी समय हुए हैं। I'm sure कि जो लोग अभी ट्रैफिक में हैं, अब ये ही कह रहे होंगे कि मैं क्या करूं। लेकिन एक बात बताओ यार, ट्रैफिक स्लो है या फिर आपका फ्राइडे का मूड पहले से ही ज़्यादा फास्ट है? ऑफिस का स्ट्रेस बाद में लेंगे, पहले थोड़ा म्यूजिक एंजॉय करो क्योंकि फ्राइडे की सुबह है और वाइब्स बिल्कुल वीकेंड वाली है। तो ये नेक्स्ट गाना दो स्टार मूवी से आपके नाम करती है, ड्राइव सेफ।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: चाहे फासले कितने भी बढ़ जाए, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाए। MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन।
1: मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना।
2: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ट्यून इन टू द वेरी बेस्ट रेडियो मस्ती, योर नंबर वन बेलोवेड स्टेशन।

0: फ्राइडे वाइब्स ऑन गोइंग है अभी के लिए, चलिए जानते हैं आज का होरोस्कोप।
1: योर डेली होरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।
0: तो शुरुआत करते हैं विद एरीज मेष राशि। आज ना फुल हीरो वाली एनर्जी है, कॉन्फिडेंस रखो, सीन आपका ही होगा। लकी कलाप का है रेड और नंबर है 9।
2: टॉरस वृषभ राशि,
0: रोमांस का बैकग्राउंड म्यूजिक बज सकता है। लकी कलर आज आपका है पिंक और नंबर है 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि,
0: आज मल्टीटास्किंग बिल्कुल बॉलीवुड हीरोइन जैसी, सब मैनेज हो जाएगा। लकी कलर येलो और नंबर है 3।
2: कैंसर कर्क राशि,
0: दिल के सुनो, आज इमोशनल सीन हैप्पी एंडिंग दे सकता है। लकी कलर आपका है सिल्वर और नंबर है 2।
2: लियो सिंह राशि,
0: आज स्पॉटलाइट आप पर ही है, बस ओवर एक्टिंग मत करना। लकी कलर आपका है गोल्डन और नंबर है 1।
2: वर्गो कन्या राशि,
0: प्लानिंग मेरे दोस्त, प्लानिंग करो वरना लाइफ में इंटरवल के बाद प्लॉट ट्विस्ट आ जाएगा। लकी कलर आपका है ग्रीन और नंबर है 5।
2: लिब्रा तुला राशि,
0: लव और दोस्ती में दोनों में आज केमिस्ट्री जबरदस्त होगी। लकी कलर आपका है ब्लू और नंबर है 7।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: मिस्ट्री मूड आपका ऑन हो चुका है, कम बोलो ज्यादा ऑब्जर्व करो। लकी कलर आपका है पर्पल और नंबर है 8।
2: सजिटेरियस धनु राशि,
0: एडवेंचर का मूड है, आज घर से बाहर निकलिए। लकी कलर आपका है ऑरेंज और नंबर है 4।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: मेहनत का रिवॉर्ड मिलने वाला है, पिक्चर अभी बाकी है। लकी कलर ब्राउन और नंबर है 11।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: आज कुछ हटके करने का दिन है, अपनी स्टोरी खुद लिखिए। लकी कलर आपका है टर्कवाइज और नंबर है 10।
2: पाइसेस मीन राशि,
0: थोड़ा ड्रीमी लेकिन फिल्मी भी, फ्राइडे एवर यह बनता है। लकी कलर आपका है व्हाइट और नंबर है 12।
1: Your daily horoscope, RM2, Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: इस 942 और आप कनेक्टेड हो चुके हो मस्टी मॉर्निंग के साथ। इश्क की बातें कुछ छोड़ते हैं आज जब बात करते हैं भाई बहन की। अगर आप उन लोगों में से है जो सुबह उठ के बोले अरे यार आज तो रक्षाबंधन है और गिफ्ट लाना तो दूर रह, गिफ्ट के बारे में सोचा भी नहीं, तो नो पैनिक, रक्षाबंधन एमरजेंसी टिप्स लेकर आई है नर्मनी। तो टिप नंबर वन है कि एक्सपेंसिव गिफ्ट ज़रूरी नहीं है। एक क्यूट सा पर्सनलाइज्ड गिफ्ट या फिर हैंड रिटन नोट दे दीजिए उन्हें। बस नोट में ये लिखना तू मेरा फेवरेट सिबलिंग है। लिखने से पहले चेक कर लेना कि घर में दूसरा सिबलिंग्स है कि नहीं। एंड टिप नंबर टू है, गिफ्ट नहीं मिला मिठाई लेकर आओ। किसको मिठाई पसंद नहीं है यार। अरे अगर मिठाई की दुकान भी बंद मिली तो चॉकलेट से काम चलाओ, भाई बहन का प्यार GST नहीं लगता। तो आपके लिए और भी चिप्स लाती रहेगी नर्मनी, आप बस ये पर ट्यून इन रहना एंड एंजॉय कीजिए हमारे साथ इस ब्यूटीफुल फ्राइडे को RM2 रेडियो मस्ती पर ही।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

चाहे फासले कितने भी बढ़ जाए, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाए। MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन।

ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं बहुत सारे स्पेशल वंस, उनको नेक्स्ट आवर में पढ़ेंगे जरूर। अगर आपने मिस कर दिया, नो वरीज, 5491294 पर आप अभी भी भेज सकते हो योर विशेस, योर डेडिकेशंस अपने मस्टे मॉर्निंग में। सी यू इन द नेक्स्ट आवर।

0: to Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Good morning. सुबह के 10 बजे हैं. चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. आपसे अशिता नमस्कार.
6: नमस्कार नीलमणि, श्रोताओं को भी नमस्कार. संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है. कलाई पर सजा है छोटा सा धागा, लेकिन उसमें समाया स्नेह जीवन भर का. आज रक्षाबंधन है, भाई बहन के प्रेम विश्वास और अपनापन का सुंदर पर्व. बचपन की शरारतें रूठना मनाना और मुश्किल घड़ी में हमेशा एक दूसरे का साथ निभाना. राखी का ये पर्व केवल खून के बंधन तक सीमित नहीं, दिल से जुड़े भाई बहनों को भी उतनी ही खूबसूरती से करीब लाता है. इस पर्व के साथ पावन श्रावण मास का भी समापन होता है. इसी स्नेह यादों और भावनाओं को समेटती हम आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देती हैं. मलागासी कारोबारी मामी गवातुमांग के मामले के बारे में बात करें. वकील कुशल लुबिन के अनुसार FCC की ओर से बताए गए 3 आधार फरार होने का जोखिम, सबूतों में हेरफेर और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका टिकते नहीं है. बचाव पक्ष ने अपनी दलीलों में हिरासत की लंबी अवधि का हवाला दिया, साथ ही कहा कि दस्तावेजी सबूत पहले ही FCC के कब्जे में सील बंद है. बचाव पक्ष ने यह भी बताया कि मामी गवातुमांग ने जाँच में सहयोग किया है और FCC तथा DPP के कार्यालय को 2 एफिडेविट सौंपे हैं. दूसरी ओर FCC के कार्यवाहक मुख्य जांच अधिकारी परमाहंस अलियो का कहना है कि गवातुमांग के फरार होने का जोखिम अभी भी काफ़ी अधिक है. उन्होंने बताया कि गवातुमांग के पास 3 नावें हैं जिनमें मडागास्कर में पंजीकृत एक यॉट भी शामिल है. उनके अनुसार इन 3 नौकाओं का ग्रैंड आइलैंड यानी मडागास्कर में पता नहीं लगाया जा सका. FCC को 2 दिन पहले मडागास्कर के बंदरगाह अधिकारियों से मिला एक दस्तावेज भी अदालत में पेश किया गया. हालांकि वकील कुशलुबी ने इस दस्तावेज की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया और मडागास्कर की मौजूदा राजनीतिक स्थिति का भी हवाला दिया. इसके चलते मलागासी कारोबारी मामी गवातुमांग की जमानत याचिका पर कल 27 अगस्त को बेल एंड रिमांड कोर्ट में सुनवाई जारी रही. इस दौरान फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के कार्यवाहक परमाहंस अलियो से बचाव पक्ष ने जिरह किया और मामी गवातुमांग का प्रतिनिधित्व करे वकील कुशलुबिन ने उनके रिहाई के समर्थन में कई दलीलें पेश की. आपको हम याद दिला देते हैं कि FCC के कार्यवाहक मुख्य जांच अधिकारी ने अदालत के समक्ष कहा कि गवातुमांग के फरार होने का जोखिम काफ़ी अधिक है. और पंडिसनी में समुद्र तट तक आम लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों ने कदम तेज कर दिए हैं. नए साइन बोर्ड लगाए गए हैं और एक सार्वजनिक रास्ते को साफ कर दिया गया है. वहीं सार्वजनिक रास्तों को बाधित करने वाली संरचनाओं को हटाने के लिए कुछ स्थानीय निवासियों को नोटिस जारी किए गए हैं. और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई बाढ़ के कारणों की शुरुआती जांच में एक ग्लेशियर के ढहने की बात सामने आई है. वैज्ञानिकों ने बताया है कि ये घटना तेजी से पिघल रही हिमालयी बर्फ की गंभीर समस्या को उजागर करती है. शुरुआती रिपोर्टों में भूकंप की जानकारी सामने आने के बाद माना गया था कि भूकंप के झटकों से भूस्खलन हुआ और उसके बाद बाढ़ आई. इस आपदा में कम से कम 469 लोगों की मौत की खबर प्राप्त हुई है. हालांकि अमरीकी भूगोलीय सर्वेक्षण

0: ने बाद में स्पष्ट किया कि आपदा का कारण ग्लेशियर का ढहना था. ग्लेशियर के ढहने का मतलब ग्लेशियर या उसकी किसी हिस्से का अचानक टूटकर बिखर जाना है. वैज्ञानिकों के अनुसार ढहे हुए ग्लेशियर के घाटी के तल से टकराने का प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि इससे 5.2 तीव्रता के भूकंप जैसा कंपन दर्ज हुआ. इसकी पुष्टि USGS के आंकड़ों और घटना का विश्लेषण करने वाले वैज्ञानिकों ने की है. और वहीं पर डंडी यूनिवर्सिटी के ग्लेशियर विशेषज्ञ डॉक्टर साइमन कुक ने अपनी टीम के साथ नेपाल में लांगटांग लीरुंग चोटी के पास ग्लेशियर के निचले हिस्से के ढहने का पता लगाया है. ये स्थान बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से करीब 15 किलोमीटर पश्चिम में है. इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला. आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार.
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: आज की पार्टी ना भाई और बहनों की तरफ से है, यस चिप्स का भंडार है नमन के पास आपकी इस रक्षाबंधन को और भी स्पेशल बनाने के लिए। इस बार स्वीटनेस का टिप पढ़ लाए हैं आपके लिए, एंड वो है कि मिठाई जरूर खाएं लेकिन पोषण को थोड़ा स्मार्ट रखें। एक राखी, एक मिठाई और एक्स्ट्रा कैलोरीज को बोलो कल मिलते हैं भैया वीकेंड को। आज तो फुल ऑन मस्ती करेंगे, कल रेस्ट ही सही। एंड ऑल्सो 5491294 पर आपके मैसेजेस का भी इंतजार है, सो जल्दी से सेंड अस योर विशेज एंड योर डेडिकेशंस।
1: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Fashion Tips powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments.
1: Yes, आज फेस्टिव मूड है तो लुक को थोड़ा देसी रखते हैं, कम्प्लीटली देसी नहीं बल्कि मॉडर्न वाली देसी, ताकि भैया भी बोले कि बहन हमारी तो हीरोइन है। तो टिप है कि जीन पैंट्स या फिर स्कर्ट्स के साथ आप पेयर कीजिए एक सिल्की वाली ब्लाउज को। अगर ब्लाउज नहीं है लेकिन चोली है आप वो भी पहन सकते हो। एंड ओवरऑल लुक को कंप्लीट करने के लिए जीन्स का ही एक जैकेट या फिर लेदर वाला पहनिए, कलर के हिसाब से आप मैच कर लेना। ऊपर ज्वेलरी को मिनिमल रखते हैं, जूते में से आप या तो हील से या तो चप्पल्स चूज कीजिए। हो गया लुक कंप्लीट हमारी देसी बहनों का। अभी ब्रोज के लिए आप पैंट्स पहन सकते हो, कुर्ता, काला चश्मा, हाथ में घड़ी, एकदम हीरो लगोगे। एंड ऑल्सो सेल्फीज क्लिक करना ना भूले। एंजॉय योर स्पेशल डे।
0: Fashion Tips was powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments. RM2
2: Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: वैसे वसर तो मैसेजेस का भर चुका है. यस, मैसेजेस ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है. मेनी ऑफ यू आर गेटिंग रेडी भाई बहनों से मिलने के लिए. कुछ लोगों ने पहले से ही मना लिया राखी एंड मैसेजेस. आप हैं दीदी आंशी, रक्षाबंधन विशेष अपने भैया मयूर, वशिष और कैवलन के लिए भेज रहे हैं. फ्लैग से वी हैव अ बागुबीन फैमिली की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन. एंड वी हैव सुया जी, रक्षाबंधन की से ढेर सारी शुभकामनाएं आप भेज रहे हैं अपने प्यारे भैया संदीप, शैलेश और बड़े भैया मनोज किरोधर के लिए जो काम पर जा रहे हैं. एंड वी हैव अ निकित सिंह जी जो डेडिकेट करना चाहते हैं प्यार सा गाना अपनी बहन खायरा के लिए. एंड ऑल्सो फॉर नानी सरिता, अनिता, जानी, शोभा, नाना, मुकेश, सुरेन, मनोज, दिरपुल फैमिली ऑफ लिस्कालिये, ओपो फैमिली ग्रुप, ओम रोजिल एंड फॉर मामा क्रिश्चियन निकित सिंह फैमिली जो कि हुसबैल के रहने वाले हैं. एंड ऑल्सो हमारे साथ हैं ललिता जितिन जी और आप विश कर रहे हैं हैप्पी रक्षाबंधन अपने दो भाइयों के लिए जिनके नाम है संजय और विजय. एंड ऑल्सो विशेज फ्रॉम सेवन सिस्टर्स, वीना कुमारी, गीता, ज्ञान्ति, सरोज, इंदिरा एंड पूरी ललिता जितन फैमिली जी की तरफ से जो कि लावांचे के रहने वाले हैं. एंड वी ऑल्सो हैव ग्रैंड रिट्रीट से अमर हीरा जी और आप सारे मस्ती लवर्स के लिए एक रक्षाबंधन का गाना मांग रहे हैं. एंड स्पेशल डेडिकेटिंग स्पेशल डेडिकेशंस टू अविनाश हसराज, तियासा, आरव, रक्षा, अमर के लिए. तो और भी मैसेजेस

0: हैं उनको हम जरूर शेयर करने वाले हैं। आप बस यहीं पर जुड़े रहिए, एक अच्छा सा रक्षाबंधन वाला गाना ढूंढ कर चलाएंगे आपके लिए जरूर। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: RM2.
1: Radio Musty.
2: Quality Déco finit ouvert ce nouveau showroom à Flac juste à côté MCB. Pour célébrer sa grande ouverture, la méga promo le plein de produits, morbe à partir de 25 roupies, granit à partir de 2000 roupies, lavabo, roche pour mur, robinetterie, sanitaire, toilette, baignoire et beaucoup les autres encore. Pas rater sa méga promo, vine découvrir un nouveau showroom de Quality Déco, Boulet Blanc à côté MCB, Flac, numéro téléphone 413 87 55 ou 413 10 53.
3: À l'occasion fête Raki, ban magasin Best Factory Shop, il met une grande promotion allant jusqu'à 50% discount. Oui, vous bien attendez, jusqu'à 50% off le tout ban vêtements pour hommes, dames et enfants. Alors, pas attendez, venez au cas de Raki dans ban magasin Best Factory Shop. Route Bassin, Carbone, La Source, Flac, vis-à-vis Winners, Piolet, Floréal, vis-à-vis Feeling Engine. Téléphone-le 59 25 10 90 pour tout renseignement. Merci.
4: श्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 3, 4 और 5 सितंबर 2026 हर शाम 6 बजे से हर कृष्ण मंदिर लॉन्ग माउंटेन 3 दिन का दिव्य उत्सव भक्ति आनंद और कृष्ण प्रेम का रंगों में रंगने का अवसर भारत से पधारने वाले ऋषिगण मधुर कीर्तन घुसी मृदंग की ताल और श्री कृष्ण की मनमोहक लीला में सबका एक ही हाल बच्चों के लिए आनंद मेला नाटक नृत्य गौ पूजा श्लोक रेसिटेशन क्विज और स्वादिष्ट महाप्रसाद अपने परिवार के साथ जरूर आइए और बनिए श्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का हिस्सा
0: RM2
1: रेडियो मस्ती

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
3: 103.5,
2: East, West,
3: 96.4,
2: Center,
3: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. Feel the Musti.
4: Good afternoon. गुड मॉर्निंग, सुबह के 11 बजे हैं। चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे अर्शिता नमस्कार।
5: एक बार फिर नमस्कार, संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। खेल के मैदान पर प्रदर्शन जितना महत्वपूर्ण है उतना ही जरूरी खेल संगठनों में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखना भी है। इसी उद्देश्य से युवा एवं खेल मंत्रालय की ओर से कल यानी 27 अगस्त को मोका के एलविशिया यूथ क्लब में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। कार्यशाला में सुशासन, पारदर्शिता और वित्तीय प्रक्रियाओं के उचित प्रबंधन पर विशेष जोर दिया गया। इस पहल का उद्देश्य खेल महासंघों और संगठनों में बेहतर कार्य प्रणाली को बढ़ावा देना और सार्वजनिक धन के इस्तेमाल को अधिक प्रभावी और पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करना है। कार्यशाला के जरिए खेल संगठनों के अधिकारियों को वित्तीय प्रक्रियाओं और सुशासन से जुड़ी अच्छी प्रथाओं के बारे में जागरूक करने का प्रयास किया गया। फेसबुक पर विपक्ष के नेता चेतन बाबूलाल की तस्वीर का इस्तेमाल कर कथित ऑनलाइन ठगी की कोशिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। उनके नाम से जारी एक बयान के अनुसार फेसबुक पर एक फर्जी स्पॉन्सर विज्ञापन के जरिए 13,500 रुपये के बदले प्रशासनिक दस्तावेजों से जुड़ी सेवाएं देने का दावा किया जा रहा है। चेतन बाबूलाल ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने इस विज्ञापन को कभी अधिकृत नहीं किया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे इस विज्ञापन में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें, अपने निजी दस्तावेज किसी के साथ साझा न करें और किसी भी तरह का भुगतान न करें। इस मामले में साइबर क्राइम यूनिट और ICTA के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई है। और मिथुन चुलन की पत्नी विनेला चुलन को कल गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी लेमोन के रॉय रोड स्थित उनके घर पर आत्सू की ओर से की गई तलाशी के बाद हुई। पुलिस ने घर से एक DVR राइफल की एक दूरबीन और कुछ गोलियां बरामद की है। ये कार्रवाई यूनियन और मॉरिशस के बीच 157 किलो गांजे की कथित तस्करी से जुड़े एक कथित साजिश मामले की जांच के तहत की गई है। इस मामले में विनेला चुलन के पति मिथुन चुलन की पुलिस तलाश जारी है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिब्बत में चीनी बचाव अभियान को फिलहाल रोक दिया गया है। अधिकारियों को आशंका है कि भूस्खलन के बाद बनी एक झील के कारण आने वाले दिनों में और बाढ़ आ सकती हैं। अधिकारियों की टीम गिरोंग पोर्ट के ऊपर की ओर बढ़ते जल स्तर पर नजर रख रही है। ये नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित जमीनी सीमा क्षेत्र है जो बुधवार को हुए भूस्खलन के दौरान कीचड़ और पानी के तेज बहाव में बह गया था। कई घंटों तक हुई भारी बारिश के बाद अधिकारियों को डर है कि मलबे के बीच बनी ये झील अपने किनारे तोड़ सकती हैं और आने वाले दिनों में और ज़्यादा बाढ़ का कारण बन सकती हैं। चीनी सरकारी मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार इलाके में मौजूद बचाव कर्मियों को फिलहाल अभियान रोकने के निर्देश दिए गए हैं। सीमा के तिब्बत हिस्से में 550 से ज़्यादा लोगों के लापता होने की खबर है। इनमें 260 विदेशी नागरिक हैं जिनमें वे तीर्थयात्री भी शामिल हैं जो तिब्बत में पवित्र कैलाश पर्वत की यात्रा जा रही थी। और उधर नॉर्वे के राजा हैरोल्ड फिफ का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें पिछले सप्ताह एक दुर्लभ रक्त संबंधी बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ओस्लो स्थित राजमहल ने बताया कि किंग हैरोल्ड ने शुक्रवार सुबह स्थानीय समयानुसार 6:35 पर ओस्लो के राष्ट्रीय अस्पताल में शांतिपूर्वक अंतिम सांस ली। उनके निधन से पहले के 24 घंटों में शाही परिवार के सदस्यों ने अस्पताल में उनसे मुलाकात की थी। वहीं बड़ी संख्या में लोगों ने राजमहल के बाहर फूल रखकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी थी। उन्होंने राजशाही को आधुनिक बनाने में अहम भूमिका निभाई और परंपरा से हटकर एक सामान्य नागरिक से विवाह किया। नॉर्वे के कठिन दौर में उन्होंने देश को एकजुट रखने में भी महत्वपूर्ण

0: भूमिका निभाई। राज परिवार पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ उन्हें जमीन से जुड़े सम्मानित और बेहद लोकप्रिय राजा के रूप में याद करते हैं। उन्हें अक्सर देश के ग्रैंडफादर और जनता के राजा के रूप में वर्णित किया जाता है। जनता के राजा की उपाधि उनके पिता राजा उलाव फिफ के लिए भी इस्तेमाल की जाती थी। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: And yes, so वापस आ गए हैं मस्ती मॉर्निंग के तीसरे और आखिरी आओ में. वैसे अशिता भी है हमारे साथ. गुड मॉर्निंग.
2: सुपर गुड मॉर्निंग टू यू नीलमणि. एंड मैं सुनती जा रही थी यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे गाने चला रही हैं ये. एंड ऑफकोर्स अभी हमने वेलकम कर लिया है इस घंटे में. बट नॉट टू फॉरगेट, हम अपने सभी लिसनर्स को भी विश करना चाहेंगे रक्षाबंधन के लिए. सो हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को, बिकॉज इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल फेस्टिवल जो भाई बहनों को डेडिकेट होता है ये. एंड ऑफकोर्स हम जो है रेडियो मस्ती पर आपका साथ दे रहे हैं. नीलमणि है यहाँ पर, मैं तो बीच बीच में आती रहूँगी न्यूज़ को लेकर, लेकिन कभी कभी होता है ना कि हम भी यहाँ पर कुछ बोल ही लेते हैं. सो आप क्या कहती हैं नीलमणि, आर यू गोइंग टू ये रक्षाबंधन जो है आप भाई को बांध चुकी हैं?
0: हाँ, कल मैंने मना लिया.
2: कल, आज मना रही हैं, कल से ही ये लोग मना रहे हैं. चलो हाँ. कोई बात नहीं, आज हम मना रहे हैं रक्षाबंधन. और वैसे भी अभी आपको हम याद दिला देते हैं कि कुछ देर पहले वी हैड दैट एक्लिप्स, यानी कि ग्रहण था, और अब इट्स ओवर. एंड डेफिनेटली बहुत ये जो प्यार है ये हम ग्रहण ये सब नहीं देखते हैं कभी, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि प्यार जो है ये इन सब से परे होता है. बट स्टिल आज हम आप सभी लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन कहना चाहेंगे.
0: And also 11/11 है, don't forget to make your wish. And
2: yay!
0: ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि festive vibes तो ongoing रहेगा. गानों के जरिए आपको entertain करती रहेगी नीलमणि. Stay right here, RM2 Radio मस्ती पर ही.
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: एंड यस, स्पेशल डे पर स्पेशल सिबलिंग चैलेंज तो बनता है, तो आपको बताना है अपने भाई बहन की तीन अच्छी क्वालिटीज, लेकिन कंडीशन ये है कि अनोइंग और पागल उसमें बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो दोनों के डेडिकेशंस और विशेस के साथ 5499124 पर डू सेंड अस थ्री क्वालिटीज ऑफ योर ब्रदर और सिस्टर, एंड एट द सेम टाइम म्यूजिक को भी एंजॉय करते रहिए। इट्स योर आर एम टू रेडियो मस्ती।
1: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Household and decoration tips brought to you by Lolo Hypermarket.
1: फ्राइडे होम डेकोर टिप पर राखी स्पेशल है। आज को ना राखी वाइब्स देनी है तो एंट्रेंस या लिविंग रूम में फ्रेश फ्लावर्स फेरी लाइट से एक छोटा सा कलरफुल फेस्टिव कोना बना दीजिए और एक क्यूट सा आइडिया है कि फैमिली फोटोज का मिनी कोना बनाइए। स्पेशली भाई बहन की पुरानी जो तस्वीरें हैं उनको साथ ले आइए। सिंपल डेको, हैप्पी मेमोरीज और घर में फुल फेस्टिव वाइब्स होगा।
2: Alpa Dol Petit Pois 500 grammes à 15,95 rupees. Basmati First Choice grade 11-21 de 5 kg à 385 rupees. De l'huile N-Lit Omega 100% Soya à 67,95 rupees.

0: चाहे फासले कितने भी बढ़ जाएं, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाए। MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन।
1: मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना।
2: Radio Musty.
3: Pour ma famille, une bonne santé passe avant tout. Et j'ai choisi les céréales Weetabix parce qu'elles sont uniques. Uniques parce qu'elles contiennent 100% de tous les bienfaits du blé complet qui est excellent. Pour un cœur sain, pour une bonne digestion et pour faire le plein d'énergie. Unique car Weetabix est le petit déjeuner idéal pour bien commencer la journée. Alors, choisissez Weetabix. Weetabix pour une meilleure santé de ma famille.
2: RM2 Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: वैसे राखी स्पेशल के लिए हमने आपसे कहा था अपने भाई या बहन की तीन क्वालिटीज हमें मैसेज करके बताइए, लेकिन लगता है भाई बहन सब बिजी है गिफ्ट्स खोलने में। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी एक मैसेज आया है यश का एंड वो कहते हैं कि उनकी बहन ने दिया बड़ी स्वीट स्पेशल और किचकिच है। और स्वीट भी स्पेशल भी और थोड़ी भी किचकिच, मतलब आपको कंप्लीट चीज तो पैकेज मिल गया। लेकिन यश, अगर आपकी बहन की क्वालिटीज ये है तो हम जरा क्यूरियस है कि उनकी नज़र में आपकी तीन क्वालिटीज़ क्या होगी, तो शेयर कीजिए ज़रूर। अभी के लिए इट्स टाइम फॉर मी टू से बाय। होप यू हैड अ ग्रेट ग्रेट मस्टी मॉर्निंग। स्टे सेफ, ड्राइव सेफ एंड वंस अगेन आपको विश करते हैं हैप्पी रक्षाबंधन वंस अगेन।
1: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे अर्षिता, नमस्कार।
1: एक बार फिर नमस्कार, संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। एक धागे में पिरोया हुआ स्नेह, सम्मान और विश्वास का अटूट पर्व रक्षाबंधन आज देश भर में मनाया जा रहा है। बचपन की रूठने मनाने से लेकर बड़े होने पर एक दूसरे की रक्षा सम्मान करने का ये पर्व बहुत हर्ष उल्लास के साथ देश भर में भाई बहनें आज मना रहे हैं। और आज के दिन हर वो भाई अपनी बहन की रक्षा करने तथा हर वो बहन अपने भाई की लंबी आयु के लिए प्रार्थना कर रही है। और इसके चलते हम आप सभी लोगों को एक बार फिर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हैं। अन्य खबरों में, नेशनल यूथ पार्लियामेंट की 5वीं संस्करण का शुभारंभ आज शुक्रवार सुबह किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम सेशेल्स की नेशनल असेंबली की स्पीकर अजागेल एनेस्टा, सरकार के कई मंत्री और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष सत्यजीत बुलेल मौजूद थे। कल तक चलने वाली इस कार्यक्रम में 14 से 23 वर्ष की आयु के युवा सांसदों की भूमिका निभाएंगे। वे सदन की कार्यवाही के नियमों का पालन करते हुए विभिन्न मुद्दों पर बहस करेंगे और अपने विचारों का समर्थन करेंगे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने वर्ष 1991 में संसद में अपने शुरुआती दिनों को याद किया। उन्होंने समान अवसर सुनिश्चित करने और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शागुस द्वीप समूह का मुद्दा अगले महीने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठ सकता है। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार मॉरिशस न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नम से इस मुद्दे पर सवाल उठा सकता है। मामला मई 2025 में हुए समझौते को लागू करने में हो रही देरी से जुड़ा है। इस समझौते के तहत शागुस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को वापस किए जाने का प्रावधान है। वहीं जेगुगोशा स्थित सैन्य अड्डे को लेकर एक विशेष व्यवस्था की गई है। खेल के मैदान पर प्रदर्शन जितना महत्वपूर्ण है उतना ही जरूरी खेल संगठनों में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखना भी है। इसी उद्देश्य से युवा एवं खेल मंत्रालय की ओर से कल यानी 27 अगस्त को मोका के एल्वेशिया यूथ क्लब में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। कार्यशाला में सुशासन, पारदर्शिता और वित्तीय प्रक्रियाओं के उचित प्रबंधन पर विशेष जोर दिया गया। इस पहल का उद्देश्य खेल महासंघों और संगठनों में बेहतर कार्य प्रणाली को बढ़ावा देना और सार्वजनिक धन के इस्तेमाल को अधिक प्रभावी और पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करना है। कार्यशाला के जरिए खेल संगठनों के अधिकारियों को वित्तीय प्रक्रियाओं और सुशासन से जुड़ी अच्छी प्रथाओं के बारे में जागरूक कराने का प्रयास किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर हम रुख करते हैं नेपाल की ओर। चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार नेपाल तिब्बत सीमा के पास बचाव अभियान फिर से शुरू कर दिया गया है। बढ़ते पानी से बनी एक नई झील के तटबंध टूटने की आशंका के चलते बचाव कार्य रोक दिए गए थे। नेपाल पुलिस के अनुसार अचानक आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 475 हो गई है। हिमालयी सीमा क्षेत्र में बाढ़ से भारी तबाही के 48 घंटे से अधिक समय बाद भी राहत और बचाव कार्य जारी है। नेपाल सरकार ने लापता 500 विदेशी नागरिकों के नाम जारी किए हैं। इनमें भारत के 178, अमेरिका के 65 और ब्रिटेन के 33 नागरिक शामिल हैं। तिब्बत में 3 लोगों की मौत हुई जबकि 550 से अधिक लोग लापता हुए हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि तिब्बत के ये आंकड़े नेपाल में जारी आंकड़ों से अलग हैं या इनमें कुछ नाम शामिल हैं। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार। साथ रहिए, हम सुन पाएंगे शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। अस्तोरिया रोड गुडलैंड्स में 95 साल के 95 ईयर्स ओल्ड के श्री हरिलाल कावलीसाव, जिन्हें मौसम दालपुरी के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है।

0: के अर्थी कल दिन के 1 बजे उनकी पत्नी श्रीमती सती कावलेसाव के घर गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बागोश गुडलैंड की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुमारो एट 1 PM। रॉयल रोड बुबा समीर रू सेंट जेम्स, ये शोक समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं। रू सेंट जेम्स पोर्ट लुइस में, रू सेंट जेम्स पोर्ट लुइस में 76 साल की 76 years old की श्रीमती बिदवंती स्वाम्बो, श्रीमती बिदवंती स्वाम्बो पैदाश्रम रामदोस की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे एलियनसन बुबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सबसे पहले उनके घर पोर्ट लुइस ले जाया जाएगी, फिर अंतिम संस्कार के लिए शेबेल की शमशान भूमि। अंतिम संस्कार 1 बजे के लिए निर्धारित हैं। क्रीमेशन टुमारो एट 1 PM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति मानी गहरी संवेदना है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv. Retro Rhythm.
2: RM2, Radio Musty.

0: Retro Rhythm.
1: चलिए दोस्तों, इट्स योर रेट्रो रिदम, एक बार फिर आ गई हैं आपका साथ निभाने ऑन RM2 रेडियो मस्ती. एंड आई एम श्योर दैट हमारे जो लिसनर्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड ऑलवेज कनेक्टेड. हमेशा स्वीट स्वीट सॉन्ग्स हमारे साथ आप सुनते रहते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड थैंक यू. आज का दिन है खास हम सभी के लिए एंड सेलिब्रेटिंग राखी का त्यौहार, जहाँ पर भाई बहन का जो बॉन्ड है थोड़ा सा और स्ट्रांग होता है, थोड़ी सी और विशेज एक दूसरे तक पहुँचती है और एक दूसरे की रक्षा करने का जो वादा है वो हम रखते हैं. सो स्पेशल विशेस टू ऑल दोस्त जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राखी की विशेस लेकर आए हैं आपके लिए. एंड फॉर नाउ मैं हूं परी आपके साथ. इट्स टाइम फॉर योर रेट्रो रिदम, लेकर चलेंगे आपको डाउन मेमोरी लेन विद सम लवली सॉन्ग्स एंड सम ब्यूटीफुल विशेस.
2: रक्षा बंधन वादा है, या धागा है प्यार का.
3: चाहे फासले कितने भी बढ़ जाए, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती. रक्षा बंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाए. MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं. हैप्पी रक्षा बंधन. हैप्पी रक्षा बंधन.
4: मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना.
0: रेट्रो रिदम
5: RM2 Radio Musti.
1: जी हाँ दोस्तों, वही गाने हैं ये जो हमेशा से दिल के करीब रहे हैं. Some beautiful songs and इस वक्त it's lunch time.

हैं मसाला लंच ले रहे हैं बोन एपेटी शुभहार आप सभी को हमारे साथ जुड़े हुए हैं काम पर है घर पर है या फिर सेलिब्रेटिंग धागों का त्यौहार जहां कहीं से भी आपने ट्यून इन किया है वी हैव सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स विद सम लवली विशेस आपके नाम परी का साथ रहेगा और आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जानते ही हैं आप हमारा मैजिकल नंबर रहेगा आपका इंतजार आपकी गुड विशेस का इंतजार ऑन 5499 1294

0: रेट्रो रिदम।
1: तो जी हाँ दोस्तों, राखी का त्यौहार जहाँ पर भाई बहन का प्यार जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पर बढ़ता है। एंड जो हम कहते हैं हमेशा से कि एक इंसान जो बचपन से आपके साथ रहा है वो है आपका भाई या फिर आपकी बहन। सिबलिंग्स का प्यार हमेशा से खास, हमेशा से स्पेशल, वो छोटी सी नोक झोंक लेकिन प्यार का रिश्ता हमेशा always strong. सभी के लिए हमारे listeners जो हमारा साथ दे रहे हैं celebrating this beautiful Pious festival, so good wishes आप सभी के लिए। 12:26 हो गए हैं, मैं हूँ परी आपके साथ और आपका प्यार, आपके messages, आपके dedications हमेशा आप हम तक पहुँचा सकते हैं। नंबर आप जानते हैं, it's 5499-1294। So well, अभी के लिए सात समंदर पार से राखी के wishes लेकर आई हैं हमारी प्यारी सी जीना जोयश्री। So गाना होगा आपके नाम फॉर ऑल जोयश्री परिवार। क्या बात है, यहाँ पर यमी यमी पिक्चर्स हम तक पहुंच रहे हैं। एंड वेल गुड विशेज आपको विजया जी। एंड कहते हैं दैट पनीर बर्फी बनी है और आपने हम तक पहुंचाई, सो इट मींस अ लॉट। आपका मुंह भी मीठा करेंगे इन प्यारे गीतों के साथ। एंड विशिंग यू हैप्पी राखी, हैप्पी रक्षाबंधन, स्पेशल विशेज टू यू, टू ऑल योर लव्ड वंस, एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड ऑलवेज स्टे सेफ। चलिए यहाँ पर कह रहे हैं हैप्पी राखी एंड हेलो परी, आज दो बड़े ब्रदर श्रीरज और सभी उनके परिवार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो यहाँ पर श्रीरज एंड कुमार लोबिन ऑफ लालमाटी, आपके लिए स्पेशल विशेज। कुमार लोबिन है होशनुआ से, दैट्स कमिंग फ्रॉम छोटी सिस्टर साधना इमरत। अपने भाइयों के लिए भेज रही हैं बहुत सारा प्यार श्रीरज और कुमार लोबिन के लिए, उनके लिए प्यार एंड स्पेशल विशेज ऑन दिस स्पेशल स्पेशल डे। और बहन का प्यार तो पहुंच चुका है आप तक विद अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल विश। यहाँ पर कहते हैं एंजॉय कर रहे हैं सिलेक्शन को, विशिंग आरएम टू लिसनर्स अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन, ऑल्सो विशिंग ब्रदर यश वसंत प्रीतम अ वेरी हैप्पी राखी, लोड्स ऑफ लव, हैप्पीनेस, गुड हेल्थ, सक्सेस इन देयर लाइव्स, एंड हमेशा बड़ा सा थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग। ये है फ्रॉम केविना फ्लोरियल से, अपना प्यार भेज रही हैं अपने प्यारे भाइयों के नाम। साथ ही यहाँ पर स्पेशल विशेज आ रही हैं, कहते हैं आज बेल्जियम में बारिश और 19 डिग्रीज, ओ हो बरसाती मौसम और सर्दियों वाली सुबह। यहाँ पर हमारा साथ दे रही हैं हमारी प्यारी सी प्रकाशवती जी ऑल द वे फ्रॉम बेल्जियम, कहती हैं हैप्पी रक्षाबंधन सभी भाई बहनों को और प्लीज़ एक प्यारा सा गाना हो जाए फॉर एवरी वन हु सेलिब्रेटिंग दिस ब्यूटिफुल फेस्टिवल। प्रकाशवती जी है और आपके भाई जय प्रकाश, रामराज, राम प्रकाश शर्मा और जयराज, सभी के लिए आप भेज रही हैं प्यार एंड स्पेशल विशेज। सो टू एवरी वन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार हमारी पूरी टीम की ओर से।
2: रक्षाबंधन वादा है, या धागा है प्यार का।
3: चाहे फासले कितने भी बढ़ जाएं, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाए। MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन।

0: तो चलिए दोस्तों, दैट्स योर रेट्रो रिदम। कहते हैं कि कलाई पर रेशम का धागा है, बहन ने बड़े प्यार से बांधा है, बहन और भाई से रक्षा का ये वादा है और रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं ये हम पहुंचा रहे हैं सभी भाइयों और सभी बहनों की ओर जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑन RM2 रेडियो मस्ती। यहाँ पर कुछ प्यारे गानों के साथ आपके दिल को हम लुभा रहे हैं। और वैसे जैसे हम कहते हैं कि ये जो त्यौहार है, इट्स अ वेरी स्पेशल वन, एक त्यौहार जहाँ पर वी सेलिब्रेट दिस ब्यूटिफुल बॉन्ड ऑफ भाई एंड बहन, एक ऐसा रिश्ता जो हमेशा टूट रहता है। और हमेशा हम जानते हैं कि इतनी सारी नोकझोंक हो जाती है, भाई और बहन का रिश्ता है ही ऐसा जहाँ पर बचपन से यू हैव वन बेस्ट फ्रेंड जो बचपन से आपके साथ रहते हैं और जिन्होंने आपको देखा है फ्रॉम योर वेरी फर्स्ट डे, बी इट योर ब्रदर बी इट योर सिस्टर, लेकिन ये जो फीलिंग है, ये जो बॉन्ड है, वो कभी भी टूट नहीं सकता। नाराजगी हो सकती है, कभी कभार हो सकता है कि आप एक दूसरे से रूठ भी जाए, लेकिन बॉन्ड हमेशा रहता है। सो अगर आज ऐसा कोई है जो शायद अपनी बहन या अपने भाई से रूठा हुआ है, प्लीज इस बॉन्ड को एक बार फिर आप उतना सेक्रेट बना दीजिए। उनको भी आपका इंतजार है, आपको भी उनका इंतजार है, बस इस रिश्ते को खास बनाए रखिए। जैसे हम कहते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो हमारी पूरी जर्नी में हमारे साथ नहीं रह पाते, लेकिन एक रिश्ता जो शायद अंत तक साथ रहता है वो है भाई और बहन का रिश्ता। सो मेक इट स्पेशल एवरीवन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बस आपके लिए हम भेज रहे हैं बहुत सारा प्यार, कि लाइफ में प्यार बना रहे, भाई बहन का जो बॉन्ड है वो हमेशा बना रहे। चलिए यहाँ पर कहते हैं नाइस प्रोग्राम परी जी, थैंक यू सो मच। रेखा जी बोंबोंजे से हमारा साथ दे रही हैं, डेडिकेट कर रही हैं गाना फॉर फ्रेंड्स नौशीन करयानी, साथ में इंदिरा शालिनी एंड स्पेशली मेरे नाम भी जो अभी इस वक्त काम कर रही है। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच रेखा जी, आपने मेरे बारे में सोचा तो हम भी आपके लिए चलाएंगे एक ब्यूटिफुल गाना। विशिंग भाई युविश एंड सिस्टर मिंकी हैप्पी रक्षाबंधन, दैट्स सो स्वीट। तो चलिए यहाँ पर स्पेशल स्पेशल विशेज वरुणा की ओर से एंड स्पेशल विशेज हैं फॉर भाई युविश सिस्टर मिंकी, उनके लिए ढेर सारा प्यार। रक्षाबंधन की शुभकामनाओं के साथ आई हैं झाना जी फ्रॉम फ्लाक, कहते हैं ब्यूटीफुल गाना हो जाए सभी भाइयों बहनों के नाम, स्पेशली फॉर बेटी रीमा जनिता सेष्टा अंशनी सिल्विया, साथ दे रही हैं यूवी कृषि शिव सरन परिवार फ्लाक से। और कहते हैं विला व रेडियो मस्ती, बस किसी के साथ जुड़े रहते हैं, गानों को सुनते रहते हैं। गाना होगा फॉर डॉटर स्वीटी, दामाद कमलेश, ग्रैंड चिल्ड्रन सेष्णा योहन एंड रोहन कमिंग फ्रॉम रागिनी, हमारा साथ दे रही हैं आप। सो चलिए गाना आपकी स्वीट फैमिली के नाम। और विश्वानी जी कहती हैं गाना हो जाए फॉर ब्रदर सूर्यदेव संजय, दैट्स कमिंग फ्रॉम सिस्टर्स विश्वानी सुनीता संध्या, हैप्पी रक्षाबंधन स्पेशल विशेज, ये है सभी भाइयों सभी बहनों के नाम।
1: रक्षाबंधन
2: चाहे फासले कितने भी बढ़ जाए, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार सम्मान और खुशियाँ लाए। MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन।

That's the OG Rocky song. ये गाना कितनी भी बार सुन लीजिए, ये गाना हमेशा दिल के करीब रहता है. And of course, इसी गाने के साथ भाई और बहन का जो बॉन्ड है वो बचपन से स्ट्रॉन्ग रहा है और हमेशा रहेगा. तो यही विशेज पहुंचा रहे हैं सभी ब्रदर्स सभी सिस्टर्स के नाम. विशिंग यू ऑल अ हैप्पी राखी. परी का साथ रेट्रो रिदम ऑन रेडियो मस्ती.

0: RM2
1: Radio Musti.
2: और चलिए इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आरती ऑफ लाल माथी एंजॉइंग द सिलेक्शन और थैंक यू सो मच आरती जी हमारा साथ दे रही हैं आप सो आपके लिए भी प्यारे गाने चलते रहेंगे ऑन रेडियो मस्ती एंड गुड विशेस आपके लिए हैव अ वंडरफुल वंडरफुल फ्राइडे एंड हैप्पी राखी टू यू टू ऑल योर लव्ड वंस अभी के लिए बाबुल सुप्रियो की आवाज़ और इसी गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट आवर की ओर दैट्स योर रेट्रो रिदम चलते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही कुछ प्यारे गाने और आपके गुड विशेस का इंतजार ऑन 5491294 celebrating Rakhi ka tyohar celebrating Raksha Bandhan so you can send me your good wishes on 5499-1294 abhi ke liye pyar pahuncha rahe hain with this beautiful track evergreen song lekin with a twist enjoy this one

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: टाइम चेक, एग्जैक्टली 1 PM। देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं करुणा जी, आपको नमस्कार।
4: नमस्कार परी, सभी को नमस्कार। आज रक्षाबंधन मनाया जा रहा है, सब भाई बहन के रक्षाबंधन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। रिश्तों की डोर से बंधा ये प्यारा सा त्यौहार, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि भाई बहन के पवित्र रिश्ता हमेशा ही प्यार और खुशियों से भरा रहे। नेशनल यूथ पार्लियामेंट के 5वां संस्करण का उद्घाटन आज सुबह राष्ट्रीय सभा में किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सभा की स्पीकर उपस्थित रही। 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 76 युवा संसदीय प्रक्रियाओं से परिचित होंगे और लोकतंत्र तथा सुशासन के सिद्धांतों को बेहतर ढंग से समझेंगे। नेशनल यूथ पार्लियामेंट युवाओं को अहम और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती हैं। युवा प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने युवाओं से जीवन में जो भी कार्य करें उसमें दृढ़ विश्वास, साहस और इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। अब प्रत्येक नागरिक ये जान सकेगा कि स्टेट एज पेंशन के तहत उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। ये नई पेंशन व्यवस्था जनवरी 2027 से लागू होगी। अधिकारियों ने कल आधिकारिक रूप से SCP एस्टिमेट नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया। ये एप्लीकेशन नागरिकों को अपनी संभावित पेंशन राशि का अनुमान लगाने में मदद करेगा। ये एप्लीकेशन स्मार्टफोन पर उपलब्ध है। इसके अलावा इसे सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आज से मौसम में बदलाव दिखने को मिल रहा है। तेज हवाओं के साथ बारिश और तापमान में गिरावट की संभावना भी है। पूरे द्वीप में तापमान में लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। समुद्र में भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दक्षिण पश्चिमी समुद्री क्षेत्र में 4 से 6 मीटर ऊंची शक्तिशाली लहरें उठने की संभावना है। और नेपाल तथा तिब्बत की सीमा पर बुधवार को हुए भीषण भूस्खलन और मलबे के सैलाब के बाद कम से कम 482 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1400 अन्य लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस प्राकृतिक आपदा के कारण इलाके में भारी तबाही हुई है और राहत तथा बचाव कार्य जारी है। इसके साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। विल्नव मेबर्ग में 97 साल की 97-year-old बीबी जुबैदा रसूल सईब पैदाइश नाम टोरोबाली, जो जुबैदा से जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज शाम 4 बजे इनके मकान विल्नव मेबर्ग से निकाल कर दफनाने के लिए रिवियर डी क्रियोल का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 4 PM। हुटवायाल बोबासे में 76 साल की 76-year-old श्रीमती बिडवंती स्वामबर पैदाइशी नाम रामदोस, जो पहले नंबर 11 रुई सेंट जेम्स पोर्टविस रहती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी जो हैं आज बल्कि कल शनिवार को दिन के 10 बजे एलियंसन्स होटवायाल बोबासे से उठाकर दाह संस्कार के लिए शिबेल की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM। अस्टोरिया रोड गुडलैंड्स में 95 साल की 95-year-old श्री हरिलाल कोयलेसर जो डोलपुरी पानी मौसम से जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 1 बजे इनकी पत्नी श्रीमती सती कोयलेसर के मकान अस्टोरिया रोड गुडलैंड से उठाकर दाह संस्कार के लिए बुआगोज गुडलैंड की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुमारो एट 1 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
2: mbcradio.tv. Retro Rhythm
1: RM2 Radio Musti.

0: So well friends, with this beautiful track, आपका हम welcome कर रहे हैं किशोरदा की आवाज़ and सागर फिल्म से लिया हुआ ये गाना आप सभी के लिए celebrating धागों का त्योहार celebrating रक्षाबंधन और इसी खास दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे सभी listeners.
1: रक्षाबंधन
2: चाहे फासले कितने भी बढ़ जाएं, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती. रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाए. MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं. हैप्पी रक्षाबंधन.
3: हैप्पी रक्षाबंधन.

और चलिए यहाँ पर इतनी सारी विशेस ऑन दिस स्पेशल डे. हम जानते हैं ये जो मौका है ये खास मौका है एंड आज ही का दिन साल में एक ही दिन मिलता है जब हम इस दिन को सेलिब्रेट कर पाते हैं. वैसे तो हर एक दिन मौका मिलता है लेकिन जैसे हम कहते हैं दैट एक दिन होता है खास एंड स्पेशल और वो है आज का दिन. वरना हर एक दिन तो प्यार हम पहुँचाते ही रहते हैं लेकिन टुडे इट्स अ स्पेशल डे और आज है रक्षाबंधन. तो चलिए यहाँ पर आपके लिए रक्षाबंधन विशेष और आपकी विशेष आपके अपनों तक पहुँचा रहे हैं ऑन 5499 1294. कहते हैं तेरा जीवन रहे रोशन तुझे कभी ना छू पाए गम. खुशी मिले तुझे बहुत सारी ईश्वर का आशीर्वाद रहे हर दम. कमिंग फ्रॉम आकाश चेतन मनसुख ऑफ बॉम्बू विशिंग अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू सिस्टर उर्वशी एंड विश्नी और सभी मनसुख परिवार के लिए आप भेज रहे हैं स्पेशल विशेष. For all brothers, all sisters around the world, I love you all. Thank you so much, Akash. That's a beautiful message. Saath hi yahan par gana hoga for Akshat and Dakshua celebrating Rakhi today. Aur ye hai unke papa ki or se. Unke liye pyar and special wishes. That's really cute. और कहते हैं नमस्ते प्यारी परी. नमस्ते जी अरुणा टीना रागिनी संजना एंड दाना हमारा साथ दे रहे हैं. सो थैंक यू जी लवली लेडीज हमारे साथ जुड़ गई हैं आप. और कहते हैं एक प्यारा सा गाना टू ऑल आवर ब्रदर्स और उनके लिए आप भेज रही हैं बहुत सारा प्यार. सो थैंक यू लवली लेडीज आई गॉट योर मैसेज. गाना होगा आपके नाम और आपके स्वीट भाइयों के लिए फॉर ऑल द ब्रदर्स फॉर ऑल द सिस्टर्स. कहते हैं सभी भाई बहन और सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं. इस दिन हम बचपन की कितनी बातों को याद करते हैं और इतने मज़े करते हैं. भाइयों ने हम पर कितना कुछ न्योछार किया है और कहते हैं कि वो जो बातें हैं वो जो यादें हैं वो हमेशा साथ रहेगी. साथ में आम तोड़कर खाते थे, पेड़ पर चढ़ते थे, बाइसिकल चलाते थे और सभी टॉम बॉय वाली हरकतें करते थे. दैट्स रियली स्वीट. सो यहाँ पर बचपन की यादों को ताज़ा आप भी कर रहे हैं हमारे साथ एंड इट मीन्स अ लॉट. सो थैंक यू सो मच रोशनी. लुकिंग ब्यूटीफुल इन योर पिंक साड़ी. तो चलिए आपके लिए स्पेशल विशेज ऑन दिस स्पेशल डे एंड हैप्पी हैप्पी रक्षाबंधन आपको. साथ ही यहाँ पर गोविंद रघुनंदन हमारा साथ दे रहे हैं आप फ्रॉम वाकवा. यू ऑल्सो सेलिब्रेटिंग रक्षाबंधन अपनी सिस्टर्स के साथ. सो आपके लिए बहुत सारे प्यार, बहुत सारी गुड विशेज, लोड्स ऑफ लव टू सिस्टर्स कमला एंड शीला. और साथ ही आपकी जितनी बहनें हैं सभी के लिए आप भेज रहे हैं बहुत सारा प्यार. सो गोविंद जी आपकी ओर से गाना ये होगा फॉर योर लवली सिस्टर्स एंड टू ऑल द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो हमारा साथ दे रहे हैं. हैप्पी रक्षाबंधन. दिस वन गोज आउट फॉर यू ऑल.

0: Retro Rhythm.
1: चलिए 145 कनेक्टेड हैं आप और M2 रेडियो मस्ती के साथ सेलिब्रेटिंग धागों का त्योहार रक्षाबंधन. सो स्पेशल विशेस आपकी भी पहुंच रही हैं ऑन 54991294. कहते हैं रक्षाबंधन की शुभकामनाएं टू थ्री लवली ब्रदर्स विशाल अक्षय एंड रोशन मोंगा ऑफ क्यूपेप कमिंग फ्रॉम सिस्टर्स रीटा वीनू शीला एंड भारती. सभी के लिए प्यार एंड स्पेशल विशेस. हैप्पी रक्षाबंधन. और ये विशेस हैं फॉर ब्रदर राजीव भरत ऑफ पोर्ट लुइस कमिंग From four sisters, Mansa, Maya, Dimple, Sati Sichan, River Jogampa se. Unke liye bheja hai pyar, special wishes. और चलिए यहाँ पर प्यारे प्यारे गाने एंजॉय कर रहे हैं हमारे सभी लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड सेलिब्रेटिंग रक्षाबंधन. हैप्पी रक्षाबंधन टू ब्रदर्स दानंद सुबिराज एंड असों कमिंग फ्रॉम सिस्टर्स विश्वानी शर्मिला सुनीता एंड सबरीना. उनके लिए प्यार और शुभकामनाएं. और चलिए कहते हैं रक्षाबंधन तो है स्पेशल और इस स्पेशल मौके पर सभी के लिए प्यार और स्पेशल विशेज. चलिए यहाँ पर शुभकामनाएं तो आती रहेंगी और हमारा ये जो शो है पुराने गानों का शो जहाँ पर पुराने गाने तो एंजॉय

0: एंजॉय कर पाएंगे एंड ऑफकोर्स आपकी विशेष के साथ वी डू हैव हमारे पूरे टीम के विशेष जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं 24/7 राखी के गाने कैसे चला पाएंगे लेकिन ऑफकोर्स टाइम टू टाइम आपके लिए ये ब्यूटीफुल सॉन्ग्स हम जरूर चलाएंगे सो साथ देने के लिए शुक्रिया ऑन आरएफटू रेडियो मस्ती अगला गाना होगा सूर्यदेव बंधन साथ दे रहे हैं आप और आपकी तीन बहनों के लिए सुनीता संध्या विश्वानी और सभी के लिए एक प्यारा सा गाना दिया है मातबा से विशिंग हैप्पी राखी टू एवरीवन डेडिकेटिंग रक्षाबंधन का एक स्पेशल डेडिकेशन ये होगा फॉर ममा बसंती मौसा मदन और आपकी डार्लिंग सिस्टर पूजा उनके लिए भी स्पेशल विशेज आप पहुंचा रहे हैं पूरे परिवार के लिए स्पेशल विशेज आप पहुंचा रहे हैं सीता बोलूराम साथ दे रही हैं आप शातो बनारस से सो अगला गाना शामिल होगा आपके नाम फॉर ऑल योर लव्ड वंस और चलिए यहाँ पर ऐसे ही आपकी शुभ विशेज आपकी शुभकामनाएं हम तक आप पहुंचा सकते हैं सेलिब्रेटिंग रक्षाबंधन और आपकी स्वीट विशेज पहुंचा रहे हैं आपके अपनों तक
1: रक्षाबंधन
2: चाहे फासले कितने भी बढ़ जाए भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार सम्मान और खुशियाँ लाए MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं हैप्पी रक्षाबंधन

और यहां पर राखी के इस गाने में स्पेशल विशेस ये है सुनीता जी प्रोविडेंस से अपना प्यार आप भी पहुंचा रही है टू ब्रदर्स कैलाश और रवि के लिए एंड आल्सो फॉर भाई विशाल साथ ही आपके बेटे मवीश एंड कुशाल के लिए शुभकामनाएं दैट्स कमिंग फ्रॉम सिस्टर सानवी सभी के लिए प्यार स्पेशल विशेस ये है आपकी ओर से सुनीता जी प्रोविडेंस से आपके सभी परिवार और सभी अपनों के नाम वी हैव दिस ब्यूटीफुल ट्रैक हैप्पी रक्षाबंधन

0: Retro Rhythm.
1: तो चलिए राखी का त्यौहार स्पेशल त्यौहार और हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सभी लिसनर्स थैंक यू फॉर ऑल द लव जो आप हम तक हमेशा पहुंचाते रहते हैं. अभी के लिए तो सुनीता जी आई हैं अपना प्यार लेकर अपने प्यारे भाइयों के लिए फ्रॉम प्रोविडेंस उनके ब्रदर्स कैलाश रवि और ऑफकोर्स वह भाई विशाल साथ में है बेटे मवीश एंड खुशाल और ये है फ्रॉम सिस्टर सानवी उनके लिए भेजा है प्यार और शुभकामनाएं ऑन दिस स्पेशल डे. कहते हैं हाय आई वुड लाइक टू विश हैप्पी राखी टू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वेरी हैप्पी रक्षाबंधन. ये है फ्रॉम सभी पांडू हीरू हनुमा हरी एंड विदाउट फॉरगेटिंग टू लिटिल ग्रैंड डॉटर्स आलिया होज एंड अलाना होज ऑफ लंदन. सभी परिवार भेज रहे हैं प्यार एंड स्पेशल विशेज ऑन दिस स्पेशल डे. कहते हैं यहाँ पर हैप्पी रक्षाबंधन टू माय ब्रदर्स विजय एंड संजय. सात सिस्टर्स लेकर आई हैं उनके लिए प्यार कुमारी सरोज वीना गीता ज्ञान्ति इंदिरा ललिता और सभी जीतन परिवार लवॉन्चर से विश करना चाहते हैं हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरी वन. अगला गाना होगा फॉर भाई राकेश विशाल एंड रितेश विशिंग देम अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन बेस्ट विशेस. ये है फ्रॉम सिस्टर्स देवी रीना एंड मनीषा. तो चलिए यहाँ पर लॉन्ग लॉन्ग लिस्ट और कोशिश करते रहेंगे कि दिन भर ये स्पेशल शुभकामनाएं प्यारी शुभकामनाएं हम पहुंचाते रहे आपके अपनों तक. अभी के लिए वी हैव द स्पेशल विशेस टू ऑल द ब्रदर्स टू ऑल द सिस्टर्स हैप्पी रक्षाबंधन.
2: रक्षाबंधन
3: चाहे फासले कितने भी बढ़ जाएं, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती. रक्षा बंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार सम्मान और खुशियाँ लाए. MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं. हैप्पी रक्षा बंधन. हैप्पी रक्षा बंधन.
4: मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना.
0: RM2 Radio Masti.
1: Achaliye, for now this beautiful song to all the brothers, to all the sisters from the film Jigra. जिंदगी में कोई भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए लेकिन ये रिश्ता हमेशा साथ रहेगा. सो इसी शुभकामनाओं के साथ हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट आवर की ओर जहां पर लेकर आ रहे हैं आपके लिए बी टाउन की लेटेस्ट अपडेट्स विद सम लेटेस्ट सॉन्ग्स. फरी का साथ टिल 4 PM ऑन RM2 रेडियो मस्ती. फॉर नाउ दिस वन गोज आउट फॉर ऑल द ब्रदर्स ऑल द सिस्टर्स. हैप्पी राखी हैप्पी रक्षाबंधन.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check, exactly 2 p.m. सुनते हैं देश विदेश की खबरें. गीता जी से आपको नमस्कार.
6: नमस्कार परी, सभी को हमारा नमस्कार. आज भाई बहनों का त्यौहार रक्षाबंधन है. रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार, विश्वास और अपनापन का त्यौहार है. ये त्यौहार हर साल सावन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है. इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसके सुखी, स्वस्थ और लंबे जीवन की कामना करती है. सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं. जॉन रिकॉर्डो आचान को जुलाई 2013 में ओकुले में ईशान कुआ को जानलेवा हमला करने के मामले में 21 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है. घटना के समय ये मसाज थेरापिस्ट 23 साल का था. असाइजिस की अदालत में जज प्रमिता गुडियाल चितू ने सोमवार को ये सज़ा सुनाई. शान कुमार चुलन, जो मिटुन से ज़्यादा जाना जाता है, ने आज अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया. गांजे की तस्करी के मामले में पुलिस को उसकी तलाश थी. आज सुबह रेडियो पर एक फ्रेंच प्रोग्राम के दौरान विदेश मंत्री रितेश रामफल ने बताया कि नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद लापता लोगों में कोई भी मॉरिशन शामिल नहीं है. इस बाढ़ में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है और कई अभी भी लापता हैं. मंत्री ने नेपाल की स्थिति पर दुख जताया और कहा कि नेपाली कामगार

0: मॉरिशस की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। और जहां तक मॉरिशस की ओर से संभावित मदद का सवाल है, मंत्री रितेश रामफल ने कहा कि इसके बारे में ज्यादा जानकारी मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा के बाद ही सामने आएगी। इस समय नेपाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा सहायता हासिल करने की कोशिश कर रहा है। और टिबेट की ओर स्थित पानी का बांध एक बार फिर टूट गया है। इस घटना के बाद बाढ़ का गंभीर खतरा पैदा हो गया है, जिसके चलते नेपाल पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पुलिस ने तत्काल नोटिस जारी कर बचाव और राहत कार्यों में जुटे सभी सुरक्षा कर्मियों और आम जनता से तुरंत सतर्क रहने की अपील की है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। विल्नोव मेबर्ग में 97 साल की 97-year-old की मिसेज बीबी जुबैदा रुसल साहिब, पैदाइश नाम तुगबाली और जो जुबैदा से ज्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनासा आज शाम 4 बजे उनके घर विल्नोव मेबर्ग से उठाकर रिविया डे क्रियोल का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 4 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: Bombay Talkies, Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: So well friends, पुराने गानों के बाद it's time to play some latest tracks आपके लिए और latest tracks के साथ B Town की latest updates भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं. So 2:09 and celebrating धागों का त्योहार रक्षाबंधन आपके लिए special wishes हम तो पहुंचा रहे हैं. अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं आपके अपनों के लिए specially for your brothers, for your sisters, you can always send me आपके messages, आपके dedications 5499-1294 पर आपका इंतजार और अभी के लिए मैं हूं परी आपके साथ. साथ रहेगा आपका और मेरा right here on Radio Masti till 4 PM and for now special wishes to all those jo connected hain hamari saath.
3: Raksha bandhan vaada hai ya dhaaga hai pyaar ka.
4: Chahe faasle kitne bhi badh jaye bhai behan ke dilon ki doori kabhi nahi badhti. Raksha bandhan ka ye pavitra tyohar aapke rishte mein aur pyar samman aur khushiyan laaye. MBC Radio ki or se aap sabhi ko Raksha Bandhan ki hardik shubhkamnaen. Happy Raksha Bandhan. Happy Raksha Bandhan.
5: Main rahu na main tere bina, tu rahe na tu mere bina.
6: North, south, east or west, tune into the very best Radio Masti, your number one Bollywood station.

0: Bombay Talkies.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: So well, ये तो हम जानते हैं दोस्तों कि आज का दिन तो हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं. Everyone is celebrating धागों का ये खास सा त्योहार, स्पेशल सा त्योहार. एंड यहाँ पर आपकी जो विशेज हैं, यानी कि नॉन स्टॉप विशेज आप हम तक पहुँचा रहे हैं 5499-1294 पर. बीट फ्रॉम मॉरिशस, बीट सात समुंदर प्यार से आपका प्यार हम तक तो पहुँच ही रहा है. सो थैंक यू फॉर द लव. एंड यहाँ पर विजया जी हो गई है हैप्पी. आवारा पंटू का गाना सुनकर आई नो इट्स योर फेवरेट. एंड फिल्म भी अब तो चल गई है और काफ़ी पैसे कमा लिए हैं इस फिल्म ने. बजट काफी लो था लेकिन करोड़ों की कमाई कर रही है ये फिल्म, दैट्स आवारापन 2. सो गाने तो पॉपुलर हो ही रहे हैं, साथ ही साथ फिल्म भी लोगों को पसंद आ गई है. सो अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा, देखिए जरूर. एंड यहाँ पर हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन, दैट्स कमिंग फ्रॉम अब्दुल एंड सायरा बानू. अपनी स्पेशल विशेज लेकर आए हैं आप, मीन्स अ लॉट. थैंक यू सो मच फॉर दिस स्पेशल स्पेशल विश. एंड वेल, यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे कुछ और दोस्त. एंड मैसेजेस डेडिकेशंस 5499-1294 पर नॉर्मल नंबर या फिर व्हाट्सएप के जरिए आप अपना प्यार हम तक पहुंचा सकते हैं. कहते हैं हैप्पी रक्षाबंधन टू माय फाइव सिस्टर्स जो है डीडा, शोभा, अनुराधा, पिंकी एंड सिमला, कमिंग फ्रॉम भैया प्रवीण एंड विकास. और उनके लिए भी शुभकामनाएं एंड स्पेशल विशेज टू ऑल दोज जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. चलिए रक्षाबंधन तो हम मना रहे हैं और यहाँ पर कुछ ब्यूटिफुल सॉन्ग्स, ब्यूटिफुल विशेज आपके लिए. हैप्पी राखी, हैप्पी रक्षाबंधन. मैसेजेस डेडिकेशन 5499-1294 पर.
4: HS

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: एंड वेल फ्रेंड्स, भारत में कोई भी त्यौहार हो या फिर वर्ल्ड वाइड कोई भी त्यौहार हो, लगभग सभी पर बॉलीवुड के गाने बनाए गए हैं और रक्षाबंधन भी इससे बिल्कुल अलग नहीं है। भाई बहन के इस त्यौहार पर रक्षाबंधन के लिए बहुत सारे बॉलीवुड में गाने भी बने और आज हम एक ऐसे गाने के बारे में जानेंगे जिसे रक्षाबंधन का गाना माना जाता है, मगर ये गाना रक्षाबंधन के लिए बना नहीं था। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार को दर्शाने वाला त्यौहार है और आज 28 अगस्त देश भर दुनिया भर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन के त्यौहार को तो खास बनाते हैं बॉलीवुड के गाने और इन गानों में फूलों का तारों का ये गाना सबसे पहले शामिल होता है। सो यह 1971 में रिलीज हुई फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का ये गाना रक्षाबंधन के त्यौहार को दर्शाता है, मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये गाना कभी रक्षाबंधन के लिए बना ही नहीं था। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के डायरेक्टर देवानंद थे और इसमें देवानंद, मुमताज, जीनत अमान, प्रेम चोपड़ा अहम किरदारों में नजर आए थे। फिल्म काफी कामयाब रही थी और फिल्म में पश्चिमी देशों के पीछे भागने की मानसिकता को दिखाया गया था और आपको बता दें दैट ये फिल्म को आर डी बर्मन ने म्यूजिक दिया था। गाना फूलों का तारों का ये गीतकार आनंद बख्शी ने लिखा था। इस गाने के दो वर्जन थे, एक वर्जन को लता मंगेशकर ने आवाज दी, दूसरे वर्जन को किशोर कुमार ने गाया था। दोनों गाने फिल्म में अलग अलग मौके पर इस्तेमाल हुए और आर डी बर्मन ने इस बात का खुलासा किया था कि फूलों का तारों का ये जो गाना है रक्षाबंधन के तौर पर बनाया नहीं गया था। इसका विचार फिल्म की कहानी के हिसाब से आया था और हालांकि वक्त के साथ ये गाना भाई बहन के प्यार को दर्शाने वाला बन गया, आज भी जैसे ही फूलों का तारों का गाना बजता है तो लोगों को रक्षाबंधन याद आ जाता है और भाई बहन का प्यार याद आ जाता है। सो जैसे हम कहते हैं कि बॉलीवुड में हर त्यौहार के लिए गाने बने हैं, लेकिन दैट्स द आयरनी कि ये जो गाना है जिसे हर राखी पर हम चलाते हैं, एक्चुअली इट वॉज नेवर मेड फॉर रक्षाबंधन, लेकिन वॉट अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, वॉट अ ब्यूटिफुल ट्रैक। इस ट्रैक ने तो हर किसी के दिल को छू लिया और उस दौर की बात करें यानी कि

1971 की बात करें या फिर 2026, आज भी ये गाना उतना ही प्यारा, उतना ही पॉपुलर। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए तो प्यारे गाने आपके लिए चला रही हैं सेलिब्रेटिंग रक्षाबंधन, एंड आपके लिए कुछ स्वीट सॉन्ग्स के साथ स्वीट विशेस हम पहुंचा रहे हैं। अगर आप भी विश करना चाहते हैं अपने ब्रदर, अपने सिस्टर को, सो ऑल यू हैव टू डू इज सेंड मी आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस ऑन 5499-1294। आपके इस त्यौहार को सजाएंगे विद सम ब्यूटीफुल ट्रैक्स एंड सम वंडरफुल विशेस। फॉर नाउ मैं हूं परी आपके साथ, बी राउंड की खबरें भी आप तक पहुंचा रही हैं। दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज। अभी से लेकर 4 बजे तक रहेगा आपका और मेरा साथ।

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है जो भाई बहन के रिश्तों का प्रतीक है, रिश्ते का प्रतीक है। और आज बॉलीवुड के कई सिबलिंग्स और ट्विंस राखी पर धमाल मचाएंगे और इन सेलिब्रिटी किड्स के बारे में हम बात करेंगे। सो जय तैमूर एंड इनाया, सैफ अली खान और करीना कपूर के दोनों बेटे तैमूर और जय का बहन इनाया से खास रिश्ता है। सोहा और कुणाल खेमू की बेटी इनाया नोमी हर साल तैमूर और जय को राखी बांधती आई है और तीनों भाई बहन जब भी मिलकर ये प्यारा सा फेस्टिवल मनाते हैं तो फैंस जो हैं उनको उनकी क्यूट तस्वीरें मिल ही जाती है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की बेटी वामिका और बेटे अकाय के लिए भी ये त्यौहार काफ़ी खास है। हालांकि कपल अपने बच्चों की तस्वीर ज़्यादातर शेयर नहीं करते हैं, फिर भी फैंस को इनकी पोस्ट का इंतज़ार रहता है। साथ ही आपको बता दें दैट एक्टर शाहिद कपूर और मीरा कपूर के दोनों बच्चे मीशा और जैन ये जो त्यौहार है उसे बहुत ही हैप्पीली हमेशा सेलिब्रेट करते हैं। और कपल की बेटी मीशा, बेटा जैन, ये जो है वो एक दूसरे से 2 साल बड़े हैं, यानी कि बेटी जो है वो जैन से 2 साल बड़ी है। जहां मीशा का जन्म 26th of August 2016 में हुआ था, वहीं जैन 5th of September 2018 में जन्मे थे। मीशा हाल ही में 10 साल की हुई है और जैन 1 हफ्ते बाद 8 साल का अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। सो आज के लिए ये त्यौहार इन दोनों बच्चों के लिए भी खास। और क्लीन कारा शिवराम अनवीरा, अगर इनके बारे में हम बात करें, सो एक्टर रामचरण उपासना

0: कामिनेन के तीन बच्चों के माता पिता है। पहली बेटी क्लीन कारा और दूसरे हाल ही में हुए हैं जुड़वा बच्चे शिवराम बेटा और अनवीरा देवी जो उनकी बेटी है। सो यहाँ पर ये जो तीन भाई बहन हैं वो आज अपना फर्स्ट रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने वाले हैं। सो रामचरण परिवार के लिए भी इट्स अ स्पेशल स्पेशल मोमेंट। वहीं अगर हम यश और रूही की बात करें, सो फिल्म मेकर करण जौहर के दो बच्चे बेटा यश बेटी रूही इन दिनों एक खास मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। ये तो हम जानते हैं दैट करण इज अ सिंगल पेरेंट और उनकी परवरिश वो बहुत ही प्यार से करते हैं। यश और रूही का भी रिश्ता आपस में काफ़ी मजबूत है और बर्थडे हो या फिर कोई त्योहार दोनों हमेशा साथ मनाते हैं। सो ये हम जानते हैं कि भाई इस रक्षाबंधन की जो तस्वीरें हैं सेलिब्रिटी किस की तस्वीरें हैं इनका इंतजार भी फैंस जरूर करेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स बच्चे हैं उन्हें तो पता भी नहीं है कि सेलिब्रिटी क्या होता है, बस दे जस्ट सेलिब्रेट द मोमेंट, दे जस्ट सेलिब्रेट द फेस्टिवल। सो आई एम श्योर कि उनके पेरेंट्स जो है वो ये तस्वीरें शेयर जरूर करेंगे। लेकिन अभी के लिए गुड विशेस टू ऑल दोज हमारे जो लिसनर्स हैं आप भी हमारे सेलिब्रिटीज हैं बिकॉज आप नहीं तो हम नहीं। सो थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड वंस अगेन आज का ये खास दिन हम आपके साथ मना रहे हैं। स्पेशल विशेस टू ऑल द ब्रदर्स टू ऑल द सिस्टर्स जो साथ दे रहे हैं ऑन RM2 रेडियो मस्ती परी का साथ है एंड दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज अभी से लेकर दिन के 4 बजे तक।
1: रक्षाबंधन
2: चाहे फासले कितने भी बढ़ जाए भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार सम्मान और खुशियाँ लाए। MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन।
3: हैप्पी रक्षाबंधन।
4: मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना।
5: RM2
6: Radio Musti.
7: Allons chez Lolo.
8: Alpa, deux petits pois, 500 grammes à 15,95 rupees. Basmati, first choice, grade 11-21, de 5 kg à 385 rupees. De l'huile N-Lit Omega 100% soya

0: Talkies. Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: तो चलिए दोस्तों इट्स 2:54 थोड़ी ही देर में हम बनने वाले हैं नेक्स्ट आवर की ओर. कहते हैं गाना हो जाए फॉर भाई राज राम जियावन के लिए और लीना राम जियावन खुशनुमा से भेज रही हैं अपने बिहार भाई के लिए बहुत सारा प्यार. वेल यहां पर सुपर लॉन्ग मैसेज. आई वुड लाइक टू डेडिकेट अ फ्यू वर्ड्स टू दैट लिटिल ब्रदर ऑफ माइन हुम आई टुक केयर लाइक अ चाइल्ड. बीन 5 years लाइक रक्षाबंधन फील्स वेरी डिफरेंट. देर आर सो मेनी इमोशंस इन माई हार्ट एंड ऑनेस्टली आई कांट हेल्ड बैक द टीयर्स. नो No matter how difficult things have become, you will always be my little brother and I just want to pray that life brings peace, strength and a better path. Kya baat hai Anusha Ram Bharat bhej rahi hai ye special message apne bhai ke liye and like we said that ye bond jo hai wo bahut khas hai. You have shared so many things together bachpan se lekar abhi tak itne sare moments hain jinhe aap jab bhi yaad karte hain aapko wo flashbacks aate hain ki क्या वो टाइम था और क्या आज का टाइम है जहाँ पर आप दोनों अभी भी साथ हैं और दिल से हम उम्मीद करेंगे कि ये साथ हमेशा बना रहे. साथ ही यहाँ पर जाविसन लाल माटी से रक्षाबंधन विशेष भेज रहे हैं सभी के नाम. तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर. लौट कर आएंगे परी का साथ है ऑन RM2 रेडियो मस्ती. साथ की बात हो रही है प्यार की बात हो रही है. लाइक वी सेड कि गाने जिसे आप जैसे समझना चाहे उसे आप उसी तरह समझ पाते हैं. इस गाने को हम डेडिकेट करना चाहेंगे टू ऑल दोस्त जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. दिल का कनेक्शन भाई हो बहन हो या जो भी कोई हमारे साथ जुड़ा हुआ है. एंजॉय दिस वन.

0: The time is brought to you by
1: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
0: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5.
2: East, West,
1: 96.4.
2: Center,
1: 99.4.
3: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: Time check 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं गीता जी. आपको नमस्कार.
5: नमस्कार परी. सभी को हमारा नमस्कार. नेशनल यूथ पार्लियामेंट का 5वां संस्करण आज सुबह राष्ट्रीय सभा में शुरू हुआ. इस मौके पर प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम और स्पीकर शगिन अमीरुद्दीन जिफ्रा भी मौजूद थी. दो दिनों के दौरान 76 युवा संसदीय प्रक्रियाओं से परिचित होंगे ताकि वे लोकतंत्र और सुशासन के सिद्धांतों को बेहतर तरीके से समझ सकें. नेशनल यूथ पार्लियामेंट युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करने का मंच देता है, साथ ही उन्हें अपने विचार प्रभावी ढंग से रखने और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का अवसर भी मिलता है. आज सुबह प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन का मुख्य मुद्दा मॉरिशस के युवा स्नातकों का विदेश जाना और प्रतिभाओं के देश से बाहर जाने की समस्या थी. इसमें प्रतिभाओं को देश में बनाए रखने और युवाओं की शैक्षणिक योग्यता तथा उद्योग की जरूरतों के बीच के अंतर को कम करने के उपायों पर भी चर्चा हुई. युवा प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम ने उनसे कहा कि जीवन में वे जो भी काम करने का फैसला करें उसे दृढ़ विश्वास, साहस और इच्छा शक्ति के साथ पूरा करने का प्रयास करें. आज भाई बहनों का त्यौहार रक्षाबंधन है. रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार, विश्वास और अपनापन का त्यौहार है जो हर साल सावन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है. इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उसके सुखी, स्वस्थ और लंबे जीवन की कामना करती हैं. सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएँ. शान कुमार चुलन, जो मिटन से ज़्यादा जाना जाता है, ने आज अपने आप को

0: पुलिस के हवाले कर दिया। गांजे की तस्करी के मामले में पुलिस को उसकी तलाश थी। और विदेश खबरों में टिबेट की ओर स्थित पानी का बांध एक बार फिर टूट गया है। इस घटना के बाद बाढ़ का गंभीर खतरा पैदा हो गया है, जिसके चलते नेपाल पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पुलिस ने तत्काल नोटिस जारी कर बचाव और राहत कर्मियों में जुटे सभी सुरक्षा कर्मियों को और आम जनता से तुरंत सतर्क रहने की अपील की है। और अपने पिता हैरल्ड फाइव के निधन के बाद किंग हाकन आठ ने नॉर्वे की गद्दी संभाल ली है। हैरल्ड फाइव 35 वर्षों तक नॉर्वे के राजा रहे। आज तड़के ओस्लो के राष्ट्रीय अस्पताल में उनका निधन हो गया, जहां उनका एक दुर्लभ खून संबंधी बीमारी का इलाज चल रहा था। इसके साथ है संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। विल्नर्व मेबर्ग में 97 साल की 97-year-old की मिसेस बीबी जुबैदा रसूल साहिब, पैदाइश नाम तोगोबाली और जो जुबैदा से ज्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज शाम 4 बजे उनके घर विल्नर्व मेबर्ग से उठाकर रिविया डी क्रियोल का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 4 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: More music in the mix.
3: Aaj Azadi hai.
4: Bombay Talkies, Radio Musti.
5: Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो चलिए दोस्तों, वार्म वेलकम. 3:07 फ्राइडे आफ्टरनून, 28th of August, सेलिब्रेटिंग राखी का त्यौहार, सेलिब्रेटिंग रक्षाबंधन, और आपके लिए गुडी गुड विशेस तो हम पहुंचा रहे हैं. अभी के लिए मैं हूं परी आपके साथ. दिन के 4 बजे तक रहेगा आपका और मेरा साथ. और चलिए राखी के इस मौके पर

0: पर हमने सोचा कि एक खास तोहफा आप तक पहुंचाए, सो इट्स टाइम टू प्ले अ गेम जहां पर ए मीडिया मॉरिशस से लेकर आ रहे हैं मुख्तार शाह को द वॉइस ऑफ मुकेश फॉर टू शोज जो होने वाले हैं ऑन फ्राइडे 4th एंड संडे 6th ऑफ सितंबर एट कोडो आर्ट्स सेंटर। अगर आप भी इस खास आवाज को सुनना चाहते हैं, इफ यू आर अ फैन ऑफ ओडीज, इफ यू आर अ फैन ऑफ मुकेश साहब, तो आप बन सकते हैं हमारे लकी विनर। ऑल यू हैव टू डू इज पार्टिसिपेट और फिर हम करेंगे एक लकी ड्रॉ। सो सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए, आपको हमें बताना है विच फेमस एक्टर वॉज मुकेश प्राइमरली द सिंगिंग वॉइस फॉर, यानी कि जो मेन एक्टर थे जिनके लिए मुकेश ज्यादातर गाने गाते थे वो एक्टर कौन थे? इज इट ए राज कपूर या फिर बी शम्मी कपूर? आपके सही जवाब ऑन 5499-1294। आपके लिए सिंपल सा सवाल है, मुकेश साहब द लेजेंडरी सिंगर ऑफ बॉलीवुड, ये किस एक्टर के लिए ज्यादातर गाने गाया करते थे? उनकी आवाज जो है वो किस एक्टर के लिए ज्यादा हमने सुनी है? इज इट ए राज कपूर या फिर बी शम्मी कपूर? यह सही जवाब ऑन 5499-1294 आपके पूरे नाम और पते के साथ। अगर आप बनते हैं हमारे लकी विनर तो आप हिस्सा हो सकते हैं इस शानदार कॉन्सर्ट का। सो ड्रॉप इन आपके सही जवाब फटाफट ऑन 5499-1294। पहले जीत हो चुकी है, प्लीज दूसरों को मौका दे। अगर अभी तक जीत नहीं हुई है, डू ट्राई योर लक, वेटिंग फॉर योर राइट आंसर्स ऑन अ मैजिकल नंबर। ऑल वेरी बेस्ट।
1: RM2 Radio Masti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो चलिए दोस्तों यहां पर मुकेश साहब से जुड़ा हुआ आपका सवाल था और आप को हमने पूछा था कि वो कौन से एक्टर थे जिनके लिए ज्यादातर हमने मुकेश जी की आवाज सुनी एंड द राइट आंसर इज राज कपूर. जी हां, उन्हीं के पॉपुलर सॉन्ग्स हमने सुने जहां पर मुकेश साहब ने अपनी आवाज दी ज्यादातर राज कपूर जी को. और जब भी राज कपूर जी गाते थे लगता था बिल्कुल वो उन्हीं की आवाज है. एंड व्हेन वी लॉस्ट मुकेश साहब, राज कपूर का कहना था दैट आई लॉस्ट माय वॉइस आज, और बिल्कुल सच बात थी. तो चलिए यहाँ पर हमें मिले बहुत सारे सही जवाब. लकी ड्रॉ के बाद लकी विनर आप है कृतानंद राम खिलावन फ्रॉम वाकवा. कॉन्ग्रेचुलेशन. सो वेल कृतानंद जी, आपके तो सरनेम में ही वन है, राम खिला वन, तो आप भी जीत चुके हैं ये शानदार इनाम. कॉन्ग्रेचुलेशंस. आपको बता दें दैट इम मीडिया ब्रिंग्स टू मॉरिशस मुख्तार शाह द वॉइस ऑफ मुकेश फॉर टू शोज जो होने वाले हैं फ्राइडे 4th एंड सैटरडे संडे 6th ऑफ सितंबर एट कोडो आर्ट सेंटर. मुख्तार शाह जो अहमदाबाद गुजरात से हैं एंड ही हैज बीन एंथ्रिलिंग ऑडियंसेस वर्ल्ड वाइड विथ हिज मुकेश लाइक वॉइस. मुख्तार शाह विल परफॉर्म द टाइमलेस मेलोडीज ऑफ लेजेंडरी singer and music lovers will be treated to unforgettable masterpieces of Indian cinema from the 50s, 60s and the 70s. Our reputed Mauritian co-singers Varshani Bisesa, Vishal Mangru will sing alongside Mukhtar Shah, accompanied by our finest musicians under the musical direction of Vijay Munisamy. So MBC invite kar raha hai aapko to participate aur participate kiya hamare sabhi yahan par listeners ne and we got the lucky winner. So you are lucky winner jo sun payenge the most popular songs of Mukesh ji like Main Pal Do Pal Ka Shayar Hoon, Dost Dost Na Raha in the voice of Mukhtar Shah. Congratulations kahenge aapko and aap hai Kritanand Ram Khilavan. Aana hoga aapko MBC Monday to Friday. Aap yahan par aa sakte hain subah 10 se lekar afternoon 3 pm tak apne ID ke saath. So enjoy kijiye is shandar concert ko jahan par aap Mukesh ji ke kuch timeless classics enjoy kar payenge and thank you so much sabhi logo ko jinhone participate kiya on RM2 Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो चलिए दोस्तों 3:22 फिल्म टॉक्सिक ने बॉक्स ऑफिस पर दो दिन पूरे कर लिए हैं। फिल्म कितना कमा पाई है, पहले दिन तो बम्पर कमाई की है लेकिन इसके बाद कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली। यश समेत कई दूसरे कलाकारों से सजी फिल्म टॉक्सिक ने 26 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। पहले दिन इस फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया, 100 करोड़ से ज्यादा ऑन फर्स्ट डे, और दूसरे दिन इसके कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली। इसी के साथ फिल्म इरुमुडी अच्छा कलेक्शन कर रही है और जानते हैं कि आवारापन 2 और इंसीडियस ने कितना कलेक्शन किया है। सो आपको बता दें फिल्म टॉक्सिक में यश के अलावा कियारा अडवाणी, हुमा कुरेशी, नयनतारा, रुक्मणी वसंत नजर आई। इसका डायरेक्शन गीतू मोहनदास ने किया है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 101.10 करोड़ से अपना खाता खोला, जो काफी अच्छा अमाउंट है। दूसरे दिन फिल्म में गिरावट देखी गई और 101 करोड़ से डायरेक्ट टू 36.40 करोड़। सेकेंड दिन का कलेक्शन तो इतना ही हुआ और इस फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 137.50 करोड़ रहा है। और आपको बता दें दूसरे दिन हिंदी में इस फिल्म ने 23 करोड़ कमाए और कन्नड़ और तेलुगु में 8.50 करोड़ और 3 करोड़ की कमाई की है। ये है यश की टॉक्सिक फिल्म। जहां भारत में इस फिल्म ने अच्छी कमाई की है वहीं दुनिया भर में इस फिल्म ने बेहतरीन कलेक्शन किया। भारत में फिल्म टॉक्सिक ने ग्रॉस कलेक्शन 1.64 करोड़ का किया, वहीं दूसरे दिन ओवरसीज इसने 110 करोड़ यस 10 करोड़ से अपना खाता खोला है। और साथ ही आपको बता दें दैट वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की बात करें सो 190.75 करोड़ का कलेक्शन अभी तक इस फिल्म ने किया है। इरुमुडी, ये अगर हम बात करें इस फिल्म की तो इस फिल्म का जलवा बरकरार है। इस फिल्म ने अभी तक 92.15 करोड़ कमाए हैं और काफ़ी कम बजट की फिल्म एंड काफ़ी अच्छे खासे पैसे कमाए हैं। वहीं यहाँ पर इमरान हाशमी की आवारापन 2 का कलेक्शन रहा है 144.25 करोड़। वैसे ये फिल्म भी काफ़ी कम बजट में बनी थी और इस फिल्म से ज़्यादा उम्मीदें इसीलिए नहीं थी क्योंकि ये फिल्म बंटवारा के साथ रिलीज़ हुई, साथ ही इसकी जो रिलीज़ डेट है वो पोस्टपोन होते हुए अभी की हुई। और जहाँ पर दो बड़ी फिल्में एक साथ रिलीज़ होती है तो फिर लॉस तो होता ही होता है, लेकिन यहाँ पर बंटवारा 1947 ये हो गई टोटल लॉस में और वहीं यहाँ पर आवारापन 2 को मिला है इसका फ़ायदा, 144.25 करोड़ अभी तक इस फिल्म ने कमाए हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर इंसीडियस की भी हम बात करेंगे। ये तो काफ़ी एक कह सकते हैं लोग जो हॉरर फिल्में देखना पसंद करते हैं सो ये नाम आपको काफी जाना पहचाना होगा। सो इस फिल्म का कुल कलेक्शन 12.99 करोड़ रहा है और सातवें दिन इस फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की है और आफ्टर 7 डेज फिल्म का कलेक्शन 12.99 करोड़ रहा। सो अभी के लिए तो बात इतनी सी है कि यश की जो बिग बजट फिल्म थी, 4 साल का इंतजार जो उनके फैंस ने किया, फाइनली इट टर्न्ड इनटू अ लॉस, इट टर्न्ड इनटू अ फ्लॉप, जहां पर ये फिल्म अब फ्लॉप हो चुकी है और इतने खास रिव्यूज नहीं आ रहे हैं जहां पर लोगों को लगा था कि ये एक माइंड ब्लोइंग फिल्म होगी और यश का किरदार लोगों को बहुत पसंद आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और फिल्म फाइनली फ्लॉप हो गई है। वहीं इमरान हाशमी की आवारापन 2 हो गई है सुपर डुपर हिट।

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: It's 3:54. It's time for Pari to say goodbye. Jaate jaate gana hoga for all brothers, sisters. Pious Raksha Bandhan, sister Khyara, dedicating agla gana hoga for brother Prayan. Also for Nani Sarita, Anita, Jani, Shobha, Nana Mukesh, Suren, brother, sabhi unke parivar ke liye. Manoj Dripol hai humare saath jude huye. We also have Ubru Parivar and Mama Krishni and Nikit Singh family humara saath de rahe hain Rosebell se. So gana hoga aap sabhi ke naam jinhone itne pyar se humara saath diya. Kehte hain थैंक यू फॉर तुझको एंड सैयारा. जितना भी सुनो कभी बोर नहीं होंगे. और तो फिर आओ फ्रॉम आवारापन टू, अगर ये सुनने को मिल जाए तो मूड सेट हो जाए. चलिए अभी के लिए तो हम आपको छोड़े जा रहे हैं विद अ ब्यूटीफुल ट्रैक एंड उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए ये गाना हम जरूर चलाएंगे. तब तक के लिए टू ऑल द लिसनर्स जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल टाइम. वंस अगेन रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं. हैव अ ग्रेट वन. और थोड़ी ही देर में सुन पाएंगे प्रोग्राम रफ्तार वाइब्स राइट हियर ऑन RM2 रेडियो मस्ती.
3: रक्षाबंधन वादा है या धागा है प्यार का.
4: चाहे फासले कितने भी बढ़ जाए, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती. रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाए. MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं. हैप्पी रक्षाबंधन. हैप्पी रक्षाबंधन.
5: मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना.
1: RM2 Radio Musty.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check, 4 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं गीता जी. आपको नमस्कार.
6: नमस्कार परी, सभी को हमारा नमस्कार. वर्ल्ड नीड्स में तनाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है. हालांकि कामकाज आंशिक रूप से फिर से शुरू हो गया है, लेकिन कई मजदूर अभी भी तकनीकी बेरोजगारी के कारण काम से बाहर हैं और वेतन मिलने में लगातार देरी हो रही है. हालांकि प्रशासन का कहना है कि देरी कम करने और स्थिति में सुधार लाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है. कल से पंजदेसनी इलाके में सार्वजनिक समुद्र तट तक जाने के रास्तों के लिए बोर्ड लगाए गए हैं. उन लोगों को नोटिस भी दिया गया है जिन्होंने रेत पर अपने बोर्ड और अवरोध लगाए थे. ये पहल आवास और भूमि मंत्रालय की है. इसका उद्देश्य होटलों और अन्य बंगालों मालिकों द्वारा हमारे समुद्र तटों पर किए जा रहे कब्जे को रोकना है. आज भाई बहन का त्यौहार रक्षाबंधन है. रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार, विश्वास और अपनापन को का त्यौहार है. ये त्यौहार हर साल सावन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उसके सुखी और स्वस्थ तथा लंबे जीवन की कामना करती हैं. शान कुमार चुलन, जो मिटुन से ज़्यादा जाना जाता है, ने आज अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया. गांजे की तस्करी के मामले में पुलिस को उसकी तलाश थी. और विदेशी खबरों में तिब्बत की ओर स्थित पानी का बांध एक बार फिर टूट गया है. इस घटना के बाद बाढ़ का गंभीर खतरा पैदा हो गया है, जिसके चलते नेपाल पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है. पुलिस ने तत्काल नोटिस जारी कर बचाव और राहत कार्यों में जुटे सभी सुरक्षा कर्मियों और आम जनता से तुरंत सतर्क रहने की अपील की है. इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार.
0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
4: It's not just about the music, it's about the feeling.
0: Friday Mashup. Friday Mashup.
4: RM2, Radio Musti, in the mix.

So well friends, welcome. That's your Friday mashup. थोड़ी ही देर में हंसनी will be joining in. आपके लिए चलाएंगी वो प्यारे प्यारे गाने. अभी के लिए warm welcome to all those जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. RN2 Radio Masti, it's time for your Friday mashup. अभी से लेकर शाम के 7 बजे तक.

0: Friday Mashup. 4 to 6 on Radio Musti.
1: RM2, Radio Musti, your number one Bollywood radio station.
2: So, well, Friday है and to get you in the mood, we have the best mix of music. वैसे आज का दिन है खास, celebrating Rakhi, रक्षाबंधन as well. So, यहाँ पर good wishes आप हम तक पहुँचा सकते हैं on 5499-1294. आपकी wishes को सजाएंगे हम good music के साथ. Hansini will be joining in soon. आपको entertain करने वाली है with some beautiful songs. So, कहीं मत जाइए, stay connected. RM2 Radio Masti के साथ.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती
2: श्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 3, 4 और 5 सितंबर 2026 हर शाम 6 बजे से हर कृष्ण मंदिर लॉन्ग माउंटेन 3 दिन का दिव्य उत्सव भक्ति आनंद और कृष्ण प्रेम का रंगों में रंगने का अवसर। भारत से पधारने वाले ऋषिगण मधुर कीर्तन गुंजती मृदंग की ताल और श्री कृष्ण की मनमोहक लीला में सबका एक ही हाल। बच्चों के लिए आनंद मेला, नाटक, नृत्य, गौ पूजा, श्लोक रेसिटेशन, क्विज और स्वादिष्ट महाप्रसाद। अपने परिवार के साथ जरूर आइए और बनिए श्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का हिस्सा।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: Mashup.
1: RM2, Radio Musty.
2: 4:22 p.m. Thank you for connecting with Radio Musty. Wishing you all a great afternoon. आप सभी का वेलकम है और बेशक इट्स फ्राइडे टाइम शुक्रवार के इस खूबसूरत म्यूजिकल जर्नी में आपका हम दिल से वेलकम तो करेंगे. फाइनली यस इट्स फ्राइडे टाइम और कई लोगों के लिए काम का आखिरी दिन है. इट्स वीकेंड का एक्साइटमेंट जो बिल्कुल शुरू हो गई है और फ्राइडे आफ्टरनून और इसका मतलब है कि वीकेंड की फीलिंग ऑफिशियली ऑन. तो यहाँ पर बेशक इसकी तैयारियाँ हो रही है ऑन रेडियो मस्ती टू वेलकम यू ऑल ताकि जो मस्ती है वो कुछ और बढ़ जाए. वैसे यहाँ पर आ गई है आपके साथ हंसनी एंड आई बी विद यू साथ साथ रहेंगे इस म्यूजिकल सफर को तय करने वाले हैं अब टिल 7 PM. एंड हॉनेस्टली यहाँ पर इस वक्त थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत तो सबको होती है ना, इसीलिए हम लेकर आए हैं द बेस्ट मिक्स म्यूजिक ताकि एंटरटेनमेंट के साथ जो एनर्जी लेवल है वो भी कुछ बढ़ जाए. और आज तो खुशियाँ मनाने का दिन आया है और कल कई भाई बहन मना गए रक्षाबंधन और आज भी बस ये जो प्यार है, ये जो बंधन है, ये जो खुशियाँ हैं वो हम भाई बहन सेलिब्रेट कर रहे हैं.

0: वैसे भाई बहन का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है, थोड़ी सी नोकझोंक, बहुत सारी मस्ती और थोड़ी सी यहाँ पर प्यार एक दूसरे के लिए, और ज़्यादा प्यार हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ बदल सकता है। और हम तो कहेंगे बचपन की छोटी छोटी फाइट्स से लेकर लाइफ के बड़े मोमेंट्स तक भाई बहन हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं ना। तो आज भाई बहन का ये दिन जो आया है, हम धूमधाम से सेलिब्रेट करने वाले हैं। और इसी सफ़र के दौरान हम अरविंद से मिलेंगे, जो शेयर करने वाले हैं द लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज़। और साथ में आज हम लेकर आएंगे और एक दर्शकों को, अगर आपको जाना है शान के लाइव कंसर्ट में, यू मार्क द प्रेजेंस अभी से ही, यू कैन विन, आपकी जीत हो पाएगी। इसके लिए आपको सुनना पड़ेगा, यू हैव टू कीप लिसनिंग, स्टे वेल कनेक्टेड ऑन रेडियो मस्ती। यहाँ पर इशारा है, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक होने वाला है, इसके बाद आप लोगों के लिए कुछ और म्यूजिक।
1: National Women Entrepreneur Council peut organiser une expo-vente pour promouvoir une entreprise locale. Les 28, 29 et 30 août, l'eau la place taxi flac depuis 9h grand matin jusqu'à 5h30 tantôt. Une femme entrepreneur pour vendre ce produit local et que nous avons vite découvert le savoir-faire mauricien. L'entrée est gratis. Check détails l'eau page Facebook NWEC Mauritius.
2: RM2 Radio Musty.

0: चाहे फासले कितने भी बढ़ जाएं, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाए। MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन।
1: मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना।
2: North, South, East or West, tune into the very best Radio Masti, your number one Bollywood station.

0: for him too. Radio Musty. In the mix. Radio Musty. In the mix.
1: Stay well connected on Radio Musty, guys. काम से वापस घर आप जा रहे हो, so please stay musical. हमारे साथ, this is our Friday mashup, bringing some great गाने. और वैसे ट्रैफिक में आप फंसे हुए हो तो हम किस बात की, हम तो है ना आपके साथ साथ. घर पर पहुंच गए होंगे मे बी, सो हैव अ सेफ ड्राइव बैक होम जो अभी ड्राइव कर रहे हैं. और जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, यहाँ पे बढ़ाकर वॉल्यूम, बस आप म्यूजिक को एंजॉय करिए हमारे साथ. टेंशन को थोड़ा सा साइड में रखिए और फ्राइडे मूड को फुल पावर में ले लीजिए. यहाँ पर वी आर हियर टू एंटरटेन यू एंड टू मेक इट अ सुपर ड्राइव. कुछ ही पल में हम अरविंद से मिलेंगे, जानेंगे कि क्या है लेटेस्ट इन द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. अगर ये सब भी आपको पता लगाना है तो इसके लिए सुनते रहिए. एंड हाँ, टू सेलिब्रेट योर स्पेशल डेट, मे बी कोई खास इवेंट है आज और हम तो है ही उन खुशियों में शामिल होने के लिए. सो वेटिंग फॉर यू, आप ही का इंतजार है. For your messages and dedications, write 105499 to 1194.

0: FM 2
1: Radio Musti
0: Shan live in Mauritius Saturday 5th of September at SBICC Pi. Join us for the biggest Shan concert ever produced in Mauritius with his complete crew of 28 artists. Get your tickets now at ticketbox.mu or call on 214-6464. Another great event brought to you by Gravity Zero. Ticketbox.mu, your one-stop shop for the best events, hotels and flights in Mauritius. Don't miss the RM2 Live event at Tech World Flag this Saturday, 29th of August from 2:30 to 4:30 p.m. Enjoy the final days of the incredible sales. Discover a wide selection of furniture, including brand new arrivals, all at unbeatable prices. Hurry up, the sale ends this Sunday. Join us at Tech World with the RM2 team at Flag Retail Park, Boulet Rouge. RM2
1: Radio Musti. RM2 Feel the Musti.
2: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the floor expert.
0: Sports News.
1: Radio Musti in the mix.
3: Tune in for the best of songs and tune in for the best of news as well. तो यहाँ पर स्पोर्ट्स की दुनिया में बस कदम बढ़ाएंगे एंड अरविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं. तो चलिए सुनते हैं द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. विश यू अ वेरी गुड आफ्टरनून अरविंद एंड वार्म वेलकम टू यू.
4: Good afternoon, आपको गुड आफ्टरनून RM2 listeners. द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. सबसे पहले हैप्पी राखी टू एवरीवन. चलिए इस बंधन में हम भी बंध जाते हैं और कुछ खबरें लेकर आते हैं. यूरोपा लीग के ग्रुप स्टेज के ड्रॉ आज निकाले जा रहे हैं. अभी बोर्नमुथ जो इंग्लैंड से हैं उसका मुकाबला एसी मिलान से होगा होम मैदान में. फिर रियल मैड्रिड के खिलाफ एवे मैच, विक्टोरिया प्लाजेन के खिलाफ होम मैच, स्पार्टा प्राग के खिलाफ एवे मैच, स्टर्म ग्राज के खिलाफ होम मैच, सेल्टिक एवे, अपोएल बेयरशेवा होम और लिल स्टॉर्म एवे मैच होगा. ये सनरलैंड की टीम भी क्वालिफाई है इसमें. एजेड अल्कमार के खिलाफ होम मैच, फिर एसी मिलान के खिलाफ एवे मैच, डिनामो के खिलाफ होम, अंडेलेक के खिलाफ एवे मैच, यागिलोनिया के खिलाफ होम मैच, लेच पोजनन के खिलाफ एवे मैच, लेव्स की सोफिया होम और टोरेंसे के खिलाफ एवे मैच. इंग्लैंड से ही क्रिस्टल पैलेस का नाम है इसमें. क्रिस्टल पैलेस क्वालिफाई है क्योंकि उसने यूरोपा लीग जीता था. सो क्रिस्टल पैलेस रियल सोसिएदाद के खिलाफ खेलेगा होम मैच. लियों के खिलाफ एवे मैच है, स्पार्टा प्राग होम मैच, साल्सबर्ग एवे, लेच पोजनन होम मैच, यागिलोनिया एवे मैच, होफेनहाइम होम, बेसिक्टास एवे. और सेल्टिक की टीम जो चैंपियंस लीग से उतर कर यहाँ यूरोपा लीग में आई है उसका मुकाबला मार्सेई से होगा. होम मैदान में है सेल्टिक. बेनफिका के खिलाफ एवे मैच, फेरेनवारोस होम, यूनियन सेंट जिलोआज एवे, सेल्टा वीगो होम, ओमोनिया एवे, बेसिक्टास होम, टोरेंजे एवे. ये सेल्टिक की टीम के लिए ड्रॉ है. बता दें आपको कि यूरोपियन चैंपियंस लीग की तरह यहां पर भी एक टीम को 8 मैच खेलना होगा, 4 होम और 4 अवे. जो पहली 12 टीमें आएंगी वे क्वालिफाई नॉकआउट राउंड के लिए. फिर बाकी टीमें भी आएंगी. चैंपियंस लीग से जो टीम डिमोट होगी बाद में उसको भी स्थान मिलेगा यहां पर खेलने के लिए. यूरोपा लीग के बाद यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग के ड्रॉ भी निकाले जाएंगे. इन पर आपको जानकारियां देते रहेंगे. प्रीमियर लीग सीजन 2026-2027 का दूसरा सप्ताह आज है और मैनचेस्टर सिटी जाएगा क्रिस्टल पैलेस के यहाँ. मैनचेस्टर सिटी की काफ़ी कठिनाई हुई थी पहले मैच में जबकि क्रिस्टल पैलेस की हार. सो मैनचेस्टर सिटी फेवरेट हैं इस मैच में जबकि क्रिस्टल पैलेस जो यूरोपा लीग में खेलेगा उसको पता चल गया किसके खिलाफ खेलना है. उसको बच के रहना होगा नहीं तो द पैलेस विल क्रम्बल डाउन. महल ढह चुका है एक बार फिर से ढहने का खतरा है. कल के फिक्स्चर्स अर्ली किक ऑफ लिवरपूल वर्सेस

0: इंग्लैंड के बीच अभी मैच चल रहा है. इंग्लैंड की टीम 290 पर ऑल आउट हुई. पाकिस्तान की टीम की बैटिंग शुरू हो चुकी है, एक विकेट डाउन. पाकिस्तान की टीम 290, इंग्लैंड के लिए मैच जारी है. लोकल स्तर पर घुड़दौर की चर्चा करें. कल रेस मीटिंग में जो मेन रेस है, द अजुल कोसेप्टिव लाभ ट्रॉफी ग्रुप थ्री रेस, 1400 मीटर की स्प्रिंट, और इसमें आत्माय कुमांड होगा. गजादर स्टेबल का घोड़ा डैनियलसन उस पर होगा. अंडरवर्ल्ड आउटा स्टेबल का घोड़ा उस पर होगा वन निकर्क. बाउंडलेस इनर्जी हेरिटसन पोलफोक्यून स्टेबल का घोड़ा उस पर होगा पियकोने ऑफ. राय जुगावन क्वासी फोशू पर होगा अमाल सीडियाल का घोड़ा. कैप्टन बॉम्बशेल पर होगा टाका. महाजा स्टेबल का घोड़ा और देबी स्टेबल का घोड़ा पेंसिल्वानिया उस पर होगा सुफल आत्माय कुमान. अंडरवर्ल्ड बाउंडलेस इनर्जी क्वासी फोशू कैप्टन बॉम्बशेल और नया घोड़ा जो है पेंसिल्वानिया अंडरवर्ल्ड भी पहली बार भाग लेगा. ये कल की रेस मीटिंग की मेन रेस है. चलते चलते बता दें कि रीजनल लेवल पर भी काफी मैच रखे गए हैं. होशनोवा फुटबॉल टूर्नामेंट जारी है, साथ में कोयराची में फुटबॉल फाइनल होगा. मोसेलमान सेंट एंड्रे में गाला मैच जहां पर वितरण कैडेट्स की टीम होगी, और सेंट जूलियन डोटमा में जिल्फा टीम की ओर से अनेक गतिविधियों का आयोजन होगा. ये है कल. तो इन सब पर कल सुबह आपको जानकारियां देंगे. हैव अ वंडरफुल टाइम लिस्निंग रेडियो मस्ती. टेक केयर. बाय बाय. एक बार फिर राखी अभिनंदन. हैव अ ग्रेट राखी आज के लिए. बाय बाय.
1: थैंक यू सो मच अरविंद, एंड विश यू टू अ हैप्पी रक्षाबंधन, एंड विश यू अ ग्रेट वीकेंड एज वेल. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द न्यूज.
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेकोर, द फ्लोर एक्सपर्ट.
3: Quality Déco finit ouvert ce nouveau showroom à Flac juste à côté MCB. Pour célébrer sa grande ouverture, la méga promo au plein de produits, morbe à portière 25 roupies, granit à portière 2000 roupies, lavabo, roche pour mur, robinetterie, sanitaire, toilette, baignoire et beaucoup les autres encore. Pas rater sa méga promo, viens découvrir un nouveau showroom de Quality Déco, Boulet Blanc à côté MCB, Flac. Numéro téléphone 413 87 55 ou 413 10 53.

0: Friday Mashup.
1: RM2 Radio Musti.
2: ऐसे ही कर ले सम धमाल विद रेडियो मस्ती एंड फॉर आवर शो जो है आज का फ्राइडे मैशअप दे रही है हंसनी सभी लोगों का साथ. और जैसे हमारा इशारा हुआ था ना कि आज भी एक चांस हम आपको देने वाले हैं रेडियो मस्ती द्वारा जहां पर जीतने का ये मौका है. द गेम इज पावर्ड बाय ticketbox.mu जहां पर आपको दिए जा रहे हैं वो स्पेशल चांस टू बी पार्ट ऑफ द शान लाइव कंसर्ट. वो एक ऐसा जर्नी होने वाला है फील्ड ऑफ मेलोडीज कुछ मेमोरीज एज वेल और उनकी टाइमलेस आवाज और शान वो तो आ रही है बहुत जल्द मॉरिशस यानी कि अगले हफ्ते जो होने वाला है वो धमाका. सो रेडियो मस्ती इज हियर ऑरेंटी रेडियो इज हियर जो आपको दे रहा है वो चांस टू एक्सपीरियंस दिस मैजिक और वो भी लाइव. तो खेलिए रेडियो मस्ती के साथ जहां पर ये मौका हम आपको दे रहे हैं टू विन अ गोल्ड टिकट. किसको हासिल करना है इस गोल्ड टिकट को यहां पर किसकी जीत होने वाली है ये सब हमें बस पता लगाएंगे थोड़ी देर के बाद जब क्वेश्चन रहने वाला है. सो गोल्ड टिकट के साथ यू कैन गो टू बी पार्ट ऑफ द स्पेक्टेकुलर शान लाइव कंसर्ट. वो एक आवाज और वो तो रहेंगे स्टेज पर धमाका करने के लिए और वो यादगार रात. ये तो सब होने वाला है एट SVICC पाई ऑन द 5th of September 2026. और जो लाइव कंसर्ट है वो शुरू होगा आज फ्रॉम 8 PM प्राउडली ऑर्गेनाइज्ड बाय ticketbox.mu. राइट इट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय ticketbox.mu. यहाँ पर अभी टाइम फॉर द क्वेश्चन. यहाँ पर से जवाब के लिए यू कैन सेंड योर मैसेजेस ऑन 5499 1294 जहाँ पर आपका पूरा नाम एड्रेस ये सब आपको लिखना है ताकि आप इन हो जाए. यस फॉर द लकी ड्रॉ.

तो अभी के लिए टाइम फॉर द क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ इवेंट्स कैन यू बुक ऑन ticketbox.mu? आई रिपीट द क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ इवेंट्स कैन यू बुक ऑन ticketbox.mu? यहां पर आपको तीन ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, ऑप्शन ए लोकल इवेंट्स ओनली, ऑप्शन बी इंटरनेशनल इवेंट्स ओनली, एंड यू हैव ऑप्शन सी बोथ लोकल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। तो इनमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है और बदले में सही जवाब आप दीजिए। जल्दी जल्दी ट्राई योर लक। और हंसनी यहाँ पर आई है और पूरा टीम यहाँ पर बिल्कुल शामिल है टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।

0: Friday Mashup.
1: RM2, Radio Musti.
2: जी हाँ बिल्कुल, लेट्स रॉक एंड मेक इट अ स्पेशल फ्राइडे टाइम। और जबकि यहाँ पर इतनी मस्ती हो रही है, शकों को भी चल रहा है, जहाँ पर ये चांस हम आपको दे रहे हैं टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्रेट वॉइस जो आ रही है मॉरिशस, वो है शान की आवाज, और उनको देखने का बिल्कुल मौका मिलेगा, और वो भी धमाकेदार कंसर्ट जो हम सब फैंस के लिए वो देने वाले हैं। सो कांट वेट टू सी शान इन मॉरिशस। तो यहाँ पर था एक सवाल आप लोगों के लिए, व्हाट टाइप ऑफ इवेंट्स कैन यू

book on ticketbox.mu. I repeat the question, that was what type of events can you book on ticketbox.mu. और यहाँ पर तीन ऑप्शंस आपको दिए गए थे, लोकल इवेंट्स ओनली, इंटरनेशनल इवेंट्स ओनली, बोथ लोकल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स. और यहाँ पर सही जवाब इट्स ऑप्शन सी, जहाँ पर बोथ लोकल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में जिक्र किया गया है. और अभी के लिए टाइम टू हेड टुवर्ड्स द लकी विनर. कौन है वो?

0: FM2.
1: Radio Musty.
2: Un bon petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Et les vignes plus agréables avec un bon dipé à pistache. Rapid Peanut Butter, un produit premium, 0% cholestérol, 0% transfat et riche en protéines. Qui danse l'emballage bleu crunchy ou l'emballage rouge creamy ou pour régaler avec Rapid Peanut Butter. Rapid Peanut Butter, a premium product at half the market price. Importé et distribué par RR Rapid Services Limited.
3: Tamam 10, il arrive coûte métrique. Pas croise, pas rêvé. Du 14 au 31 août, profite jusqu'à 50% discount. Oui, vous êtes bien attendu. Carreau, robinet et sanité à top qualité avec du rat, 50 tranquillité. Tamam 10 là, tamam même ça. Métrique, une enseigne du groupe KRMG.
4: Promotion Rakshabandhan côte magasin Sia Collection à Floréal. 50% discount, leur tout nouveau arrivage. Sari, lehenga, kulta, shelvani et crop moyé blanc. Tout à petit prix à partir les 22 août jusqu'à les 6 septembre. Magasin Sia Collection à Floréal, ouvert lundi à dimanche, 10h matin à 6h tantôt. Numéro téléphone 5807-5357.
0: RM2
1: Radio Musty.
0: Friday Mashup.
1: RM2 Radio Musty.
5: हेलो एवरीवन, हेलो फ्राइडे पीपल, आप लोग कैसे हो, हाल चाल कैसा है सबका। फ्राइडे तो आ गया है और बिल्कुल मूड ऑलरेडी वीकेंड मोड में स्विच हो चुका है और आज का सिंपल रूल तो यही है, नो स्ट्रेस ओनली गुड वाइब्स। फ्राइडे आफ्टरनून को टेंशन लेना ये तो सख्त मना है यहाँ पर। वैसे आपकी राइड कैसी चल रही है, ट्रैफिक में है सो नो वरीज, लॉन्ग ड्राइव है तो परफेक्ट क्योंकि यहाँ पर स्पेशल म्यूजिक जो चलने वाला है टू एंटरटेन यू। और ऑफिस से एक ब्रेक आप ले रही हो, काम से एक ब्रेक आप ले रही हो तो ये तो अभी अच्छा हो गया है, अभी टेक अ म्यूजिकल ब्रेक हमारे साथ ऑन रेडियो मस्ती। बस एक चीज कॉमन होनी चाहिए रेडियो पर, ये जो आपका मूड है वो तो बस हैप्पी होना चाहिए। वैसे एक बात है जो आपने नोटिस की है, जब फेवरेट गाना बजता है ना हमारा तो हम सब तो क्या बन जाते हैं, सिंगर बन जाते हैं, राइट। लिरिक्स तो याद होती है, वैसे सुर का तो पता नहीं, आइडिया नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस तो है। इस पर फुल मार्क्स होने चाहिए जब हमारा फेवरेट गाने चलते हैं ऑन रेडियो, राइट। तो अभी जो गाना आने वाला है उसके लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस इतना तो कह सकती हूँ अगर आपका मूड ऑलरेडी गुड है तो ये सॉन्ग उससे भी और बेहतर बनाने वाला है, इस मूड को और भी झकास हम करने वाले हैं। लेट द म्यूजिक रोल फॉर द सेकंड आवर ऑफ रतर वाइब्स। और आज तो है इट्स फ्राइडे मैशअप, फ्राइडे मूड को हम सजाते जाएंगे अटिल 7 PM जहां पर ये साथ जारी है आपका, वहीं पर आपके मैसेजेस अगर आप फ्री हो तो आप भेज सकते हो ऑन द 5499 1294।

0: नशे से चढ़ गई है
1: ये तो म्यूजिक का नशा है, छा जाता है जहाँ पर रेडियो मस्ती का सफर होता है वहीं पर हम चले आते हैं विद दिस वंडरफुल म्यूजिक टू सेलिब्रेट योर फ्राइडे. एक्चुअली एक ऐसा दिन है जहाँ पर सेलिब्रेशन जो मूड है वो अपने आप सेट हो जाता है. अच्छा अभी के लिए एक लेट्स सी फन वाला क्वेश्चन हो जाए आपके लिए, हो जाए और आपके लिए एक क्विक फ्राइडे क्वेश्चन राइट. फ्री हो तो यू कैन पार्टिसिपेट, दैट विल बी जस्ट फॉर फन. अगर आपको लेट्स से सुपर पावर मिल जाए सिर्फ वीकेंड्स के लिए तो आप क्या चूज करेंगे? हाँ अगर आपको सुपर पावर मिल जाए और वो भी सिर्फ वीकेंड्स के लिए तो आप क्या चूज करेंगे? हम आपको देते हैं ऑप्शन ए, फ्राइडे को कभी खत्म ही ना होने देना. ऑप्शन टू, सैटरडे को 48 आवर्स का कर देना. ऑप्शन थ्री, मंडे को कम्प्लीटली डिलीट कर देना. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे? फ्री हो तो बता दीजिए, यहाँ पर हंसनी है एंड या बिल्कुल द फन इज हियर. मॉडर्न मस्ती यहाँ पर जारी है, हम कर रहे हैं कुछ धमाका आपके साथ सेलिब्रेटिंग दिस हैप्पी डे. आज रक्षाबंधन कई लोग मना रहे हैं, भाई बहन लोग साथ है, ये भाईचारा है, ये माहौल इतना प्यारा है, ये जो बंधन है भाई बहनों का इनमें से बहुत सारी मस्ती हो रही है. लॉट्स ऑफ लव, ये जो प्यार का बंधन है, दिल का ये रिश्ता जो है वो हमेशा स्ट्रांग रहे, ये जो आपका बंधन है वो बस दिन ब दिन और भी मजबूत बने, यही हमारी गुड विशेस है. सो टू एड ऑन सम मोर मस्ती यहाँ पर वी हैव गॉट अ म्यूजिकल सफर आप लोगों के लिए आफ्टर 7 PM. दीजिए हंसनी का साथ एंड कुछ ही पल में हम लेकर आएंगे आपके कुछ डेडिकेशंस. व्हाई नॉट, आप अभी तो कितने बिजी हो लेकिन स्टिल आप टाइम निकालते हो ना टू सेंड अस मैसेजेस, इसके लिए थैंक यू तो कहना चाहेंगे. सो कुछ ही पल में आपके मैसेजेस आएंगे राइट ऑन 5499 1294.

0: back with the show. यहाँ पर we have got an awesome dedications. We have got messages as well. And I've got the answer यहाँ पर fun question के लिए था ना options जो हमने आपको दिए और आपका जवाब आया it's option A. Vidusha from Sebastopol. Thank you for sharing. ये जो मंडे आता है ना काफ़ी लेजी फील होता है और जो फ्राइडे आता है बस ख़त्म होने का नाम वो नहीं लेता है तो सबसे अच्छा तो यही रहेगा सबसे अच्छी बात तो यही रहेगी राइट सो थैंक यू विदुषा फॉर शेयरिंग योर लव विशिंग ऑल द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैप्पी रक्षाबंधन थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर लव हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल वीना जगिसा यहाँ पर आई है फ्रॉम बेलवी मोगैल यहाँ पर गाना आपके भाई विजय और संजय के लिए विहार जीतन परिवार सदा खुश रहे आपके भाई यही आपकी दुआएं हैं रब से यही आप प्रार्थनाएं करती हो कि आपके जो दो भाई हैं वो हमेशा सही सलामत रहे गॉड ब्लेस यहां पर गाना चल जाएगा आपके लिए चलते हैं बंते अवाकवा राजकुमार परिवार के वहां चलते हैं हेलो टू आवर लवली फ्रेंड लवीशा अनुषा हेलो टू यू माय डियर विश यू अ ग्रेट आफ्टरनून एंड वेलकम ऑन रेडियो मस्ती गाना तो बनता है आपके लिए इतने दिनों के बाद जो आप आई हो तो गाना आपके लिए आपके एक दोस्त के लिए नाम है क्रिस आपकी प्यारी सी मामा के लिए एंड फॉर ऑल योर डियर वंस गेटिंग रेडी फॉर अ रिसेप्शन सो हैव अ वंडरफुल टाइम यहाँ पर गाना बेशक सबके लिए चल जाएगा फॉर यू टू हैव अ डबल डोज ऑफ मस्ती यहाँ पे विशाल दसोई का साथ है इट्स अ प्लेजर टू वेलकम यू ऑन रेडियो मस्ती हैप्पी रक्षाबंधन आपको वी हैव योर बहन शिमला साथ में है ब्रिंदा रक्षा और सभी भाई बहनों के लिए हमारे लिए भी हाउ स्वीट ऑफ यू थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर स्पेशल विशेस और त्रिनेश भाई का भी वेलकम है ऑन रेडियो मस्ती कैसे हो जी रियली होप कि सब ठीक ठाक एंड थैंक यू सो मच फॉर योर विश हैप्पी रक्षाबंधन आपको भी यहाँ पर गाना मेरे लिए फॉर गिनीशा आज जो रक्षाबंधन है मिलकर इस भाई बहन का जो नाता है सेलिब्रेट हम करेंगे और आपके लिए जरूर एक गाना ड्राइव करते समय प्लीज स्टे सेफ एंड बिल्कुल इट्स फ्राइडे टाइम तो ये जो मस्ती भरा माहौल है ये तो बिल्कुल हम सेट करेंगे आप सबके लिए थैंक यू फॉर ट्यूनिंग फॉर द बेस्ट ऑफ सॉन्ग्स वी हैव रीना हेलो जी वेलकम रीना दुकारन का वेलकम है यहाँ पर गाना है आपके चाय यहाँ पर चाय टाइम को एंजॉय करती हुई साथ दे रही है एंड साथ में है भाई केविन जो इस समय बस चला रही हैं बस में काम करते हैं सबको हार जटी हो भाई और साथ में आप हो आपकी प्यारी सी बहना है स्वीता और सभी बहनों के लिए आपके भाई केविन को बहुत सारी बधाइयाँ हैं विशिंग हिम हैप्पी रक्षाबंधन सो जितने भी हमारे भाई बहन इस समय जुड़े हुए हैं रेडियो मस्ती के साथ ये छोटा सा विश आपके लिए
1: रक्षाबंधन
2: चाहे फासले कितने भी बढ़ जाएं, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती रक्षा बंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार सम्मान और खुशियाँ लाए MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं हैप्पी रक्षा बंधन हैप्पी रक्षा बंधन
3: मैं रहूं ना मैं तेरे बिना तू रहे ना तू मेरे बिना
4: RM2 Feel the Musty.

0: RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty. In the mix.
1: Fashion tips powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments.
2: Friday Mashup.
0: RM2. Radio Musty.
3: रेडियो मस्ती पर आप सब कनेक्टेड हो, सो इसके लिए थैंक यू. ऑफ कोर्स आप सभी को एंड अभी टाइम हो चला है टू हैव फैशन टिप्स ऑन रेडियो मस्ती विद आर हंसनी. तो आज हम पिंक साड़ी के बारे में बात कर रही हैं. सो लेडीज गर्ल्स, अगर आपके वार्डरोब में है एक खूबसूरत पिंक साड़ी, तो आज ये फैशन टिप्स आप के लिए है टू मेक इट मोर ईजी. पिंक साड़ी, पिंक साड़ी का सबसे बड़ा फायदा है कि ये कलर आपको एलिगेंट, फेमिनिन और एकदम फ्रेश लुक देता है. बस स्टाइलिंग सही होनी चाहिए. अगर आपकी साड़ी लाइट पिंक या बेबी पिंक है, तो उसके साथ सिल्वर, पर्ल या डायमंड स्टाइल ज्वेलरी बहुत ही क्लासी लगेगी. सो डू ट्राई. अगर आपने सोचा है कि ये जो वीकेंड आ गया है, मे बी यू हैव एन इवेंट, तो आपके पास पिंक साड़ी, सो यू कैन ट्राई इट. यहाँ पर जो ज्वेलरी के बारे में हमने आपको बता दिया है, जो सिलेक्शन है वो क्या हो सकता है. और अगर साड़ी हॉट पिंक या मैजेंटा शेड की है, तो आप गोल्ड ज्वेलरी या स्टेटमेंट इयररिंग्स के साथ थोड़ा ग्लैमरस लुक क्रिएट कर सकती हैं. अब बात करते हैं ब्लाउज की. सिंपल लुक चाहिए तो सेम पिंक शेड का ब्लाउज चुनिए. थोड़ा स्टाइलिश और मॉडर्न लुक चाहिए तो लेट्स से वाइट कलर, वाइट, सिल्वर, गोल्डन या कंट्रास्टिंग ब्लाउज जो है आप बिल्कुल ट्राई कर सकती हैं. मेकअप के बारे में कुछ कह दूँ? अच्छा, कह देती हूँ. मेकअप में पिंक साड़ी के साथ सॉफ्ट पिंक लिप्स, हल्का ब्लश और डिफाइंड आईज बहुत खूबसूरत लगता है. लेकिन अगर साड़ी ब्राइट पिंक के है, तो मेकअप को थोड़ा यहाँ पर जेंटल रखें, बेहतर रहेगा. और बालों के लिए, हेयर के लिए सॉफ्ट कर्ल्स, यहाँ पे ट्रेडिशनल गजरा. अगर आपको पसंद है फूल बालों में, तो ये भी आप डाल सकते हो, ऐड कर सकते हो. तीनों ही ऑप्शन शानदार लगेगा. और न्यूड सिल्वर या गोल्डन हील्स के बारे में अगर आप सोच रहे हो, तो बिल्कुल सही आपने सोचा.

0: परफेक्ट कंप्लीट लगेगा न्यूड सिल्वर या गोल्डन हील्स याद रखिए पिंक साड़ी हो कॉन्फिडेंस हो और स्माइल हो फैशन ऑटोमेटिकली ऑन पॉइंट ये था कुछ फैशन टिप्स टू मेक इट मोर इजी एंड टू मेक यू लुक मोर ग्लैमरस ये थे फैशन टिप्स ऑन रेड एम एस सी
1: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.

राइट मूड को बस अपबीट बनाते जाएंगे जब तक रेडियो मिस्टी का साथ है. कीप लिसनिंग, वॉल्यूम अप, स्ट्रेस डाउन एंड लेट गो द म्यूजिक. वी आर हियर टू एंटरटेन यू अप टिल द एंड ऑफ द शो. दिस इज आवर फ्राइडे मैशअप. यहां पर इशारा है कि ठीक 6 बजे हम बढ़ेंगे समाचार बुलेटिन की ओर और इसके बाद मुलाकात बस जारी रहेगी. यस, विल बी मीटिंग अप आफ्टर समाचार बुलेटिन. कुछ और बातें, कुछ और आपके मैसेजेस. हम सनी का साथ है ऑन रेडियो मिस्टी. जहां पर भी आपका साथ है, इट्स ओनली ऑन रेडियो मिस्टी. Stay well connected.

0: समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सुर्खियां। मॉरिशस में तेज हवाओं के चलने और समुद्र में ऊंची लहरों के उठने की चेतावनी जारी है, जो सोमवार को सुबह 10 बजे तक लागू रहेगी। दक्षिण पश्चिम से एक जोरदार एंटीसाइक्लोन मस्करिंस टापुओं की ओर बढ़ रहा है, जिसका असर मौसम पर पड़ रहा है। नेशनल यूथ पार्लियामेंट का 5वां संस्करण आज सुबह राष्ट्रसभा में शुरू हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम, मॉरिशस तथा सेशेल्स की राष्ट्रीय सभा के स्पीकर भी वहां मौजूद थे। आज भाई बहनों का त्यौहार रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार, विश्वास और अपनापन का त्यौहार है। ये त्यौहार हर साल सावन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और विदेश में, नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या आज बढ़कर 538 हो गई है। तिब्बत सीमा पर हिमस्खलन से बनी झील का जलस्तर बढ़ने से फिर से बाढ़ आने का खतरा है। और अब पेश है समाचार विस्तार से। मॉरिशस में तेज हवाओं के चलने और समुद्र में ऊंची लहरों के उठने की चेतावनी जारी है, जो सोमवार को सुबह 10 बजे तक लागू रहेगी। दक्षिण पश्चिम से एक जोरदार एंटीसाइक्लोन मस्करिंस के टापुओं की ओर बढ़ रहा है, जिसका असर मौसम पर पड़ रहा है। मौसम संबंधी जानकारियां बुलेटिन के अंत में दी जाएंगी। नेशनल यूथ पार्लियामेंट का 5वां संस्करण आज सुबह राष्ट्रीय सभा में शुरू हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम, मॉरिशस तथा सेशेल्स की राष्ट्रीय सभा के स्पीकर भी वहां मौजूद थे। दो दिनों के दौरान 76 युवा संसदीय प्रक्रियाओं से परिचित होंगे, ताकि वे लोकतंत्र और सुशासन के सिद्धांतों को बेहतर तरीके से समझ सकें। आज भाई बहनों का त्यौहार रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार, विश्वास और अपनापन का त्यौहार है। ये त्यौहार हर साल सावन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उसके सुखी, स्वस्थ और लंबे जीवन की कामना करती हैं। सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। और अब पेश है ये रिपोर्ट याचना मिश्रा के साथ।
1: हल्दी से रंगा ये पीला धागा, बीच में गेंदा फूल बंधा, कुछ ही पलों में इसे पिरोया गया, लेकिन इसमें छिपा है प्यार अपार। ये राखी याद दिलाती है कि भाई और बहन के बीच का रिश्ता पूरी जिंदगी साथ निभाने के लिए बना है।
2: ये रक्षाबंधन हम पहले से करते थे, रक्षा सूत और गेंदा के फूल उसमें डालते थे। हमारे भाई हमारे लिए बहुत अच्छा भाई है, वो हमको दिखता है सभी बहन को साथ में। हमारा भाई अच्छा है, नुचा दे फ्रेया अविक सिस्से Mélanou n'a une seule frère. Pareil comme à mon grand frère, les séries, pareil. Il gagne beaucoup le temps depuis une décédée. Et tu peux la laisser, tu peux content. Ce bon c'est là.
1: Yaha Maudal Béami, is parivar ki rakhi, bhale hi varshon ke saath badal gayi ho, lekin parivar aaj bhi purane samay ki paramparaon aur riti rivazon ki bhavna ko sanjo kar rakhna chahta hai. Yaha ek dusre se milne julne ka pal hai, लेकिन साथ ही उन अपनों को याद करने का अवसर भी, जो अब उनके बीच नहीं रहे। कुमार के लिए रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं, उनकी बहनों का उनके जीवन में एक खास और अनमोल स्थान है, और ये दिन उनके प्रति अपने प्यार और लगाव को व्यक्त करने का दिन है।
3: एक हजारों में मेरे भैया
4: हमल ये है फितवा एक बड़ा फितवा

0: सैत्यू पुनु हमने के लिए हमने के हिंदू भाई लोग के हमार बहन हमारे बड़ा चीज छोटा से हमके दिखल हमार माँ बाप जब गुजर गएलन तो वो लोग हमार माँ बाप हवन वो लोग के बिना हमार कुछ नहीं सकिला करे हमार सब चीज में आगे रहन।
1: राखी बांधने के बाद बारी आती है भाई की, जो अपनी बहनों को उपहार देता है और इससे ज्यादा आजीवन उनकी रक्षा करने का वादा करता है। एक छोटा धागा जो परिवार के इस मजबूत रिश्ते को और भी गहरे बंधन में बांधता है।
2: रक्षाबंधन भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र त्योहारों में से एक है। इस त्योहार से जुड़ी कई प्रसिद्ध कथाएं हैं, लेकिन सबसे लोकप्रिय कथा भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की मानी जाती है।
3: प्रचलित मान्यताओं के अनुसार शिशुपाल वध के समय भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई और रक्त बहने लगा। ये देखकर द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया और रक्त बहना रोकने का प्रयास किया। द्रौपदी के इस निस्वार्थ स्नेह से श्री कृष्ण बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि संकट की घड़ी में वे उनकी रक्षा करेंगे। बाद में कौरवों की सभा में जब द्रौपदी का अपमान करने और उनका चीरहरण करने का प्रयास हुआ, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। परंपरा के अनुसार श्री कृष्ण की कृपा से उनका वस्त्र बढ़ता गया और उनकी मर्यादा की रक्षा हुई।
4: ये एक दिन रक्षाबंधन का जब आता है ना, तो ये दिन हमें याद दिलाती है कि कोई ना कोई कभी ना कभी तो बहन हमारे लिए कुछ अच्छा किया हो, कभी ना कभी तो भाई ने बहन के लिए कुछ अच्छा किया हो। तो उन सब छोटी छोटी बातों टूटी फूटी को छोड़ो और आगे बढ़ो, भाई चारा रखो और भाई बहन में ये नाता ये प्यार हमेशा, क्योंकि ये तो अटूट बंधन है, अटूट बंधन है। लड़ाई झगड़ा करने से ये बंधन टूटने वाला नहीं है, ठीक है, ये अटूट बंधन है। तो हमें अपने जो अहंकार है, उस अहंकार के जैसे कि राजा बलि को अहंकार था, तो उसी तरह से हमें अपने अहंकार को नीचा करके हमेशा अपना कर इस नाते को, इस भाई बहन के नाते को और भी बढ़ावा देनी चाहिए।
3: श्री कृष्ण और द्रौपदी का ये प्रसंग रक्षाबंधन की गहरी संदेश को सामने लाता है। ये पर्व केवल भाई और बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं है, ये प्रेम, विश्वास, सम्मान और संकट के समय एक दूसरे के साथ खड़े रहने के संकल्प का प्रतीक है। इसलिए ये पर्व आज भी भारत में और प्रवासी भारतीयों के बीच प्रेम और विश्वास के उत्सव के रूप में मनाया जाता है।
2: और जैसा कि हमने पहले कहा था, नेशनल यूथ पार्लियामेंट का 5वां संस्करण आज सुबह राष्ट्रीय सभा में शुरू हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम, मॉरिशस तथा सेशेल्स की राष्ट्रीय सभा के स्पीकर भी मौजूद थे। दो दिनों के दौरान 76 युवा संसदीय प्रक्रियाओं से परिचित होंगे ताकि वे लोकतंत्र और सुशासन के सिद्धांतों को बेहतर तरीके से समझ सकें। नेशनल यूथ पार्लियामेंट युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करने का मंच देता है, साथ ही उन्हें अपने विचार प्रभावी ढंग से रखने और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का अवसर भी मिलता है। आज सुबह प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन का मुख्य मुद्दा मॉरिशस के युवा स्नातकों का विदेश जाना और प्रतिभाओं का के देश से बाहर जाने की समस्या थी। इनमें प्रतिभाओं को देश में बनाए रखने और युवाओं की शैक्षणिक योग्यता तथा उद्योग की जरूरतों के बीच के अंतर को कम करने के उपायों पर भी चर्चा की गई। युवा प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने उनसे कहा कि जीवन में वे जो भी काम करने का फैसला करें, उसे दृढ़ विश्वास, साहस और इच्छा शक्ति के साथ पूरा करने की कोशिश करें। ज्यादा जानकारी रजनी बिकर के साथ।
5: नेशनल यूथ पार्लियामेंट के 5वें संस्करण का उद्घाटन सत्र निर्वाचित सदस्यों की शपथ ग्रहण के साथ। इसके उपरांत स्पीकर तथा डिप्टी स्पीकर का चयन हुआ।
6: While this assembly will inevitably witness fierce clashes of ideas, let us consistently elevate our debate and uphold the true nobility of our democracy.
5: सभा के नियमों का पालन करने की मांग की गई। जिसके बाद सत्र आरंभ हुआ सबसे अहम चरण के साथ
6: लीडर ऑफ द अपोजिशन योर प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन
5: चर्चा का विषय डिग्री प्राप्त करने वाले नौजवानों में कईयों के विदेश चले जाने का विषय नेशनल यूथ पार्लियामेंट के विपक्ष नेता ने कहा
7: 70% of graduates who go abroad to study do not return. It also identifies the gap between tertiary education and the job market as a root cause of brain drain.
8: The minister has stated that l'air n'est pas plus vert ailleurs. Mais la vraie question, Monsieur le Président, est-ce que le gouvernement prend réellement soin de l'air qui est dans son pays?
7: Education must align with labor market needs. Employment policies must facilitate the transition into work. Economic policies must create high-value opportunities. Research and innovation policies must allow talent to progress. And diaspora policies must keep our Mauritian expertise connected to the country.
5: अपने जवाब में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और उच्च शिक्षा मंत्री ने सामाजिक और आर्थिक चुनौती से निपटने से संबंधित विषय पर बात की. पीएनक्यू के बाद सिंथेटिक ड्रग्स, सामाजिक वार्ता, मॉरिशन समुद्री क्षेत्र में गैर कानूनी रूप से मछली पकड़े जाने से जुड़े आदान प्रदान के कार्यक्रम भी PMQT Prime Minister's Question Time कार्यसूची में शामिल.
9: The proliferation of synthetic drug is a national emergency that strikes at the heart of our republic, our youth. Monsieur le Président, se relever de l'addiction aux drogues synthétiques est un parcours éprouvant et douloureux. C'est un combat de tous les jours pour ces jeunes et leurs familles, une épreuve qui déchire le tissu social de notre pays. À travers ces initiatives, nous veillons à ce que nos ressources financières soient à la hauteur de cette crise nationale. L'avenir de notre jeunesse n'a pas de prix et notre engagement financier reflète cette conviction absolue.
5: नौजवानों की संसद के इस पांचवें संस्करण की बदौलत 76 प्रतिभागियों को संसदीय प्रक्रियाओं से परिचित होने का अवसर मिला ताकि वे लोकतंत्र और प्रशासन के सिद्धांतों को बेहतर रूप से समझ सके.
10: You will be stepping into our shoes in order to capture the essence of parliamentary democracy. You will do so in the presence of your parents or next of kin, who have surely encouraged you to do everything which favors your overall development. Here, you will have been trained to speak and defend your ideas with respect for your opponents of the day.
11: I dare say that this youth parliament is a manifestation of cross-generational efforts where those who have done the work are providing a clear pathway for those who wish for the chance to continue in their footsteps.
5: दोपहर बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और खाद्य सुरक्षा से संबंधित दो मोशंस पर बहस चली.
2: आज 28 अगस्त को संस्कृत दिवस मनाया जा रहा है. संस्कृति को देवों की वाणी कहा जाता है. इसी भाषा में हमारे शास्त्र लिखे गए हैं. एक ऐसी भाषा जो समय के साथ अब कम ही लोग बोल पाते हैं लेकिन समझते उससे कई ज़्यादा लोग हैं. मॉरिशस में विश्वविद्यालय के स्तर पर भी संस्कृत पढ़ाई जाती है लेकिन कुछ ऐसी छोटी संस्थाएँ भी हैं जहाँ छोटे बड़े सभी एकत्र होकर सरल तरीके से संस्कृत सीख पा रहे हैं. देश की पहाड़ियों में लालोहा गांव में ऐसी ही एक संस्था है, सुलभ संस्कृत संस्थान. याचना मिश्रा की रिपोर्ट.
12: न कोई कापी, न पुस्तक और न ही कलम. यहाँ सीखने का तरीका अलग है लेकिन उतना ही प्रभावी. खेल के माध्यम से बच्चे संस्कृत में गिनती सीख रहे हैं. ये विचार यहाँ के आचार्य और उनकी पत्नी को कोविड-19 संकट के दौरान आया जब सभी घर पर रहने को विवश थे.
13: जब कोविड की बातें होने लगी थी, लॉकडाउन लगने की बात हो रही थी, तो हर कोई व्यक्ति अपनी तरह से समाज की और देश की सेवा करता है. तो मेरे पास भाषा थी तो मैंने कहा भाषा की मदद से मैं समाज के कुछ काम आऊँ तो मेरे लिए अच्छा रहेगा. तभी मैंने संस्कृत क्लासेस ऑनलाइन शुरू की थी. समाज में कितनी सारी बुराइयां फैल रही हैं, बच्चों के लिए कितनी मुश्किल है, तो बच्चों को एक कम्युनिटी दी जाए, एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी जिसमें वो आपस में एक दूसरे से शेयर कर सकें और अच्छी बातें एक दूसरे से रहे, एक अच्छी संगत रहे. जैसे कहते हैं ना सत्संग, तो वो जब यहाँ आते हैं तो उनका सत्संग होता है.
14: Moi des garçons qui join classe, j'ai commencé suivre classe et en même temps moi aussi me dire que je me pas joindre ensemble avec eux pour moi aussi me comprendre.
12: संकट की समाप्ति पर

0: पर उन्होंने ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखी और लालोहा के मंदिर में ही बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती, लेकिन सुनकर वे सीख पा रहे हैं।
1: C'est pas le sanskrit, c'est nos cultures, c'est nos heritage, nos mains ancêtres, nos mains grandes immunes. Le sanskrit, ce qui est difficile avec lui, c'est qu'il lit bien, surtout pour moi, il lit bien based le hindi. Alors pour moi, à cause de mon pénal à base de hindi, là, je me trouve plus challenging. Mais ce qui me trouve plus rewarding, qui challenging, c'est quand finalement, je peux comprendre mon monde, je sais ce qu'il peut dire.
2: Hindi, or sanskrit.
3: संस्कृत में हम संस्कृति भाषा बोलते हैं और हम मंत्र सीखते हैं।
4: संस्कृति देख मैं बुकू हवन भजन मंत्र मैं अपन बुकू जो डिसिप्लिन का मैं अपन संस्कृत।
5: अब लोग मंत्र पढ़ते हैं बस ना, आपको समझ ही नहीं आता आप उसके पीछे क्या बोल रहे हो। थोड़ी बार आ सकता है आप घर पे जा रहे हो, आप एक मंत्र पढ़ रहे हो, बस हो सकता है आपको उसका मीनिंग नहीं पता, आप उसको ऐसे ही बोल रहे हो बस। तो आप संस्कृत सीख लिया आपने और संस्कृत पढ़ने लग गए आप मंत्र बोलोगे आप उसको ज़्यादा अच्छे से प्रोसेस कर पाओगे। आप क्या बोल रहे हैं आप सच, हाँ मैं ये बोल रही हूँ भगवान ऐसे कुछ, आप ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट फील करेंगे।
6: मैं संस्कृत इसलिए सीख रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी संस्कृति और परंपराओं को और गहरे से समझना चाहता हूँ।
0: मंत्रों का उच्चारण और उनका अर्थ जानने के साथ साथ बच्चे अपने धर्म और अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहने के लिए भी संस्कृत सीख रहे हैं। भारत की ऐसी भाषा जो सदियों पुरानी है लेकिन अभी भी अत्यधिक महत्व रखती है।
7: वर्ल्ड नीड्स में तनाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। हालांकि कामकाज आंशिक रूप से फिर से शुरू हो गया है लेकिन कई मजदूर अभी भी तकनीकी बेरोजगारी के कारण काम से बाहर हैं और वेतन मिलने में लगातार देरी हो रही है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि देरी कम करने और स्थिति में सुधार लाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। करुणा लालू।
8: कई महीनों से वर्ल्ड नीड्स के कर्मचारी रोजाना अनिश्चितता में जी रहे हैं। वित्तीय संकट के शुरुआती संकेत जनवरी से ही सामने आने लगे थे, तब से स्थिति लगातार बिगड़ती गई।
9: Chaque fin du mois, ben travailler très souvent, ils trouvent sans la paye. Aller qui m'ont payé ça ou beau courant, qu'ils escalèrent ben travailler quand qu'on gagne la paye de juillet. Et aussi, nous n'arrivons presque la fin du mois d'août. Nous pas connaît qui pour la situation de Banzo qui peut venir.
8: दो जून को कंपनी को रिसीवरशिप के अधीन रखे जाने के बाद से कर्मचारियों के वेतन में देरी जारी है। हालांकि जब तक कंपनी प्रशासन के अधीन है कर्मचारियों के अधिकारों का सम्मान किया जाना जरूरी है।
10: Un travailleur, quand il travaille, il est supposé gagner sur la paye d'après la loi. Le ministère a un supervising ben, officier qui est délégué à supervising officer. Vous êtes capable de prendre une requête de ce staff-là. Et là, je channelle vers l'administration pour lui, vous êtes faire cette bonne procédure qu'il a à faire. Mais pas ça veut dire qu'il quand l'accompagnant en administration, c'est-à-dire travailler, qui peut faire ce travail, il n'est pas gagné sur la paye.
8: प्रशासक राजीव बसगीत ने कहा, हमने स्थिति को सामान्य करने के लिए हर संभव प्रयास किया क्योंकि कपड़ा उद्योग उन क्षेत्रों में से एक है जो उत्पादकता में सबसे अधिक योगदान देता है और देश में विदेशी मुद्रा भी लाता है। बैंकों के सहयोग से फरवरी से बंदरगाह पर फंसे कच्चे माल को आखिरकार हासिल किया जा सका। ऑर्डर पूरे करने के लिए कुछ मशीनों को दोबारा चालू किया गया जिससे निर्यात गतिविधियां भी फिर से शुरू हो सकें। कर्मचारियों के वेतन के भुगतान पर खास ध्यान दिया गया है। इसमें वेतन की कुछ ऐसी बकाया राशि भी शामिल हैं जो कंपनी को प्रशासन के अधीन रखे जाने से पहले की थी। जुलाई महीने के वेतन का भुगतान फिलहाल अंतिम चरण में है। इसका भुगतान निर्यात से होने वाली आय पर निर्भर है।

और विदेशी खबरों में नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या आज बढ़कर 538 हो गई है। तिब्बत सीमा पर हिमस्खलन से बनी झील का जल स्तर बढ़ने से फिर से बाढ़ आने का खतरा है, इसलिए सावधानी के साथ खोज और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। नेपाल पुलिस ने एक बयान में कहा है कि अब तक 8 जिलों से शव बरामद किए गए हैं। ज्यादा जानकारियां सुमेरा अकबर अली के साथ।

0: हिमालय की छाओ में प्रकृति की गोद में नेपाल का ये दर्दनाक हादसा कुदरत का ही किया कराया है, जो पहले किसी दूसरे देश ने देखा ना जाना है। सब कुछ बह गया, समुद्र की सतह से 5000 मीटर ऊंची बर्फीला चट्टान नष्ट हुआ। अचानक सैलाब उतर आया और बम जैसा लगा। दूर से नदी छोटी लग रही थी, लेकिन देखते देखते अचानक वो उमर आई और सब कुछ अपनी चपेट में ले गई। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, बचाव और खोज कार्रवाइयां की जा रही हैं। जमीनी और हवाई मिशन को सक्रिय कर दिया गया है। प्रभावितों को खाद्य चीजें और दवाएं दी जा रही हैं। काठमांडू से अतिरिक्त 40 हेलीकॉप्टरों को सहायता के लिए भेजा गया। नेपाल की सेना पूरी कार्रवाई का संचालन कर रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट की सिफारिशों के मद्देनजर एक जलजले से बर्फीला चट्टान गिर गया होगा, लेकिन अमेरिका की जियोलॉजिकल सेवाओं ने कहा कि वादियों में चट्टानों के गिरने से ये घटना पेश आई। माहिरों के मुताबिक त्रिशूरी नदी में सिर्फ आधे घंटे में पानी का सतह 9 मीटर से बढ़ा। जियोलॉजिस्ट डॉक्टर साइमन कॉक्स बताते हैं, आपदा की तह तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। असल में क्या हुआ होगा और कैसे, एक बात स्पष्ट है कि 5200 मीटर वाला बर्फीला चट्टान वादी में 1200 मीटर की गहराई में गिरा। एक बड़ा मलबा बनकर वो पानी में गिर गया और बांध तक पहुंचा, जो उसके टूटने की वजह बन गया। नेपाल में सैकड़ों पर्यटक मृतकों और गुमशुदा लोगों में शामिल। भारत ने चेतावनी जारी कर ली है क्योंकि बिहार यूपी सरहद के पास वाले इलाकों में खतरे हैं। सन 2011 से नेपाल की ये बाढ़ सबसे जानलेवा रही है, बावजूद ये कि लगातार गंभीर कुदरती आफात पेश आती रही हैं। नेपाल की इस आफत के चलते कई देश मदद का हाथ आगे कर रहे हैं। यूरोपीय संघ भी सहायता पहुंचा रहा है। रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट संगठनों ने एक बयान में कहा कि वो $1.24 मिलियन का दान दे रहे हैं। फूड पैकेट्स वाज हैंडेड ओवर टू महावीर।
1: और बुलेटिन के अंत में पेश है मौसम संबंधी जानकारियां याचना मिश्रा के साथ।
2: मॉरिशस में ऊंची लहरों और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है, जो सोमवार 31 अगस्त सुबह 10 बजे तक बरकरार रहेगी। इसके अलावा एक जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर तेज और ठंडी हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, ऊंचे इलाकों पर और हवाई ढलानों पर बादल घिरे रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। तेज हवाओं के कारण यहां वहां उड़ती चीजों से बचने, ऊंचाई वाले इलाकों में ज्यादा सावधानी बरतने और खासकर सड़कों पर क्रॉसविंड्स के कारण सतर्क रहने की मांग की जाती है। समंदर में 4 से 6 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दक्षिणी और पश्चिमी समंदर में लहरें तटों तक पहुंच सकती हैं। दूर समंदर में और खासकर लगूनों में भी न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 13 से 15, अधिकतम 17 से 20, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 16 से 18, अधिकतम 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 6:21 पर, शाम को सूर्यास्त 6 बजे होगा।

0: और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन पूरा हुआ। इसे आप तक पहुंचाने में हमें लिडोविक का सहयोग मिला है, उन्हें धन्यवाद देते हैं। आपको भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कुछ ही देर में शोक समाचार सुन सकेंगे। जेबिया रोड रोजबेल में 79 साल की 79-year-old की मिसेस बीबी नाजमुन मुरली, पैदाइश नाम गिरधारी और जो नाजमुन से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज रात 9:30 बजे उनके बेटे इमरान मुरली के घर जेबिया रोड रोजबेल से उठाकर यूनियन पार्क का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 9:30 PM। अंकरे का तो बिस्नाट लेन ओकुले में 71 साल के 71-year-old के श्री पदुमन लुलजाविया, जो सुरेश से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल सुबह 9 बजे उनकी पत्नी बीना लालजाविया के घर अंकरे का तो बिस्नाट लेन ओकुले से उठाकर सुल्फेरिनो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुमरो एट 9 AM। बॉशेरी मुका में 77 साल की 77-year-old की श्रीमती विद्यावती रामा, पैदाइश नाम अंगत सामी और जो विवेक से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 2 बजे उनके घर बॉशेरी मुका से उठाकर अलीब्रियों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 2 PM। रॉयल रोड बोबासे में 76 साल की 76-year-old की श्रीमती बिडवंती सोवाम्बे, पैदाइश नाम रामदूस और जो पहले नंबर 11 रुई सेंट जेम्स पोर्टविस रहती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 10 बजे एलियनसंस रॉयल रोड बोबासे से उठाकर शेबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 10 AM। अस्तोरिया रोड गुडलैंड्स में 95 साल के 95-year-old की श्री हरिलाल कौलिसा, जो पानी से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 1 बजे उनकी पत्नी सती कौलिसा के घर अस्तोरिया रोड गुडलैंड्स से उठाकर बाघोश गुडलैंड्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 1 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: RM2 Radio Musti.
2: Saveur marine, tuna en cube 400 grammes à 159 roupies. Rosanna tomate entier de l'Italie 400 grammes à 30 roupies 50. Melbourne cheddar cheese 250 grammes à 74 roupies 80.

0: Friday Mashup.
1: RM2, Radio Musty.
2: It's a Radio Musty और आपके साथ हंसनी and we are already in the third hour. ये म्यूजिकल शो चल रहा है, इट्स फ्राइडे मैशअप और इस राइड में हम लेकर आए हैं गुड वाइब्स, ग्रेट सॉन्ग्स और थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी नहीं लेकिन हम तो कहेंगे थोड़ी से लेकर बहुत ज़्यादा मस्ती तो हो रही है. रेडियो को अपना हम सफर है तो बना लीजिए. अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक सिंपल मेलोडी भी मूड को इंस्टेंटली चेंज कर देती है. अगर आपके फेस पे अभी स्माइल आ गई है तो समझ लीजिए कि हमारी जो हैप्पी म्यूजिकल राइड है वो सही डायरेक्शन में जा रही है. सभी का वेलकम इन फ्राइडे मैशअप. रियली होप कि सब ठीक है, आराम से इत्मीनान से आप घर पहुँच गए होंगे. जितने भी लोग सफर में थे, ट्रैफिक में फंसे हुए थे, दैट वॉज टू मेंटेन पेशेंस एंड टू गेट बैक होम सेफली, तो गुड न्यूज इज कि आप सही सलामत घर पहुंच गए हैं. दैट्स नाइस. सभी का प्लान्स, आपने सोचा है घर पर कुछ टाइम बिताना है, परिवार के साथ कुछ वक्त बिताकर, लेट्स मेक इट अ क्वालिटी वाला टाइम, या फिर आपने सोचा है इट्स सिंपल लाइक टू बी स्ट्रेस फ्री. हफ्ते भर के लिए कितना सारा काम हो गया है, राइट? अभी के लिए टेक अ ब्रेक, जरूरी है टू टेक अ ब्रेक कभी कभार. और आपने सोचा है आज तो एक गेट टुगेदर हो जाए, Why not फ्रेंड्स के साथ घूमने जाए, परिवार के साथ घूमने जाए. इट्स फ्राइडे टाइम. वैसे आज तो डबल सेलिब्रेशंस तो है ही. वी आर सेलिब्रेटिंग रक्षाबंधन और

और अगर जन्मदिन भी आपका है सो इट्स लाइक डबल सेलिब्रेशंस राइट. तो रक्षाबंधन की बहुत सारी बधाइयां हैं जितने भी हमारे भाई बहन इस समय जुड़े हुए हैं, सभी का दिल से वेलकम है. ये जो खुशी का माहौल है बस उनको मेंटेन पर करने के लिए पूरी कोशिश हम करते रहेंगे. स्टे ट्यून्ड ऑन रेडियो मस्ती, दिस इज आवर फ्राइडे मशअप.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: Friday Mashup.
1: RM2, Radio Musti.
2: यहाँ पे फ्राइडे टाइम है माय लवली पीपल और फाइनली वी हैव टू से स्ट्रेस को बोलो बाय एंड हैप्पीनेस को बोलो वेलकम. आज का दिन स्माइल्स म्यूजिक और पॉजिटिव वाइब्स से ही फुल होना चाहिए और काम चाहे कितना भी हो फ्राइडे की फीलिंग सब कुछ एकदम मैनेजेबल बना देती है. सो हैव अ फैंटास्टिक टाइम अहेड और यहाँ पर टाइम हो चला है टू हैव सम डेडिकेशंस नाउ. नमस्ते हंसनी, कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ. थैंक यू सो मच फॉर द मैसेज जो आप आई हो टू विश ऑल द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैप्पी रक्षाबंधन. बहुत सारी मंगल कामनाएं हैं और खासतौर पे उन लोगों के लिए एक स्पेशल थॉट जो इस साल कुछ रीजंस के लिए नहीं मनाएंगे रक्षाबंधन. तो उन सब के लिए हम लेकर आए हैं जो सेलिब्रेट कर रहे हैं गुड विशेस ऑलवेज. जो भाई बहन के बीच में मिठास है, जो बंधन है, वो ऐसे ही यू नो और भी गहरा हो जाए.

दिन ब दिन यही हमारी शुभकामनाएं हैं. थैंक यू नेहा फॉर शेयरिंग ऑल योर लव. दैट्स सो नाइस ऑफ यू. नेहा लक्ष्मण का साथ है फ्रॉम रेपा सेम्बिया. जो आई हो टू शेयर सो मच ऑफ लव. सो दिल से आपको थैंक यू. यहाँ पर गाना है आपके पति विमल के लिए.

0: जो गुस्सा है उनको छोड़ दीजिए एंड कम ऑन जस्ट गिव अ क्यूट स्माइल बैक. और विमल जी तो जा रही है. ओके सो यहाँ पर गाना एकदम झकास हो जाएगा आप दोनों के लिए टू गेट बैक टू द ट्रैक. और साथ में है आपकी लवली एंजल, उनको हम कैसे बोल सकते हैं जी. तो उनके लिए बिल्कुल एक गाना तो बनता है आपके लिए एंड फॉर ऑल योर ब्रदर्स, बहनों के लिए भी गाना हम लेकर आए हैं टू विश एवरीवन हैप्पी रक्षाबंधन. एंड वी हैव इट फॉर वीना जो कि सौ के लिए फ्रॉम बेलवी मोबाइल. हेलो जी, आपका वेलकम है. दोनों भाइयों के लिए गाना और हमेशा वो दोनों खुश रहे यही हमारी शुभकामनाएं भी तो है आपके लिए. लीनू का साथ फ्रॉम फिकम फ्लैग. हेलो लीनू, वेलकम टू द शो. और मेरे भाई के लिए जो है नंदन, प्लीज प्ले अ ट्रैक फॉर हिम. और हैप्पी रक्षाबंधन टू योर ब्रदर. और आपकी बहना के लिए जो कनाडा में है, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव टू यू. और आप भी बस प्यार को पहुंचा रही हो रेजो मस्ती द्वारा. थैंक यू फॉर बीइंग साथ साथ. और हंसनी और पूरी टीम आए हैं टू विश यू हैप्पी रक्षाबंधन.
1: रक्षाबंधन
2: चाहे फासले कितने भी बढ़ जाए, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती. रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाए. MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं. हैप्पी रक्षाबंधन. हैप्पी रक्षाबंधन.
3: मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना.
4: RM2 Radio Musty in the mix. Radio.

0: सीख ले
1: फिल्मी जैम
2: OMG रेडियो मस्ती
3: लर्निंग नेवर स्टॉप्स. इसीलिए तो कहते हैं ना कि जो सीख होती है वो जिंदगी की बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड एजुकेशन एंड लर्निंग स्टार्ट्स इन द वोम्ब. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये रियलाइज करें कि लाइफ में वी नेवर स्टॉप लर्निंग. और हम तो सीख ही रहे हैं भाई. अभी थोड़ा सा सीख लो कि सच में जिंदगी दो पल की है और इस दो पल की जिंदगी को आपको बहुत ही आराम से काटना है और बहुत ही प्यार से काटना है. तो चलिए एंड हम यही चाहते हैं कि आप जीना सीख लें. और आज तो बस खुली बाहों के साथ अपने इस फ्राइडे इवनिंग को वेलकम कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए जी भर के. जिंदगी इसी का नाम है जहां पर आप हैप्पी मोमेंट का इंतजार करते हैं. लेकिन जिंदगी इसी का भी नाम है जहां पर आप मोमेंट को हैप्पी बनाते हैं रादर दैन वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट. तो चलिए उम्मीद करते हैं कि इस वक्त यू विल बी हैविंग द बेस्ट ऑफ मोमेंट्स विद RM2 रेडियो मस्ती. एंड साथ में रक्षाबंधन भी सेलिब्रेट किया जा रहा है. तो तमाम भाई बहनों को बेस्ट विशेस फ्रॉम RM2 रेडियो. एंड चलिए दिव्या का साथ है अभी से लेकर रात्रि के 9 बजे तक नॉनस्टॉप ऐसे ही धमाकेदार गाने चलाते रहेंगे आप लोगों के लिए. व्हाट्स हैपनिंग ऑन योर साइड ऑफ कोर्स जानना चाहते हैं ऑन 5499 1294. ऐसी बात नहीं है कि आज फ्राइडे है और आप बिल्कुल हमें याद नहीं करेंगे. आई नो कि रश वाला टाइम है और मैं मोका साइड आ रही थी तो मैंने नोटिस किया कि रास्ते पे इतनी सारी गाड़ियां निकल चुकी थी. ओ माय गॉड, वेदर डायरेक्शन में तो रुक रुक कर गाड़ियां चल रही हैं और पोटली साइड में भी. बट पोटली साइड गाड़ियां आराम से चल रही हैं बट बहुत बहुत सारी गाड़ियां निकल चुके हैं. शायद कोई मॉल जा रहा है, कोई काम से घर वापस जा रहा है. आपका इवनिंग कैसे आप स्पेंड कर रही है डू लेट अस नो. डोंट फॉरगेट द मैजिकल नंबर इज 5499 1294.
1: फिल्मी जैम
2: RM2 रेडियो मस्ती.

0: Welcome to RM2 Radio Masti.
1: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: Still me, Jam.
1: OMG, Radio Musti.
2: भाई हलकट जवानी नहीं भाई, क्योंकि कहते हैं ना कि जो आकर तुरंत ही चला जाए वो है जवानी. इसीलिए बस जितना हो सके इसका पूरा पूरा फ़ायदा आपको उठाना है. एंड ज़िंदगी में जब तक आप जवान हैं तब तक आप बहुत कुछ कर सकते हैं. इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि योर प्रेजेंट मोमेंट इज़ द बेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन एवर एवर हैव. और जो है वो आज है और हम आपके आज को बस एनहांस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कुछ खूबसूरत गीतों के साथ. ऑफ कोर्स आज फ्राइडे इवनिंग है और लेक्चर सुनने की कोई मूड में नहीं है, हम जानते हैं. लेकिन बस कभी कभी बात करते करते लाइफ की जो सीख है हमारे सामने एकदम से आ जाता है और हम सोचते हैं कि लेट्स शेयर दिस थॉट विद यू. एंड ऑफ कोर्स आज फ्राइडे

0: इवनिंग है, अगर आप लोग पार्टी कर रहे हैं या फिर आपको लगता है कि बस थोड़ा शांत वाला माहौल आपको चाहिए, वीक डेज में आपने इतना काम कर लिया है कि बस सैटरडे संडे को आपको बस घर पे रहना है और अपने कंफर्ट जोन में रहना है, सो ये भी अच्छी बात है. टू दोज ऑल दोज जो निकल चुके हैं पार्टी करने के लिए, प्लीज ड्राइव सेफ एंड केयरफुली. एंड हर फ्राइडे की तरह आज भी हम आपसे कहेंगे, इफ़ यू नो यू आर गोइंग टू पार्टी एंड आप ड्रिंक करने वाले हैं, सो प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव. सो चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ. यस यस, आई एम डेफिनेटली रिसीविंग योर मैसेजेस और आपके मैसेजेस एकदम मेरी आंखों के सामने हैं, तो ये ना समझिए कि हम आपको इग्नोर कर रहे हैं, ये तो हमारी मजाल है कि हम आपको इग्नोर करें. आपसे ही तो ये शो चलता है और आप हैं तो हम हैं. दिल से आपको शुक्रिया. दिव्या का साथ इन योर फिल्मी जाम टिल 9 PM. तो चलिए कुछ और आपके मैसेजेस को हम वेलकम करेंगे एंड इसके बाद विल बी हेडिंग टवर्ड्स द डेडिकेशन सेगमेंट. सो डोंट फॉरगेट, द नंबर इज 5499 1294.
1: Filmy Jam. RM2 Radio Musti.

RM2 Radio Musty in the mix. Radio.

0: सैया
1: फिल्मी जाम
2: OMG रेडियो मस्ती
3: ऑलराइट 7:37 चलिए बढ़ते हैं आपके कुछ मैसेजेस की ओर एंड अगर आपके मन में भी इमोशन जाग रहे हैं तो आपके इमोशन को ज़रूर और भी बढ़ावा देंगे एंड आज है रक्षाबंधन तो बेस्ट विशेस टू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु सेलिब्रेटिंग दिस ऑस्पिशियस एंड वेरी प्योर इवेंट एंड चलिए साथ में यहाँ पर किसी ने हमें मैसेज किया है हेलो नमस्ते गुड इवनिंग दिव्या जी गुड इवनिंग टीना जी हाउ आर यू मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ एंड एन्जॉयिंग द शो विद ऑल योर बिलव्ड brothers and sisters including hame aap wish kar rahi hain happy raksha bandhan thank you so much next gana goes out specially for you as well and aapko bhi shubh ratri and चलिए यहाँ पर नेक्स्ट गाना हम दरिकेज करेंगे आपके नाम कहती है नमस्ते हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ब्रदर्स स्पेशली फॉर माय लवली ब्रदर संदीप शैलेश बगन एंड साथ में आपके बड़े भैया हैं मनोज किरोधर हु इज वर्किंग फ्रॉम सुया बिहारी एंड अनिता बिमल ऑफ कुंगमा थैंक यू वेरी मच क्या है ना कि रक्षाबंधन में कैसे तैसे करके हम वक्त निकाल लेते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि ये जो धागा होता है वो किसी चीज़ से भी बहुत बहुत ही परे है एंड इट्स रियली वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो हम क्या करते हैं रक्षाबंधन के टाइम पे जब हमें पता होता है कि हम काम करने वाले हैं तो बहन या भाई को फ़ोन करके कैसे करके हम टाइम को एडजस्ट करते हैं मिलते हैं राखी बांधते हैं आपस में गिफ्ट देते हैं प्यार बांटते हैं तो हम सोचते हैं कि बस ये एक ही दिन होना चाहिए बट इट्स सो रॉन्ग क्योंकि ये 365 डेज को भी होना चाहिए बहन को हमेशा भाई के बारे में पूछना चाहिए और भाई बहन के बारे में हमेशा पूछते रहना चाहिए यही है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ना कि बस साल में एक बार आप एक दूसरे को याद करें हर एक ओकेजन बहुत ही स्पेशल होता है ऑफ कोर्स लेकिन इट बिकम्स इवन मोर स्पेशल जब आप इसको रोज रोज सेलिब्रेट करते हैं तो चलिए जिस तरीके से आज आपने वक्त निकाला है आप बाकी दिनों को भी वक्त निकालिए आपस में मिलिए और प्यार बांटते रहिए सो चलिए साथ में यहां पर अगला गाना उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त कनेक्टेड है रेडियो मस्ती के साथ जहां पर दिव्या का साथ है न्यू फिल्मी जाम टिल 9 PM सो ऐसे ही साथ देते रहिएगा एंड ऑफकोर्स अगर आपको लगता है कि फ्राइडे इवनिंग को आप बस नए गानों के साथ वाइब कर सकते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं क्योंकि 90s गीतों के साथ भी फ्राइडे इवनिंग को एकदम से फील कर सकते हैं
1: फिल्मी जाम
2: OMG रेडियो मस्ती

0: फिल्मी जैम
1: OMG रेडियो मस्ती।
2: क्या बात है, क्या बात है। एंड ऐसे ही गाने आपको हम सुनाते रहेंगे एंड आई जस्ट होप दैट यू हैविंग अ ग्रेट ग्रेट टाइम लिसनिंग टू दिस वंडरफुल गाने और इन खूबसूरत गीतों के साथ आपके मूड को और भी फ्रेश बनाना है और यू ऑल सेट टू स्टेप इन द वीकेंड मोड। और हम चाहते हैं कि वीकेंड मोड के साथ साथ आप इस फ्राइडे इवनिंग को भी बबाई कहे एक खूबसूरत स्माइल के साथ एंड विद गुड वाइब्स। तो चलिए यहाँ पर आप कहते हैं नमस्ते, आई वॉन्ट टू डेडिकेट द नेक्स्ट गाना टू माई ब्रदर्स रंजीत, राजेश, आतिश, इंद्रजीत एंड रामलगन फैमिली के लिए फ्रॉम वीमा साधना एंड सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू सो मच। हाई वॉन्ट टू डेडिकेट द नेक्स्ट गाना टू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हैप्पी रक्षाबंधन। आपने ना ही अपना नाम लिखा है ना ही अपने भाई या फिर बहनों के नाम लिखा है, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच आपके इन मैसेजेस के लिए। कीप सेंडिंग योर मैजिकल मैसेजेस ऑन मैजिकल नंबर दैट इज 5499 1294 एंड ये शो हम इसको जारी रखेंगे 9 PM, so you have plenty of time कि आप हमें याद करें और हम आपके messages को पढ़ें।
0: Filmy Jam
1: RM2 Radio Musti।

0: फिल्मी जाम
1: OMG रेडियो मस्ती
2: क्या बात है नाच मेरी जा हो कि मगन तू छोर के किंतु परंतु बिल्कुल लाज तो ऐसा ही समा है नो इफ्स एंड बट्स एंड बिल्कुल भी कोई एक्सक्यूजेस नहीं चलने वाले हैं हम तो चाहते हैं कि आप इस फ्राइडे इवनिंग को जी भर के एंजॉय कीजिए क्योंकि हमेशा हमेशा मुझे लगता है कि वीकडेज के दौरान द मोस्ट एंड द मच अवेटेड डे हमेशा फ्राइडे ही होता है और जब ये फ्राइडे आता है ना तो ऑटोमेटिकली होंठों पे हंसी आ ही जाती है एंड आई कैन रिलेट कि आज रक्षाबंधन है और बहुत सारे लोगों ने इस त्यौहार को मनाया और साथ में मे बी आपने कुछ प्लान किया होगा फैमिली के साथ कुछ गेट टुगेदर भाई देखिए कल सैटरडे भी है और बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स शायद काम पर भी नहीं जाने वाले हैं तो अचानक से किसी के यहाँ ठहरने का प्लान बन चुका है एंड ये हुई ना बात हम तो यही चाहते हैं कि आप आपस में फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहे एंड साथ में पीछे भगवान में हमारी आवाज़ गूंजती रहे इस बॉन्ड को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और साथ में कुछ और खूबसूरत गीतों को आपको सुनाने के लिए ताकि आपका ये फ्राइडे इवनिंग अच्छे से आप स्पेंड कर पाएं वेल 8:06 हो चुके हैं ऑलरेडी फ्राइडे इवनिंग और फ्राइडे अगस्त भी हैं और 28 अगस्त

0: माय गॉड, हमने कहा था ना कि पलक झपकते ये महीना भी चला जाएगा. आई जस्ट कांट रियलाइज एंड आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड कि किस रफ्तार से ये महीना चला गया. एंड बस सितंबर महीने का अब इंतज़ार है एंड वो महीना भी चला जाएगा. एंड डेफिनेटली कुछ लोग तो अभी सोच ही रहे हैं कि न्यू ईयर भी आने वाला है, क्या कुछ करना बाकी है. लेकिन आप इतनी दूर का प्लीज़ सोचेगा नहीं, क्योंकि हम तो चाहते हैं ही कि आप अपने इस प्रेजेंट मोमेंट को ऐसे ही एंजॉय करें. एंड डोंट थिंक अबाउट योर फ्यूचर, क्योंकि वहाँ पर हमारी ज़िंदगी नहीं है. एंड कुछ लोग हमसे शायद सहमत नहीं होंगे, क्योंकि कहेंगे कि फ्यूचर प्लानिंग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप फ्यूचर को सोच के इतने परेशान हो जाए कि आप अपने आज को ही ख़राब कर दे. सो आप एंजॉय कीजिए. एंड शुरुआत में हमने आपसे यही कहा था कि जो है सो है और वो आज है. तो चलिए आज हम बस यही चाहते हैं कि आप एक वाइड एंड ब्रॉड स्माइल लेकर आए अपने चेहरे पर. अगर आप हमें सुन रहे हैं तो चलिए कुछ डांस करने के बहाने आपको मिल गए हैं हमारे गीतों के जरिए.
1: फिल्मी जान
2: RM2 रेडियो मस्ती.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio

0: फिल्मी जान
1: RM2 रेडियो मस्ती।
0: हाय, अगर बेबी को बेस पसंद है इसका मतलब बेबी को फ्राइडे पसंद है, क्योंकि फ्राइडे को ही हम ऐसे वाले गाने चलाते हैं आप लोगों के लिए। 8:20 हो चुके हैं। टू ऑल दोज इट इज वक्त ड्राइव कर रहे हैं, प्लीज ड्राइव सेफली एंड केयरफुली। एंड आई डोंट नो, अगर रास्ते पर अभी तक गाड़ियां रुक रुक कर चल रही हैं और मे बी रास्ता काफी क्लियर है, बट आई जस्ट नो कि फ्राइडे के इवनिंग को बहुत सारी गाड़ियां निकल पड़ते हैं रास्ते पर, शायद मॉल्स जाने के लिए, रेस्टोरों में खाना खाने के लिए, एंड कुछ लोग रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मे बी आप लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं भाई बहनों के यहाँ, सो यू हैविंग अ ग्रेट ग्रेट टाइम, और साथ में बस आप RM2 के साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच। चलिए, वी हैव दिस ब्यूटीफुल गाना विशाल ददलानी, शालमली घोलखरे एंड इशिता बादशाह की आवाजों में मिलकर इस गाने को एंजॉय

करते हैं, कुछ और भी खूबसूरत गाने हैं जो हमें चलाने का मौका मिलेगा टिल 9 पीएम. सो डोंट फॉरगेट, इट्स योर फिल्मी जाम जहां पर दिव्या का साथ है टिल 9 पीएम.

0: फिल्मी जान
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: एक्टिवेट डांस मोड countdown
3: 8:35 होने को है। अभी घर बार छोड़कर पार्टी शादी करने जा रही है या फिर फैमिली के साथ है और कहीं पर ठहरे हुए हैं, तो बस आई जस्ट होप दैट यू हैविंग द बेस्ट ऑफ टाइम विद योर फैमिली मेंबर्स। एंड हमेशा हम कहते हैं जब भी फैमिली वालों से आप मुलाकात करते हैं ना, स्पेशली अगर लंबे टाइम के बाद आप लोगों से मुलाकात करते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनसे फिर से कनेक्ट हो, रिकनेक्ट हो। एंड मोबाइल को एक तरफ रखिएगा और जितना हो सके कम्युनिकेट कीजिए। ग्रेट कॉन्वर्सेशन डेफिनेटली आपके बॉन्ड को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता रहेगा। और ये जो ह्यूमन टच है, ह्यूमन कनेक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार आप किसी से डिस्कनेक्टेड फील करते हैं तो फिर से कनेक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है और जब से टेक्नोलॉजी टूक ओवर सब लोग तो मोबाइल पे ही रहते हैं। कभी कभी देखने को भी मिलता है कि बहुत सारे लोगों मतलब फैमिली मेम्बर्स आपस में मिलते हैं लेकिन एक बड़े से टेबल में कोई किसी के साथ बात नहीं करता है और हर एक अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। सो दिस इज़ नॉट डन। आपको इस क्वालिटी टाइम का पूरा पूरा फायदा उठाना है। डोंट फॉरगेट इट्स योर फिल्मी जाम जहां पर दिव्या का साथ है टिल 9 PM। कुछ और ब्यूटीफुल गीतों के साथ हम जारी रखेंगे इस शो को टिल 9 PM।

0: Well, 8:55 ho chuke hain and chaliye isi ke saath it's time for me to say goodbye to all of you and jaate jaate ye agla gana khas taur se as usual hum dedicate karenge Mr. Sunil Raghubir ke liye jo Triolo se ऑल कनेक्टेड हैं हमारे साथ आपकी बेटियों के लिए अगला गाना और आप विदुषी को बहुत ही याद कर रही है और बस अगला गाना स्पेशली विदुषी के नाम आपके नाम और आपके पूरे फैमिली के लिए एंड आप रहते हैं थ्रियुले और रघुबीर फैमिली के लिए सुनील जी थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए जितने भी सारे आपके मैसेजेस हैं ना ऐसे लगता है कि आपके जहन में बस एक ही इंसान है क्या बात है और आपके सारे मैसेजेस एक दिन आपकी वाइफ से मिलकर हम ज़रूर ज़रूर शेयर करेंगे क्योंकि इससे साफ पता चलता है कि आपके जहन में कौन है और कितना प्यार है सो थैंक यू सो मच सुनील जी हमारा साथ देने के लिए एंड नेक्स्ट गाना विदाउट फॉरगेटिंग रघुबीर फैमिली ऑफ थ्रियुले के नाम
1: फिल्मी जान
2: RM2 रेडियो मस्ती

कैसे हो मेरे दोस्त? हैप्पी फ्राइडे भाई, वीकेंड का मूड तो ऑन हो चुका है और आप सुन रही हैं लेट नाइट ग्रूव वेदिता के साथ, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने रेडियो मस्ती पर। मैं वेदिता साथ देने के लिए आई हूँ और यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड के पैपी रिमिक्सेस, फ्राइडे को बना देंगे एकदम धमाकेदार। तो वॉल्यूम को थोड़ा और बढ़ाइए और हम यहाँ मिलेंगे आपके साथ आपके अपने रेडियो मस्ती पर।

और आज का हमारे जो प्लेलिस्ट है एकदम आपके लिए ऐसे ऐसे रिमिक्स गाने लेकर आएंगे कि आपके पैर जो है ना ऑटोमेटिकली टैप करने लगेंगे। तो रेडी हो जाइए हमारे धमाकेदार गीतों

थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग मी विदिता लेट नाइट ग्रूव्स. आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती पर, और जितने भी लोग हमें अब्रॉड सुन रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने से आप हमें सुन रहे हैं, थैंक यू गाइज फॉर जॉइनिंग.

हेलो गाइस, यू आर लिसनिंग टू वेदिता ऑन अ रेडियो मस्ती. प्रोग्राम है आपके लिए, कौन सा आपको बताइए. ये है आपका लेट नाइट ग्रूव

डांस का मूड यहां पे सब पे चढ़ गया है, गाने ऐसे हैं तो सोएगा कौन, हम तो जगाने के लिए प्रोग्राम करते हैं। तो चलिए इन्हीं गीतों के साथ आगे बढ़ते हैं। आप कहीं भी हैं, अपने आप को रोकना नहीं, जहां मन करे डांस निकले।

तो चलिए भाई अगले गाने के साथ आगे बढ़ते हैं आपके अपने रेडियो मस्ती पर, और यहाँ पर लेट नाइट ग्रूव्स में ग्रूव करने के लिए कुछ ऐसे गाने जो आपके होश

रेडियो मस्ती लवर्स, मैं हूँ विदिता। बताइए फ्राइडे नाइट में आपके क्या क्या प्लान्स हैं? कोई सोचता है कि भाई चिल मारते हैं घर पे, कोई कहता है चलो डिनर पे चलते हैं, कोई कहता है चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। हाँ वैसे चिल करने के लिए डिनर के बाद आप लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं, तीनों काम एक साथ हो जाए। चलो तीनों काम, तो तीनों काम एक साथ हो जाएगा जो भी हो हमारे।

विनीता का साथ दे रहे हैं, विनीता आपके साथ है, हमारे साथ है बॉलीवुड रिमिक्सेस, और हम लोग सुन रहे हैं ये सारे गाने वन एंड ओनली रेडियो मस्ती पर, जहां पर मस्ती कर रहे हैं हम आपके साथ।

for me to say bye bye to you और फिर मुलाकात करेंगे कल. जी हाँ, सैटरडे नाइट यही प्रोग्राम लेकर आएंगे आपके लिए, लेट नाइट ग्रूव्स. तो आप ग्रूव करते रहिए, मूड बनाते चलिए, फिर मिलेंगे. बाय बाय, टेक केयर. म्यूजिकल सफर हमारा यहाँ पे रुकेगा नहीं, वैसे भी यहाँ पर गीतों का सफर जारी है आपके लिए 24 आवर्स. अपना ख्याल रखिएगा. आई सी यू टुमारो.

0: होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

0: कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: ये मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

RM2 Radio Musty.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते